मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 37 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव एफएम बैंड और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं देश वंदना से। गीतकार हैं प्रेम धवन। जब देश का हर नागरिक जाति भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर साथ चलने का संकल्प लेता है तभी सच्चे अर्थों में राष्ट्र मजबूत बनता है। आज के समय में मिलजुल कर आगे बढ़ना, एक दूसरे का हाथ थामना और देश हित को सर्वोपरि रखना ही सच्ची देशभक्ति है।

समूह सोरों में ये था देशभक्ति गीत। अब प्रस्तुत है गणेश वंदना, स्वर है विष्णु प्रसाद पांडे का। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की वंदना के बिना हर शुभ कार्य अधूरा माना जाता है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक और मंगल के देवता गणपति बप्पा अपने भक्तों के जीवन से विघ्नों को दूर कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं ये गणपति वंदना।

इस गणपति वंदना के बाद कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है लता मंगेशकर के स्वर में ये मीरा भाई की भक्ति रचना।

0: अभी आपकी सेवा में भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:20 हुए हैं। अब सुनिए चिंतन। आलेख और स्वर है केशरी चंद पारक का।
1: बिना जल सिंचन के कली कभी खिलती नहीं, श्रद्धा रहित अर्चना कभी फलती नहीं। बता रहा इतिहास भी यह रहस्य भारी कि धर्माचरण के बिना सिद्धि मिलती नहीं, कि धर्माचरण के बिना सिद्धि मिलती नहीं। एक वृक्ष हरा भरा तूफान का दौर चला और वृक्ष धराशायी हो गया, उसका जड़ से उन्मूलन हो गया। जड़ से हुए टूटे हुए हरे भरे वृक्ष का वैभव और आयुष्य कितना, उस वृक्ष पर रहे हुए हरे पत्तों का आयुष्य कितना, आकर्षक लंबी लंबी शाखाओं की जिंदगी कितनी। भले ही वातावरण में वसंत ऋतु की ताजगी हो, भले ही बादल धरती पर झिरमिर झिरमिर बरस रहे हों, जहां वृक्ष पड़ा हुआ है वहां की भूमि भी उपजाऊ हो, तो भी उस वृक्ष को कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह जड़ से संबंध खो बैठा है। बस वैसी ही स्थिति बनती है धर्म रूपी जड़ को छोड़कर मात्र संपत्ति वैभव समृद्धि रूपी शाखा पत्ती को पकड़कर बैठने वाले जीव की। भले ही आपके पास तंदुरुस्त शरीर हो, करोड़ों की संपत्ति हो, विनीत परिवार हो, समाज में धन वैभव के कारण प्रतिष्ठा हो, 5 गाड़ियां 6 फैक्ट्रियां हो, 3-4 दुकानें चल रही हो, लेकिन इस सभी के मूल स्थान पर रहे हुए धर्म तत्व के साथ संबंध तोड़ दिया तो उसका भावी जीवन अंधकारमय है। वृक्ष की तंदुरुस्ती का कारण, उसके हरे भरे पत्तों का कारण उसकी जड़ है, यह हमको दिखता है। इमारत की मजबूती का कारण उसकी नींव है, यह हमारी समझ में आता है। शरीर की स्वस्थता का कारण नियमित संयमित जीवन व पथ्य पालन है, इसका भी हमको अनुभव है। लेकिन इस तमाम सुख समृद्धि का कारण धर्म न हमको दिखता है, न ही समझ में आता है एवं न ही अनुभव होता है। सुख के मूल स्वरूप संपत्ति को स्वीकारने के लिए, पुरुषार्थ को मानने के लिए एवं स्वयं की व्यवहार कुशलता को यश देने के लिए हम तैयार हैं, किंतु मूल में रहे हुए धर्म को स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि वह धर्म हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। सुख के मूल में धर्म तत्व है, इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करने वालों से इतना ही पूछना है कि शक्कर में मिठास है वह हमें दिखती है, मगर इससे शक्कर के मीठापन से इनकार नहीं किया जा सकता। मक्खन से घी बनने की संभावना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लकड़ी में छिपी हुई अग्नि में हमें दिखती तो नहीं, क्या हम उसमें रही हुई अग्नि को नहीं मानेंगे? अरे भाई, कुछ समझदार बन, आंख और मन की समझ की मर्यादा

को सतत सामने रख प्रश्न उठता है, धर्म है क्या? ज्ञानियों ने इसका समाधान दिया, धम्मो वत्थु सहावो खम्मादि भावो या दस्वियो धम्मो। धर्म वस्तु का स्वभाव है, व्यवहार से क्षमा, निर्लोभता, सरलता, सत्य आदि सद्गुणों की अपेक्षा से उसे 10 प्रकार का बताया है, जिसे यति धर्म के नाम से भी जाना जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रयी की दृष्टि में धर्म 3 प्रकार का बतलाया है। आत्मा का निज गुण है वह धर्म है, और पुद्गुलों का जो स्वभाव है वह आत्मा के लिए धर्म नहीं है, वह विभाव है और वही अधर्म है। स्वभाव है वह सदा बना रहता है, और जो विभाव है वह सदा नहीं बना रहता। पानी को गर्म करने पर भी वह हमेशा गर्म नहीं रहता, क्योंकि पानी का स्वभाव है शीतलता, जो हमेशा बनी रहती है। मात्र अग्नि के कारण उसमें उष्णता आती है, वह कुछ समय पुनः वह शीतल बन जाता है। वैसे ही क्रोधादि भाव कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं, वे आत्म स्वभाव नहीं है किंतु विभाव दशा है। आप ही सोचिए, क्रोध में आपने कितने समय तक रह सकते हैं, मगर समता भाव जो कि आत्मा का स्वभाव है उसमें आप शांति से घंटों रह सकते हैं। भगवान महावीर के प्रिय शिष्य गौतम ने जिज्ञासा प्रस्तुत की, प्रभु आत्मा का स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, क्रोध कसाय आदि आत्मा के स्वभाव हैं या समता आदि? समाधान में महावीर ने कहा, समता ही आत्मा का स्वभाव है, न कि क्रोध कसाय। समत्व को प्राप्त करना ही आत्मस्वरूप को प्राप्त करना है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड का भी यही मंतव्य है कि चेतन जीव का स्वभाव है कि वह विक्षोभ और तनाव को नष्ट कर समत्व की संस्थापना करता है। दोस्तों, हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आत्मा का स्वभाव धर्म है, और यदि धर्म हमें निश्चय ही क्रोध के साय से दूर कर समभाव में जीने का मार्ग बताएगा। आज के इस युग में जहाँ जीवन तनाव चिंताओं से घिरा हुआ है, उससे मुक्ति पाने का मात्र एक मार्ग है, धर्म का मार्ग। चाहे आप पास कितनी संपत्ति हो, मगर धर्म का आचरण आवश्यक है। धर्म की राह पर चलकर सुखमय शांतिमय जीवन जिए।

यह था चिंतन, आलेख और स्वर था केशरी चंद पारख का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर है अनुराधा पौडवाल का और संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया।

गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी ज्ञान और भक्ति की मीमांसा कर रहे हैं। प्रश्न है, ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है? काकभुशुंडी कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में माया द्वारा प्रेरित रिद्धि सिद्धियां विघ्न उपस्थित करती हैं। माया के अतिरिक्त देवगण भी बाधाएं उत्पन्न करने में पीछे नहीं रहते। इंद्रियां झरोखों के समान होती हैं, जिनसे आती विषय वासना रूपी हवा के प्रवाह को रोकना बड़ा कठिन होता है। इन झोंकों से ज्ञान रूपी दीपक का बुझ जाना भी बड़ा सरल और स्वाभाविक है। इस दीपक के बुझते ही जीव आवागमन के क्लेश भोगने लगता है। संतों और ज्ञानियों का मत है कि ज्ञान मार्ग से मोक्ष रूपी परम पद पाना अत्यंत कठिन है, किंतु ये पद भक्ति मार्ग से बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है।

0: अभी श्री रामचरितमानस का गायन प्रसारित किया गया। स्वर था अनुराधा पौडवाल का। संगीत निदेशक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए कृषि सामयिक की बेड़ा खाड़ा चुकोट।
1: खेतीहर दादा दीदी मन फसल कमानी चो नवा नवा उआट ने आजी जाना कि पपई कमानी कसन करुन करले आम के नगद उपजन संगे संगे लाभ बले मिरुक सके। तो काश्तकार भाई बहिन मन असन तो पपई बूटा आमचो घर मन ने एक ठान दुई ठान रहे से छे। मांतर नगद कमानी काजे ये कमानी बरक कार लाभ देतो बीती हो सके। कसन बल्ले पपई बरक कार फरते चे रहे से। दादा दीदी मन काई बल्ले कमानी काजे लेहरा पानी के बले दघुक लागे से। तो पपई मंडा तो काजे सूखा आरो गरम लेहरा पानी खूबे नगद रहे से। पपई कमानी काजे पानी निकास बीती दुई मटिया भुई नगद रहे से। पपई कमातो काजे बिचारलो बेड़ा मरहान बाड़ी थाने पानी निकास चो नगद उपाय होतो रासे। खेतीहर दादा दीदी मन नगद उपजन देतो किसी मन ने पपई के बिचाले अकराउक लागे से। हुंजो काजे पलहा बले थरहा पकाउन कियारी मन थाने अकरावा। नहाले नर्सरी मन थाने पेगर थैली ने बले माटी भरून बीचा डारून बूटा अकराउक सकास। पपई कमानी चो नगद किसी मन ने पूसा डेलिसियस, पूसा मैजिस्टी, पूसा ड्वार, पूसा नन्हा, कुर्ग हनीड्यू, ताइवान आरु सूर्या ये किसी मन नगद उपजन बीती होए से। काश्तकार दादा दीदी मन नर्सरी ने कियारी मन ने बूटा तैयार करतो उवाट के सुना। पलहा पकातो पहिल डोली के नगद खोड़ून खत मिसाउन 3 मीटर लाम 1 मीटर ओसार आरु सम भुईले खंडिक डेंग कियारी बनातो राय। हुंचोले

0: से मसागत नी लागे। दादा दीदी मन प्लास्टिक थैली ने बूटा तैयार करतो उवाट के बले जाना। प्लास्टिक थैली ने बूटा तैयार करतो काजे 150 गेज मोट जो 3 सेंटीमीटर ले 7.5 सेंटीमीटर ओसार आरु 10 ले 12.5 सेंटीमीटर लाम थैली काम ने आंतो राय। थैली मन के माटी वर्मी कंपोस्ट नहले गोबर खत आरु बारू मिसाउन भरतो राय। बीचा के 1.0 सेंटीमीटर गड़िया ने थैली चो मंजात ने मंडातो राय। बीचा मंडातो पाछे काई बले छाए बनाउन ढाकुन पानी देतो राय। बूटा मंडातो काजे खोदरा जेठ महीना जैसे एवे आसे जून महीना ने तुम्ही खोदरा खोडुक सकास। दुई दुई फीट ओसार लाम आरु गड़िया रहो। बूटा ले बूटा चो फरक 2 मीटर रहो। सफाई खोदरा मन ने 10 किलोग्राम नगत सड़लो गोबर खत 200 ग्राम सुपर फास्फेट आरु 50 ग्राम क्यूनाल फास 1.5% चूरा के देउन खोदरा मन के भरुन देतो राय। बूटा रोपतो काजे तैयार कर लो बूटा मन के अगस्त सितंबर बल्ले ने सावन भादो महीना ने खोदरा ने रोपुन देतो राय। खत भात बल्ले पपई बूटा 12 ले 15 महीना ने फरधरु मुरियाए से। इचो काजे 2 महीना ने 90 ग्राम यूरिया 250 ग्राम सुपर फास्फेट आरु 140 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास सपाय बूटा चो हिसाब धरुन देतो राय। कास्तकार दादा दीदी मन असन ध्यान करून कमानी करलास जाले पपई चो नगत उपजन धरुक सकासे।
1: अभी कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चो गोट का प्रसारण किया गया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है बोहरिया मातापाड़। वादक कलाकार हैं गणपति कड़ियारी और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में अभी आप बोहरिया माता पार सुन रहे थे। वादक कलाकार थे गणपति कड़ियारी और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। नमस्कार जगदलपुर, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं 7:05 पर। आज के आकर्षण रसरंग, विषय होगा बिंदिया, हल्बी समाचार बुलेटिन और होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। 8:30 पर सुनिएगा बस्तर के विभिन्न बोलियों में लोक गीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। 9:00 का समय होता है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का। एक ही फिल्म से 9:30 पर आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे फिल्म तकदीर वाला के गीत। 10:00 कार्यक्रम गुलशन में आज आप आनंद लीजिएगा पहले शीर्षक पर आधारित फिल्मी नगमों का। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आज आप सुनेंगे 10:30 पर लंबोदर और साथियों का गाया भद्री गीत। एक ही कलाकार 11:00। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार उत्तम सिंह पर। विभिन्न प्रदेशों के गीत आप सुनते हैं कार्यक्रम सबरस में। समय होगा 11:30 का। दिन में 12:00 लोकगीतों के कार्यक्रम झुमझुमा में सुनिएगा हल्बी गीत। गायक कलाकार होंगे नीरबती और साथी। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार का समय होता है 12:30। दोपहर 1:05 पर कृषि सामयिकी की बेड़ा खड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण किया जाएगा। 12:10 पर हम लेकर आते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन कला और कलाकार। ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 2:30 पर। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों में 5:05 पर सुनेगा देशभक्ति गीत। 5:10 का समय होता है युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का। गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा 6:30 पर। 7:00 दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर प्रस्तुत किया जाएगा। 7:21 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव का प्रसारण किया जाएगा। भद्री लोक गीतों का आनंद श्रोता लेंगे 8:00 कार्यक्रम होगा कुड़ई फूल। गायक कलाकार होंगे नीलू राम और साथी। 8:30 पर पीलामन काजे गोट, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा ऋतु चक्र पर। प्रस्तुति होगी बंशीराम कश्यप की। पुरानी फिल्मों से हम पेश करेंगे 9:15 पर। 9:30 पर कार्यक्रम उवाट में छत्तीसगढ़ राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना की जानकारी दी जाएगी। प्रस्तुति होगी जयराम कवासी की। 10:00 परिचर्चा का विषय होगा सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास। प्रतिभागी होंगे श्री मंधर राम नाग और श्री बलदेव मौर्य। संपादक होंगे बलबीर सिंह कच्छ। और 10:30 पर पुरानी फिल्मों के गीत हम पेश करेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा में। ये थी हमारे केंद्र से आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: पूर्व आईपीएस अधिकारी बाला। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोध प्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेऽपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतन्त्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेशमन्त्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉ जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशान्त प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैण्ड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्। तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धि भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मन्त्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमरीका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली डीईएमयू रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है हमारा कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

सुनहरी किरणों ने जब धरती को गले लगाया, पंछियों ने मधुर स्वरों में नया तराना गाया। हर सुबह अपने संग उम्मीदों का पैगाम लाती है, जिंदगी फिर मुस्कुराकर नया सफर शुरू कराती है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मनिंदर सिंह देवगुन और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। गुड मॉर्निंग टू ऑल।

श्रोताओ, लोक जीवन में कई ऐसी बातें हैं जो हमारी परंपराओं, मान्यताओं और अनुभवों से जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक है छींक। कई लोग मानते हैं कि घर से निकलते समय छींक आ जाए तो कुछ पल रुक जाना चाहिए, तो कोई इसे शुभ अशुभ संकेत से जोड़ देता है। गांव और शहरों में आज भी छींक को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती जाती है। कभी कहा जाता है कि कोई याद कर रहा है, तो कभी इसे आने वाले किसी समाचार का संकेत मान लिया जाता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो छींक हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। धूल, धुआं, तेज गंध, मौसम में बदलाव या एलर्जी जैसी चीजों से बचाने के लिए शरीर छींक के माध्यम से बाहर की अशुद्धियों को निकालता है। यानी छींक अंधविश्वास नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी एक सामान्य प्रक्रिया भी है। दिलचस्प बात यह है कि इंसान ने हर दौर में अपनी भावनाओं और मान्यताओं को रोजमर्रा की बातों से जोड़कर देखा है। कभी छींक पर मुस्कुराहट होती है, कभी चिंता तो कभी मजाक। यही तो जीवन की रंगत है, छोटी छोटी बातों में बड़े अर्थ ढूंढ लेना। और जब किसी की बातें दिल को सुकून देने लगे, जब किसी की मासूमियत हर पल को खूबसूरत बना दे, तब उसकी हर अदा अच्छी लगने लगती है और याद आने लगती है उसकी हंसी, उसकी शरारतें और उसकी मीठी बातें। जब दिल में बस जाए तब छींक भी जैसे उसी का पैगाम लगने लगती है। इन्हीं बातों और एहसासों के साथ आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: एस पी बाला सुब्रमण्यम और एस जानकी की आवाजों में अभी आपने फिल्म जमाई राजा का ये गीत सुना।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
0: श्रोताओं, आज 27 मई का दिन कई महत्वपूर्ण अवसरों के लिए भी जाना जाता है। भारत में आज के दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि और उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। आधुनिक भारत के निर्माण, वैज्ञानिक सोच और बच्चों के प्रति उनके स्नेह को देश आज भी स्मरण करता है। आज ही के दिन विश्व विपणन दिवस यानी वर्ल्ड मार्केटिंग डे भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य व्यापार, संवाद और नए विचारों के माध्यम से लोगों तक बेहतर सेवाएं और उत्पाद पहुंचाने के महत्व को बताना है। साथ ही 27 मई को विश्व सूर्य सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें तेज धूप और पराबैंगनी किरणों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और सूर्य की तेज किरणों से बचाव, पर्याप्त पानी पीने और अपने स्वास्थ्य ध्यान में हमेशा रखें।

रखना चाहिए। धूप चाहे कितनी भी सुनहरी क्यों ना हो, उससे बचाव भी उतना ही जरूरी है। और अब दिन विशेष की जानकारी के बाद नमस्कार जगदलपुर में प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम रसरंग, मगर उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: गिरफ्तार फिल्म का ये गीत अभी आपने आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में सुना। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रसरंग। विषय है बिंदिया। आलेख और प्रस्तुति है चंद्र ऋषि ठाकुर की।
1: रसरंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, आदाब और गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, आज का रसरंग केंद्रित है बिंदिया पर।

भारत के सिवा और किसी भी देश में मस्तक पर बिंदिया या तिलक लगाने की प्रथा प्रचलित नहीं है। माना जाता है कि मनुष्य के मस्तक के मध्य में विष्णु भगवान का निवास होता है और बिंदी ठीक इसी स्थान पर लगाई जाती है। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी बिंदी लगाना उपयोगी माना गया है। माथा चेहरे का केंद्रीय भाग होता है, जहां सबकी नजर अटकती है। उसके मध्य में बिंदी लगाकर विशेषकर स्त्रियों में देखने वाले की दृष्टि को बांध कर रखने का प्रयत्न किया जाता है। ज्यादातर स्त्रियां लाल कुमकुम की बिंदी लगाती हैं, और ये भी बिना प्रयोजन नहीं है। लाल रंग ऊर्जा और स्फूर्ति का प्रतीक होता है। बिंदी स्त्रियों के सौंदर्य में अभिवृद्धि करता है। बिंदी लगाना देवी की आराधना से भी जुड़ा है। देवी की पूजा करने के बाद माथे पर तिलक लगाया जाता है। तिलक देवी के आशीर्वाद का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू परंपरा में मस्तक पर बिंदी लगाना या तिलक लगाना शुभ माना जाता है। हल्दी, चंदन या फिर कुमकुम का तिलक विजयश्री प्राप्त करने के उद्देश्य से या कार्य की महत्ता को ध्यान में रखकर इसी प्रकार शुभकामनाओं के रूप में हमारे तीर्थ स्थानों पर विभिन्न पर्वों, त्योहारों, विशेष अतिथि आगमन पर भी लगाया जाता है। मस्तिष्क के भ्रू मध्य ललाट में जिस स्थान पर बिंदी लगाई जाती है, ये भाग आज्ञा चक्र है। शरीर शास्त्र के अनुसार पिनियल ग्रंथि का स्थान होने की वजह से इस स्थान पर बिंदी लगाने पर मस्तिष्क के अंदर एक तरह के प्रकाश की अनुभूति होती है, यहाँ तक कि इसे प्रयोगों द्वारा

श्रोताओं, हम सभी मानते हैं कि श्रृंगार को पूरा करने में बिंदी की मुख्य भूमिका है। बिंदी सिर्फ श्रृंगार नहीं है, बल्कि ये महिलाओं की शक्ति का भी प्रतीक है। जी हाँ श्रोताओं, बिंदी आपके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ही नहीं, वरन आपके मनोबल को भी बढ़ाती है। ये साधारण लगती जरूर है, लेकिन ये विशेष है। सुहाग की निशानी हो या औरतों का श्रृंगार, माथे पर बिंदी ना सिर्फ खूबसूरती में चार चांद लगाती है, बल्कि महिलाओं के लिए सेहत के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। योग विज्ञान के आधार पर बिंदी का संबंध हमारे मन से जुड़ा हुआ है। जहां बिंदी लगाई जाती है, वहीं हमारा आज्ञा चक्र स्थित होता है। जब भी हम ध्यान मुद्रा में होते हैं, तब हमारा ध्यान यहीं केंद्रित होता है। क्योंकि ध्यान हमारे मन को नियंत्रित करता है, इसलिए ये स्थान काफी प्रभावशाली है। मन को एकाग्र करने के लिए इसी चक्र पर दबाव दिया जाता है और यहीं पर स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। शिव की तीसरी आंख से बिंदी आज्ञा चक्र के स्थान पर ही तीसरे नेत्र की परिकल्पना की गई है, इसलिए इस स्थान पर बिंदी लगाने से स्त्रियों का मन नियंत्रित रहता है और इधर उधर विचलन नहीं करता। श्रोताओं, सामान्य मान्यता है कि महिलाओं का मन अति चंचल होता है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा हाल ही में किए एक अनुसंधान से ये साबित भी हुआ है। शायद इसी वजह से किसी भी स्त्री का मन बदलने में पल भर का भी समय नहीं लगता। श्रोताओं, स्त्रियां एक समय पर एक ही साथ कई विषयों पर मंथन करती हैं, इसलिए उनके मन को नियंत्रित और स्थिर रखने के लिए बिंदी बहुत प्रभावशाली है। इससे उनका मन शांत और एकाग्र बना रहता है।

श्रोताओं, बिंदी को आयुर्वेद से लेकर एक्यूप्रेशर तक में विशेषता दी गई है और इसे महिलाओं की सेहत से जुड़ी कई समस्याओं के उपचार में मददगार भी माना गया है। बिंदी लगाने को सिर्फ वेशभूषा का अंग मानना काफी नहीं, बिंदी लगाना आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से शुरू हुआ और सिर्फ भारत में नहीं विश्व भर में इसे अपनाया जा रहा है। आयुर्वेद में बिंदी लगाने वाले स्थान को न सिर्फ मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है बल्कि अच्छी नींद के लिए भी जरूरी है। शिरोधरा विधि से इस बिंदु पर दबाव बनाकर अनिद्रा की समस्या दूर की जा सकती है। माथे का मध्य भाग जहां बिंदी लगाते हैं सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व से संबंधित है, जिसमें आंखों और त्वचा के लिए जरूरी फाइबर मौजूद हैं। ये आंखों को अलग अलग दिशाओं में देखने में काफी मददगार है। बिंदी लगाने वाले स्थान के पास से कान से संबंधित नस भी गुजरती है, जिस पर दबाव बनाने से सुनने की क्षमता भी बढ़ती है। और ये देखा भी गया है कि बिंदी लगाने वालों की तबीयत कम खराब होती है और उनकी सहनशीलता भी बढ़ती है। बिंदी भारतीय नारी के सौंदर्य और अमर सुहाग का प्रतीक है। माथे पर चांद सी चमकती लाल काली बिंदिया भी आज फैशन के कलेवर में ढलकर रंग बिरंगी, चमकीली और आकर्षक बन गई है। कल तक बिंदी को केवल सुहागन औरतों की निशानी माना जाता था और विधवा या परित्यक्ता महिलाएं गोंद लगी बिंदी के जगह चंदन की बिंदी लगाती थीं। लेकिन अब बदलते फैशन के दौर में ये सारी पुरानी मान्यताएं धीरे धीरे लुप्त होते जा रही हैं। यूं तो हर रोज महिलाएं बिंदी लगाती हैं, लेकिन हर तीज त्योहारों पर माथे पर बिंदी लगाना भारतीय महिलाओं की अनिवार्यताओं में शामिल होता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि बिंदी नारी के सौंदर्य को बढ़ाती है। बिंदी एक फैशनेबल वस्तु होने के साथ साथ नारी को परिपूर्णता भी प्रदान करती है। माथे पर तारों से झिलमिलाती बिंदी नारी के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाकर उसमें आकर्षण भर देती है।

0: श्रोताओं, तो ये था आज का रसरंग जो कि केंद्रित था बिंदी पर। अब हम आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे रसरंग, विषय था बिंदिया, आलेख और प्रस्तुति थी चंद्र ऋषि ठाकुर की। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब सुनिए हल्बी समाचार बुलेटिन।
2: जोहार, ये आकाशवाणी जगदलपुर है। हल्बी में समाचार बुलेटिन संगे मैं शंभुनाथ नाथ। आज चुमुर खबर नया से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ चो गोडबोले दंपति संगे 66 विशिष्ट लोगमन के बरक 2026 का जे दिला पद्म पुरस्कार। जनजाति सांस्कृतिक समागम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट करला कि समान नागरिक संहिता ले जनजातीय समाज चो परंपरा और अधिकार उपरे नहीं पड़े देखाई असर। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति लागून राज्य चो किसान मन के ए बरक यूरिया और DAP गेलोर बरक ले अधिक कम मिले दे। बस्तर ने आवासीय खेल अकादमी ने भर्ती काजे चयन परीक्षा 28 और 29 मई के जगदलपुर ने होए दे आयोजित। अदाय समाचार सरसरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार 25 मई के राष्ट्रपति भवन ने आयोजित कार्यक्रम ने 66 विशिष्ट लोगमन के बरक 2026 काजे पद्म पुरस्कार दिला। ये मन ने छत्तीसगढ़ चो दंतेवाड़ा जिला ले रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले के संयुक्त रूप ले चिकित्सा चो क्षेत्र ने करलोर नगद काम काजे पद्मश्री पुरस्कार ले सम्मानित करला। समारोह ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बले रला। ध्यान देव खो कि दंतेवाड़ा जिला चो बारसूर ने रतोर डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और डॉक्टर सुनीता गोडबोले आदिवासी मंचो मंजी रहून स्वास्थ्य सेवा के अमरातोर नगद काम करला से। हुनमन ट्रस्ट फॉर हेल्थ नाव चो संस्था बनाऊन एचो जरिया अभुजमाड़ जसन कठिन ठान मन ने काम करला। ये डॉक्टर दंपति मन बारसूर ने 10 बरक ले आगर समय ले आश्रम चो माध्यम ले और बस्तर चो दूसर आदिवासी ठान मन ने 35 बरक ले आगर समय ले कैक लोगमंचो इलाज करून स्वास्थ्य सेवा ले लोगमंचो सहायता करला से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गेलोर 24 मई के नई दिल्ली ने भगवान बिरसा मुंडा चो 150वीं जयंती बरक ने आयोजित जनजाति सांस्कृतिक समागम के संबोधित करला। हुनमन बल्ला कि ये समागम एतोर बरक मन ने जनजाति महाकुंभ चो रूप ने विश्व ने आपलो पहचान बनाए दे। श्री शाह बल्ला कि भगवान बिरसा मुंडा जनजाति समाज के आपलो संस्कृति धर्म और जल जंगल जमीन चो रक्षा चो संदेश दिला। हुनमन बल्ला कि केंद्र सरकार जनजाति समाज चो बाढ़ती काजे सरलग काम करे से। जनजाति कल्याण चो बजट 28,000 करोड़ रुपया ले बढ़ाऊन 1,50,000 करोड़ रुपया करलोर आसे। हुनमन बल्ला कि नक्सल हिंसा ने खूबे जनजाति लोग चो जीव गेली मानते सरकार नक्सलवाद उपरे अनाय बरसक नियंत्रण कर ली से। गृहमंत्री स्पष्ट करला से कि समान नागरिक संहिता बल्ले UCC ले जनजाति समाज चो परंपरा और अधिकार ने कहीं असर नहीं पड़े दे। श्री शाह बल्ला की बनवासी मंचो ये आंदोलन ये तो समय ने जनजाति लोग मन के बचाऊन संगाए दे। संगे संगे हम चो माटी धर्म और संस्कृति ले बड़े जोड़ून संगाए दे। हुनमन बल्ला की तुई और मैं गोटोक लहू आऊ ये मंत्र संगे वनवासी कल्याण आश्रम ने मुख सेवक बनून जनजाति सेवा चो अखंड यज्ञ चलालोर आसे। जनजाति संस्कृति जनजाति भूई और जनजाति धर्म के सुरक्षित करतो काजे ये महाकुंभ खूबे बड़े काम करे दे। श्री शाह बल्ला की जनजाति लोग भ्रम ले बाज तो भेदभाव करतो लोग के चितातोर और एक सोर होन बरक 2047 ने विकसित और समृद्ध भारत बनातोर बांटने आगे बढ़ोत। राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समागम के संबोधित करते छत्तीसगढ़ चो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बल्ला कि जनजाति समाज दुनिया के प्रकृति संगे संतुलित विकास चो बाट दखाउ सके। मुख्यमंत्री बल्ला कि जनजाति समाज भारत चो सांस्कृतिक आत्मा चो सबले जूना और जागृत रूप आए। हुनमन जनजाति भाषा संस्कृति और परंपरा चो संरक्षण उपरे जोर देते बल्ला कि राज्य सरकार गोंडी हल्बी और सादरी जैसन भाषा मन ने मूर्चो शिक्षा के बढ़ावा दई से। श्री साय बल्ला की आदि परब बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसन आयोजन जनजाति पहचान और प्रतिभा के राष्ट्रीय मंच दई से। ये कार्यक्रम ने देश चो भिने भिने राज्य मन ले इलोर जनजाति कलाकार मन पारंपरिक नाचा लोक संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुति चो माध्यम ले भारत चो समृद्ध जनजाति विरासत चो सजीव झलक के दखाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेलोर 23 मई के 19वां रोजगार मेला चो भीतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चो माध्यम ले भिने भिने सरकारी विभाग और संगठन मन ने चुनलोर 51,000 ले आगर युवा मन के नियुक्ति पत्र दिला। यह मौका बेरा श्री मोदी बोला कि सरकारी नौकरी मन लोग मंचो जीवना के नगद और सरल बनात और माई मूर माध्यम आए। प्रधानमंत्री बोला कि सभी भारतवासी देश के विकसित भारत बनात और संकल्प संगे आगे काम करो। रोजगार मेरा देश ने भिने भिने 47 स्थान मन ने आयोजित होली। रायपुर ने ये आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बाटले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम ने होली। कार्यक्रम चो मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके सांगला की आज 257 युवा मन के नियुक्ति पत्र मिल ली। होनमन युवा मन के बल्ला की ये सोचे नौकरी नुहाए बल्कि भारत के विकसित बना तो जिम्मेदारी बले आए। सुप्रीम कोर्ट विशेष आवश्यकता बल्ले नहीं सकते पीला मंचो शिक्षा व्यवस्था के धरुन छत्तीसगढ़ शासन के विशेष शिक्षक मंचो भर्ती प्रक्रिया 2 महीना ने पूरा करतो निर्देश दिल्ली से। गोटो के याचिका छो सुनवाई बेरा अदालत बल्ली की राज्य ने 49,000 ले आगर नहीं सकते पीला मन काजे लगभग 4,000 विशेष शिक्षक मंचो जरूरता से। राज्य सरकार अदालत के सांगली की 848 स्वीकृत पद मन ने 62 शिक्षक मंचो नियुक्ति होली से। सुप्रीम कोर्ट बल्ली की 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 विशेष शिक्षक मन के स्क्रीनिंग कमेटी चो पूरे प्रस्तुत होते मौका मीरो। प्रदेश ने नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चो आम और उपचुनाव भीतर 1 जून के मतदान हो दे। ये चो काजे छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग बाटले नामांकन पत्र चो जांच और नाम वापसी चो प्रक्रिया पूरा होलोर बाद अभ्यर्थी मन चो आखिरी सूची जारी करुन दिल्ली से। नगरी निकाय मन ने कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायत ने कुल 392 अभ्यर्थी चुनावी मैदान ने आसोत। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह सांगला की त्रिस्तरीय पंचायत मन ने पंच चो 640 पद और सरपंच चो 15 पद मन ने निर्विरोध निर्वाचन होली से, जबकि जनपद सदस्य चो सपाय 10 पद काजे कुल 41 उम्मीदवार चुनाव लड़सोत। होता है नगरीय निकाय मन ने सपाय खाली पद मन ने न तो कोनी नामांकन निरस्त होली और कोनी निर्विरोध निर्वाचन भले नहीं होली। राज्य शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग चो सपाय तकनीकी कर्मचारी मन के नसलोल बोरिंग और पाइपलाइन के सुधरावन पियो तो पानी चो समस्या के तुरते निराकरण करतो निर्देश दिल्ली से। ये निर्देश चो बाद गर्मी समय ने गांवकारी मन लगे साफ और सरलग पानी अमरा तोर काम के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग चो दल ध्यान देऊन करे से। विभाग बाटले जल जीवन मिशन भीतरे चल तोर योजना मन के सरलगा चलतो काजी गांवकारी मन के पानी बचा तोर बारे ने भले चेता तोर काम चले से। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश ने इबोला संक्रमण चो रोकथाम के धरून जरूरी निर्देश जारी कर ली से। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं बाटले जारी निर्देश ने जहाज चेगुन एतोर लोकमंचो स्वास्थ्य जांच संदिग्ध मामला चो पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित करुक बल्लोर आसे। संगे संगे मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर चो स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर ने गोटोक नोडल अधिकारी नियुक्त करतोर बले निर्देश दिलासे। स्वास्थ्य विभाग आइसोलेशन रेफरर और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था के पूरा तैयार संगाउ बल्ला से, तेबे कोनी बले ये तोर समस्या के तुरते निपटुक होए दे। ध्यान देउक हो कि कांगो और युगांडा ये देश मन ने इबोला संक्रमण बीमारी चो बाढ़तोर मामला चो बाद दुनिया भर ने सतर्कता बढ़ालोर आसे। विश्व स्वास्थ्य संगठन आगे ले एक अंतर्राष्ट्रीय

बरक कोटा तय कर लो। रासे एचओ अनुसार ये बरक किसान मन के 80% मात्रा के पारंपरिक यूरिया के रूप में देतोर होय दे, बाचल और 20% के उपलब्ध मात्रा अनुसार दे दे, नहाले एचओ पलटा नैनो यूरिया के देव होय दे। डीएपी वितरण बले गेलोर बरक चो तुलना ने 60% मिरे दे, बाचल और 40% मात्रा काजे हुंचो जगह एनपीके खत नहाले नैनो डीएपी उपलब्ध कराऊ होय दे। राज्य सरकार एग्री स्टेक पोर्टल ने विशेष प्रकार चो किसान मन के जोड़तोर अभियान मुर कर ली से। असन किसान जे मन लगे आगे ले एग्री स्टेक आइडिया से मांतर हुन मन चो कोनी खसरा नंबर पोर्टल ने दर्ज हो तो ले बाचुन रहे अदाय बाचल और खसरा नंबर मन के ये प्रक्रिया चो माध्यम में आसानी ले जोड़ुक हो दे। ए चो काजे किसान मन के भूया पोर्टल ने तहसील और जिला लॉगिंग जो जरिया पंजीयन काजे बाचल और खसरा और कंपार्टमेंट नंबर मन के झट के पंजीयन कराऊ पड़े दे। पटवारी ये जो जांच और सत्यापन चु बाद ये जानकारी के तहसीलदार चो आईडी ने पठाए दे और तहसीलदार चो अनुमोदन करते खन बाचलोर खसरा और कंपार्टमेंट नंबर सीधा किसान मन चो एग्रीस्टेक आईडी संगे जुड़न जाए दे। छत्तीसगढ़ सरकार बल्ली से कि प्रदेश ने पेट्रोल और डीजल चो कमी नहीं है और जनता के डरुन भाती आगर घेनुन संगातो जरूरत नहीं है। सरकार चो अनुसार राज्य ने करीब 3,94,00,000 लीटर पेट्रोल और 8,08,00,000 लीटर ले आकर डीजल चो भंडार आसे। किसान और जरूरी सेवा के प्राथमिकता देउन ईंधन चो नियमित आपूर्ति जारी आसे। राज्य ने 22 मई ले ड्रम और जर्किन ने पेट्रोल डीजल दे तो ने रोक लगली से। सरकार लोगमन के अफवाह ले बास्तोर गुहार कर ली से। झीरम घाटी ने कांग्रेस नेता मन ऊपरे हमला होलोर गेलोर 25 मई के 13 बरख पूरा होली। ये मौका बेरा कांग्रेस नेता मन और कार्यकर्ता मन रायपुर प्रदेश मुख्यालय ने आयोजित कार्यक्रम ने झीरम घाटी ने शहीद होलोर नेता मन के श्रद्धांजलि दिला। ध्यान देव कहो कि 25 मई 2013 के बस्तर संभाग चो झीरम घाटी ने माओवादी मन बाटले होलोर हमला ने कांग्रेस चो बड़े बड़े नेता और सुरक्षा बल चो जवान मन संगे करीब 30 जन लोग मरुन रहत। कांकेर जिला चो कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर गेलोर 25 मई के अधिकारी मन चो बसका धरला। बसका ने हुन मन बल्ला कि जिला ने एतोर खरीफ सीजन काजे खाद बीज चो पर्याप्त भंडार रहो। बसका ने कृषि विभाग चो उप संचालक सांगला की किसान मन बाटले खाद बीज चो उठाव मूर होली से कलेक्टर ये काम चो निगरानी करुक बल्ला से। समीक्षा बेरा कलेक्टर जिला ने चलतो निर्माण काम मन के समय सीमा भीतर पूरा करुक बल्ला से। संघ ने राशन दुकान मन जो निर्माण बरसा चो आगे पूरा करतोर और आना जाना सुविधा नी रहलो ठान मन ने राशन चो भंडारण करून संगाउन रतो निर्देश दिलासोत। कलेक्टर मनरेंगा भीतरे चलतोर सफाई काम मन के 30 जून तक पूरा करुक बल्ला से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 28 मई के होतो बीती संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा चो तारीख के आगे बढ़ा ली से। एजेंसी सांगली की बकरी चो तारीख ने बदलाव लागू ये निर्णय धरुक पड़ ली। अदाय तय कर लो और परीक्षा चो तारीख चो सूचना झपके देव खो दे। ताजा जानकारी का जे विद्यार्थी मन एनटीए चो आधिकारिक वेबसाइट के देखुक सको। प्रदेश ने संचालित प्रयास बालक और कन्या आवासीय विद्यालय मन ने ये बरक चो भर्ती का जे आयोजित प्राक्चयन परीक्षा चो मॉडल उत्तर जारी करून दिलो रासे। विद्यार्थी मन ले कक्षा नवमी चो प्रवेश परीक्षा चो प्रश्न पत्र नहाले उत्तर ले संबंधित कोनी प्रकार चो बले दावा आपत्ति 30 मई के संजे 5:30 बजे तक अनालोर आसे। बस्तर जिला चो 16 सदस्य मंचो युवा दल गेलोर दिने हिमाचल प्रदेश चो बीर ने आयोजित फ्लेश ऑफ पॉसिबिलिटीज यूथ फेस्टिवल ने भाग दरला। 10 दिन चो अध्ययन भ्रमण वेरा युवा मंचो दल हिमाचल प्रदेश चो बीर ने विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट डियर पार्क और भगवान बुद्ध चो ठान के दखला। संगे संगे प्रतिभागी मन ह्यूमन लाइब्रेरी योगाभ्यास नेचर वॉक ट्रेकिंग कैंपिंग और स्किल डेवलपमेंट गतिविधि और भिन्न भिन्न प्रकार चो सांस्कृतिक कार्यक्रम ने भाग धरला। ये दल दिल्ली चो ऐतिहासिक इंडिया गेट चो बले भ्रमण करला। ये भ्रमण कार्यक्रम चो उद्देश्य युवा मन ने लाइफ स्किल्स नेतृत्व क्षमता प्रकृति आधारित सिख सामुदायिक जीवन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बढ़ावा देतोर रहे। बस्तर ने आवासीय खेल अकादमी ने भर्ती काजे चयन परीक्षा 28 और 29 मई के जगदलपुर चो धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर ने बिहाने 7 बजे तक आयोजित हो दे। भावलो खिलाड़ी जरूरी प्रमाण पत्र और खेल उपलब्धि ले संबंधित प्रमाण पत्र संगे 27 मई तक उपस्थित हो सको। ट्रायल ने निको खेल देखा तो आधार ने खिलाड़ी मन चो चयन हो दे। ध्यान देव कहो कि आवासीय खेल अकादमी ने एथलेटिक्स तीरंदाजी और फुटबॉल जैसन खेल मन के शामिल कर लोर आसे। अकादमी ने 13 ले 17 बरक चो बालक प्रवेश धरुक सक दे।
बस्तर गोंचा परब चौथियारी काजे गेलोर 24 मई के जगदलपुर जो जगन्नाथ मंदिर ने 360 घर

0: ने ब्राह्मण समाज चो बस का आयोजित होली। बैठक ने बस्तर गोंचा महापर्व के पारंपरिक रीति रिवाज संगे बना तो निर्णय धरला। बसका ने मुक्तेश्वर पांडे के बस्तर गोंचा महापर्व चो अध्यक्ष नियुक्त करला। सरासरी ने मूर खबर मनहारक फेर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ चो गोडबोले दंपति संगे 66 विशिष्ट लोगमन के बरक 2026 का जे दिला पद्म पुरस्कार। जनजाति सांस्कृतिक समागम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट करला की समान नागरिक संहिता ले जनजाति समाज चो परंपरा और अधिकार उपरे नी पड़े ते कहीं असर। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति लागून राज्य जो किसान मन के ये बरक यूरिया और डीएपी गेलोर बरक ले अजी कम मिले दे। बस्तर ने आवासीय खेल अकादमी ने भर्ती काजे चयन परीक्षा 28 और 29 मई के जगदलपुर ने होए दे आयोजित। एचए संगे हलवी समाचार बुलेटिन चो अंक था सरे से जुहा।
1: अभी हलवी समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया गया।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: नमस्कार, जगदलपुर कार्यक्रम में अब पेश मधुर गीतों की मधुरिमा। प्यार इंसान की जिंदगी में वो रंग भर देता है जो हर पल को खास बना देता है। जब किसी का साथ दिल को सुकून देने लगे तो दुनिया की हर खुशी उसी चेहरे में नजर आने लगती है।

तेरी बाहों में आकर हर गम भूल जाना है, तेरी बाहों में आकर हर गम भूल जाना है, तेरी मोहब्बत में खुद को पूरी तरह डुबाना है। जी चाहे तुझे प्यार करूं मैं जी भर के सनम, जी चाहे तुझे प्यार करूं मैं जी भर के सनम, बस तेरे साथ हर जन का रिश्ता निभाना है।

नजर से नजर क्या मिली, दिल की धड़कन बढ़ गई। नजर से नजर क्या मिली, दिल की धड़कन बढ़ गई। जवानी की राहों में एक मीठी सी हलचल छा गई। बिन कहे ही हो गई मोहब्बत की शुरुआत। तेरी एक मुस्कान से ये दुनिया हसीन बन गई।

चाहत की राहों में कितना भी दूर चले जाओ, दिल के रिश्तों को आखिर कब तक ठुकराओ। कुछ भी कर लो, मोहब्बत आवाज दे ही देती है। एक दिन तुमको मेरे प्यार के करीब आना ही होगा।

आज की मधुरिमा में जिन फिल्मों के गीत आपने सुने वे फिल्में थी त्रिमूर्ति, राजा, जेल यात्रा और जोशीला। आवाज थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत लिखा था गुलशन बावरा, आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी और साहिल लुधियानवी ने। और इन सभी गीतों में संगीत था आर डी बर्मन का।

और मधुरिमा के इन मधुर गीतों के साथ ही अब कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर से मनिंदर सिंह देवगुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।

0: नमस्कार जगदलपुर, अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
5: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
4: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
6: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले तीन दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
7: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
8: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
8: अमरीका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
4: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
9: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें दो ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
10: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुखपृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रूपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने

0: पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Red Fort last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
4: I want to make a statement in the face of the country. Under the law, देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 1 year. इफ नेसेसरी द टेन्योर ऑफ द कमिटी मे बी एक्सटेंडेड बाय अप टू 6 months. विद अनुपम मिश्रा, दिस इज विष्णु PS, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
2: The Supreme Court will today pronounce its judgment on a batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rules done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India, CJI Surya Kant and Justice Joymala Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenging the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process

0: ए मुसर संगे झुमर रोय बाई सुवती बाई बटे डुंडा पुरे पुरंदी
1: आमी बु बाजी सिगरी सरी आम गे नाना कोनी रोय बाई सुवती रानो भगवती

0: लोकमंजरी कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं रामू बिसाई के स्वर में ये भद्री गीत।
1: आए तो मौत हुई

आहे जन्मोजन मांगले से भजन देवी की नाई बोलवा के देवी बोली मुही जोड़ छुई सहित कर ली मुही वर्षा नईलर पानी मांगसी आदे

0: 곧 입에 닿아 말아야 되세. 닭이 망세야 되세.
1: Work from home? High salary? बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लोक मंजरी का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं बस्तर की विभिन्न बोलियों के लोकगीत। घेनवाराम मांझी और साथियों का गाया आप सुनिए धुरवी लोकगीत।
5: एक मारू लरा गात मना वो तो

अभी आप सुन रहे थे बस्तर की विभिन्न बोलियों के लोकगीतों का कार्यक्रम NCERT। क्षमा कीजिए, अभी आप सुन रहे थे बस्तर की विभिन्न बोलियों के लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंचरी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
2: जी,
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का, सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
3: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
3: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
3: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
2: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
3: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
2: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओ कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
2: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
3: जी।
4: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
5: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
6: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
5: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
6: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
5: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
6: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
5: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
6: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
5: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
6: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
5: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
6: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
5: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
3: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
5: मश्क।
4: होशियार,
5: समझदार,
4: पेंसिल तराश,
5: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
4: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
5: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
2: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
7: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
8: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
9: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
8: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
9: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
8: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
10: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
11: क्या बात है,
10: सुनकर ही जोश आ गया।
11: हाँ
10: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
11: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
7: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
12: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
7: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
13: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
14: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
13: अरे देख लेंगे।
7: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
15: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
12: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
16: क्या बात कही है?
15: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
12: धन्यवाद।
7: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
3: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
4: सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
4: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूं।
4: साहब जी, साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: NCERT अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं 12 मई 1995 को रिलीज हुई फिल्म तकदीरवाला के गीत। ये फिल्म 1994 की तेलुगु फिल्म यमलेला का रीमेक है।

श्रोताओं, फिल्मों की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती है जो मनोरंजन के साथ कल्पना और भावनाओं का अनोखा रंग भी बिखेर देती है। वर्ष 1995 में आई फिल्म तकदीर वाला भी ऐसी ही एक यादगार पेशकश है, जिसमें हास्य है, पारिवारिक रिश्तों की मिठास है और साथ ही है यमलोक से जुड़ी एक दिलचस्प कल्पना। तो आइए आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको इसी फिल्म से सुनाते हैं।

हल्के फुल्के मनोरंजन से भर दिया, तो वहीं अनुपम खेर ने अपने प्रभावशाली अभिनय से कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ दी। कादर खान का अभिनय हमेशा लाजवाब रहा है और इस फिल्म में भी उन्होंने जबरदस्त अभिनय किया है।

फिल्म तकदीरवाला के निर्माता हैं डी रमा नायडू। फिल्म के डायलॉग लिखे हैं कादर खान ने। स्टोरी है एस वी कृष्णा रेड्डी की। फिल्म का स्क्रीन प्ले और निर्देशन किया है के मुरली मोहन राव ने। फिल्म में कुल 8 गीत हैं और इन गीतों को लिखा है समीर ने और कर्णप्रिय संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। फिल्म तकदीरवाला की कहानी मनोरंजन, हास्य और भावनाओं से भरपूर है। कहानी शुरू होती है यमलोक से, जहां यमराज की अनमोल भाग्य पुस्तक गलती से धरती पर आ जाती है। इस पुस्तक में हर इंसान की किस्मत और जीवन मृत्यु का लेखा जोखा लिखा होता है। जब यह पुस्तक एक सीधे साधे और नेक दिल युवक के हाथ लगती है, तब उसके जीवन में अचानक कई अजीब और मजेदार घटनाएं होने लगती है। वेंकटेश ने फिल्म में भोले भाले युवक की भूमिका निभाई और इस फिल्म में जब रवीना टंडन का साथ उन्हें मिला तो फिल्म में कुछ ऐसे गीत हैं जिसे सुनकर मन गुदगुदा उठता है और बार बार ऐसे गीतों को सुनने की भी इच्छा होती है। चलिए सुनते हैं एक और गीत। इस गीत में आवाज उदित नारायण और साधना सरगम की है।

फिल्म की खास बात यह है कि इसमें कॉमेडी के साथ परिवार, रिश्तों और इंसानियत का सुंदर संदेश भी देखने को मिलता है। एक तरफ यमराज अपनी खोई हुई पुस्तक वापस पाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी ओर धरती पर हास्य और उलझनों का सिलसिला दर्शकों को खूब गुदगुदाता है। दोस्तों, किस्मत के खेल भी बड़े निराले होते हैं, और जब यमलोक की किताब धरती पर आ जाए तो फिर शुरू होता है हंसी, प्यार और रोमांस से भरा सफर। फिल्म तकदीरवाला में एक ओर है मासूम प्रेम की मिठास, तो दूसरी ओर है हास्य से भरपूर मजेदार घटनाएं। आइए अब बढ़ते हैं फिल्म के इस खूबसूरत गीत की ओर, जो इस कहानी को और भी रंगीन बना देते हैं। आवाज इस गीत में है अलका याग्निक और अभिजीत की।

फिल्म तकदीरवाला में जिन कलाकारों ने अभिनय किया है वे हैं वेंकटेश, रवीना टंडन, कादिर खान असरानी, शक्ति कपूर, अनुपम खेर, लक्ष्मीकांत बेर्डे, डी रामानायडू, रीमा लागू, सत्येंद्र कप्पू, टीकू तलसानिया, दिनेश हिंगो और राकेश पांडे।

इस फिल्म के गीतों को गाया है कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, साधना सरगम, अभिजीत और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। श्रोताओं, इस फिल्म का एक डायलॉग हीम क्रीम जो बेहद लोकप्रिय भी हुआ, जिसे कादर खान ने बोला था फिल्म में। इस फिल्म में माँ बेटे के रिश्ते को भी बेहद मार्मिक ढंग से दिखाया गया है। ममता, त्याग और अपनापन, इन भावनाओं को इतने सादगी भरे तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि कई दृश्य दिल को छू जाते हैं। यही वजह है कि फिल्म तकदीरवाला सिर्फ एक फैंटेसी कॉमेडी नहीं बल्कि रिश्तों और भावनाओं की खूबसूरत कहानी बन जाती है।

0: एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्म तकदीर वाला के गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:55 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं

0: शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्य सचिव ने प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के दिए निर्देश। और पेंड्रा में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर की हत्या। अब समाचार विस्तार से। कल शाम हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों और निकायों में जमा स्क्रैप सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए एमएसटीसी के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले 3 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हो इसके लिए 1 अप्रैल से 30 जून तक ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। रायपुर में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में उन्होंने हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स को दुग्ध मत्स्य पालन और लघु वनोपज गतिविधियों से जोड़ने पर चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए माइक्रो एटीएम और रूपे कार्ड उपलब्ध कराने की समीक्षा भी की गई। मुख्य सचिव ने सहकारी शक्कर कारखानों में इथेनॉल संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा, खनन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और रेल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के ऊपर विस्तार पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा, कोयला गैस और सौर ऊर्जा विकास के जरिए निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बीती शाम कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना पेंड्रा के कोटमी साप्ताहिक बाजार की है। बदमाशों ने बीच बाजार में व्यापारी पर गोली चलाई और जेवर लूटकर मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के अवसर पर आज के बजाय कल 28 मई को अवकाश घोषित किया है। ये आदेश प्रदेश के सभी कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में रहेगा। बलरामपुर जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम कृष्णा नगर स्थित एक दुकान से लगभग 400 लीटर डीजल, 70 लीटर पेट्रोल और 32 बोरी पीडीएस चावल जब्त किया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कृषि विभाग की टीम ने खाद, बीज और कीटनाशक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 6 निजी संस्थाओं के लाइसेंस निलंबित किए गए। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को मानक गुणवत्ता की सामग्री उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं कुछ जिलों में ग्रीष्मलहर चलने की संभावना है। एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा तेज हवा चलने के आसार हैं। इस बीच प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी 28 और 29 मई को बंद रहेगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि यह निर्णय वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्य सचिव ने प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के दिए निर्देश। और पेंड्रा में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की गोली मारकर की हत्या। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। गुलशन कार्यक्रम में आज शीर्षक संगीत।

कार्यक्रम में आप सुनेंगे शीर्षक पहले पर आधारित फिल्मी गीत। तो कार्यक्रम गुलशन का आगाज पहले शीर्षक पर आधारित गीत फिल्म इल्जाम से हमने लिया है। ये गीत लिखा है इंदिवर ने, धुन बनाई है बप्पी लहरी ने, आवाज है अमित कुमार के साथ आशा भोसले की। तो लीजिए पहले शीर्षक पर पहला गीत सुनिए फिल्म इल्जाम से।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलशन, और आज इस कार्यक्रम में हम शीर्षक संगीत आपको सुनवा रहे हैं, और आज का शीर्षक है पहले। अब सुनिए फिल्म बागवान का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव।

श्रोताओं, गुलशन कार्यक्रम में आज आप शीर्षक पहले पर आधारित फिल्मी गीत सुन रहे हैं, द ग्रेट गैम्बलर। अब इस फिल्म का नगमा पेश है किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में। बोल आनंद बख्शी के हैं, धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। शीर्षक है पहले।

फिल्म का नाम है पापा कहते हैं। स्वर कविता कृष्णमूर्ति का है, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की और तर्ज बनाई है राजेश रोशन ने।

गुलशन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पहले शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीत।

अलका याग्निक और विनोद राठौर के युगल स्वरों में सुनिए फिल्म जालिम का गीत। गीत लिखा है जमीर काजमी ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अब हम आपको पहले शीर्षक पर आधारित गीत सुनवा रहे हैं फिल्म एनिमल से। आवाज है विशाल मिश्रा की, गीत राजशंकर का है और संगीत विशाल मिश्रा का है।

गुलशन कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म आज का गुंडा राज का ये गाना, जिसे लिखा है समीर ने, सुरीला संगीत है आनंद मिलिंद का।

आप फिल्म आज का गुंडा राज का गीत सुन रहे हैं। इस गीत में आवाज है अभिजीत और साधना सरगम की। ये गीत भी शीर्षक पहले पर आधारित है।

0: अभी गुलशन कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शीर्षक पहले पर आधारित फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी जगदलपुर है।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आय 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आज प्रस्तुत है भत्री गीत। गायक कलाकार हैं लंबोदर और साथी।

संजय बोले मंत्रा पोड़े पिंड को जोड़ीला संजय बोले मंत्रा पोड़ी पिंड को जोड़ीला गायत्री मंत्रा पोड़ी जीव दान देला गायत्री मंत्रा पोड़ी

0: सुंदरी तुम्हें चिंता करो नहीं, तोर कुमर गुण जैसा करो, तोर कुमर गुण जैसा करो,
1: तोर कुमर गुण जैसा करो,
0: तो पुत्र मृत्यु मोर मृत्यु है वो।

0: देखो तो पुत्र मृत्यु ले मोरो मृत्यु ले
1: मोरो
0: पुत्र मृत्यु ले मोरो मृत्यु ले
1: मोरो
0: मृत्यु पातालो सुनो जीव
1: पातालो सुनो
0: जीव मंच पातालो।

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप सुन रहे थे लंबोदर और साथियों के गाए भतरी लोकगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमारे

श्रोताओं, मनोरंजन की दुनिया में हम केवल अभिनय करने वाले कलाकार, गायक और कहानीकारों को ही पर्दे पर देख या सुन पाते हैं, लेकिन सिनेमा के उस पर्दे के पीछे ऐसी ढेरों प्रतिभाएं छुपी हुई होती हैं जिनकी अद्भुत कला, मेहनत, काम के प्रति जुनून और कला का जादू सिनेमा के हमारे हर अनुभव को अनूठा और यादगार बना देती हैं। श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो संगीत नहीं भावनाओं को छूते हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित है एक ऐसे कलाकार पर जिन्होंने पंजाब से निकलकर मुंबई की फिल्मी दुनिया में चमकते हुए नौशाद, आरडी बर्मन और इलैया राजा जैसे दिग्गजों के साथ काम किया और फिर खुद संगीतकार बनकर इतिहास रचा। जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे फिल्मफेयर अवार्ड विजेता, वायलिन के जादूगर और ढेर सारे गीतों की रचयिता उत्तम सिंह के बारे में।

मशहूर भारतीय वायलिन वादक, म्यूजिक अरेंजर या संगीत संयोजक, प्रोग्रामर और संगीतकार उत्तम सिंह का जन्म 25 मई 1948 को जलंधर, पंजाब में हुआ था। इनके पिता एक सितार वादक थे और गुरुद्वारे और धार्मिक कार्यक्रमों में कीर्तन किया करते थे। संगीत प्रेमी परिवार और बचपन से ही संगीत से भरा माहौल मिलने के कारण उत्तम सिंह ने कम उम्र में ही तबला और वायलिन बजाना सीख लिया था। उत्तम सिंह जब 12 वर्ष के थे, उनका परिवार मुंबई आ गया। परिस्थितियां बदली और उत्तम सिंह ने विभिन्न ऑर्केस्ट्रा में वायलिन वादक के रूप में काम करते हुए अपने करियर की शुरुआत की थी।

वायलिन वादक के रूप में काम करते हुए उत्तम सिंह के करियर में एक अहम मोड़ आया साल 1963 में, जब उन्हें मोहम्मद सफी की एक डॉक्यूमेंट्री के लिए वायलिन बजाने का मौका मिला। मोहम्मद सफी उस दौर के सबसे बड़े दिग्गज कलाकार नौशाद के सहायक थे। उत्तम सिंह के वायलिन के सुरों की गूंज नौशाद साहब तक पहुंची और फिर क्या था, उत्तम सिंह नौशाद साहब के वायलिन वादक बन गए। इसके बाद उन्होंने रोशन, मदन मोहन, सी रामचंद्र, एसडी बर्मन और आरडी बर्मन के साथ भी काम किया। एक समय बाद वे आरडी बर्मन के मुख्य वायलिन वादक भी बने। आरडी बर्मन के मशहूर गीत चुरा लिया है और दो लफ्जों की कहानी में जो वायलिन की मीठी सी धुन हमें सुनाई देती है वो उत्तम सिंह ने ही बजाई थी।

किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज़ आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।

श्रोताओं, उत्तम सिंह ने संगीतकार आरडी बर्मन के साथ करीब 20 वर्षों तक काम किया। इसके साथ ही वे अन्य संगीतकारों के लिए संगीत संयोजक या म्यूजिक अरेंजर का काम भी करते रहे, जिनमें मैंने प्यार किया, पत्थर की फूल, बेनाम बादशाह, प्रेम शक्ति और हम आपके हैं कौन जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। श्रोताओं, इसके बाद उत्तम सिंह ने जगदीश खन्ना के साथ मिलकर उत्तम जगदीश के नाम से संगीतकार जोड़ी बनाई और फिल्मों में संगीत देने का काम शुरू किया। इस जोड़ी ने करीब 30 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें पेंटर बाबू, तीसरा किनारा, क्लर्क और वारिस जैसी फिल्में शामिल हैं।

1992 में जगदीश खन्ना के निधन के बाद उत्तम सिंह ने स्वतंत्र रूप से काम शुरू किया। स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला साल 1997 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है से। फिल्म में उत्तम सिंह निर्मित सभी गाने सुपरहिट रहे और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर और जी सिने अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

दिल तो पागल है कि सफलता के बाद उत्तम सिंह ने दुश्मन, हम तुम पे मरते हैं, गदर और प्यार दीवाना होता है जैसी फिल्मों में भी संगीत दिया। इसके अलावा उत्तम सिंह पंजाबी सिनेमा, टीवी शोज और एल्बम्स में भी संगीत दे चुके हैं। श्रोताओं, उत्तम सिंह वो संगीतकार हैं जिनके संगीत में शास्त्रीय

गहराई, पंजाबी मिट्टी की खुशबू और बॉलीवुड की रौनक झलकती है। आज भले ही वो बॉलीवुड में ज्यादा सक्रिय ना हों, लेकिन उनके वायलिन की धुन भावनात्मक संगीत और वायलिन वादक से शुरू होकर बॉलीवुड के प्रमुख संगीतकार तक पहुंचने का सफर आज भी ढेरों कलाकारों को प्रेरित करता है और संगीत की दुनिया में आज भी उनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है।

0: एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम अभी आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। आज का हमारे ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार उत्तम सिंह पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,

0: 7001-4242।
1: ओ 8700-1-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-1-4242 पर।
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:31 हुए हैं। कार्यक्रम सबरस में लीजिए सुनिए विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत। शुरुआत करते हैं सीमा मिश्रा के गाए इस राजस्थानी लोकगीत के साथ। संगीत है रामलाल माथुर का।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: कार्यक्रम सबरस में आप सुन रहे हैं विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत। इसमें आइए अब सुनते हैं ये मराठी गीत। आवाज श्रीधर फाड़के का, संगीतकार हैं यशवंत देव।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए ये संबलपुरी गीत, जिसे गाया है जितेंद्रीय हरिया ने, बोल हैं जगदीश त्रिपाठी के।

कार्यक्रम सबरस में अभी आप सुन रहे थे विभिन्न प्रदेशों के लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. और अब पेश है आज के मुख्य समाचार. कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय. पेंड्रा में बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की गोली मार कर की हत्या. और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हो सकती है वर्षा. अब समाचार विस्तार से. कल शाम हुई छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों और निकायों में जमा स्क्रैप सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए एमएसटीसी के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले 3 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला लिया गया. बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इसके अलावा बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हो इसके लिए 1 अप्रैल से 30 जून तक ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया गया. केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने

0: कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा, खनन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और रेल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के विस्तार पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा, कोयला गैस और सौर ऊर्जा विकास के जरिए निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 58% की जगह 60% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। रायपुर में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में उन्होंने हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स को दुग्ध मत्स्य पालन और लघु वनोपज गतिविधियों से जोड़ने पर चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए माइक्रो एटीएम और रूपे कार्ड उपलब्ध कराने की समीक्षा भी की गई। मुख्य सचिव ने सहकारी शक्कर कारखानों में इथेनॉल संयंत्रों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। गौरेला पिंड मरवाही जिले में बीती शाम कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना पेंड्रा के कोटमी साप्ताहिक बाजार की है। बदमाशों ने बीच बाजार में व्यापारी पर गोली चलाई और जेवर लूटकर मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में ग्रीष्मलहर चलने की संभावना है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर और कोंडागांव जिलों के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने, तेज हवा चलने और वर्षा होने के आसार हैं। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के अवसर पर आज के बजाय कल 28 मई को अवकाश घोषित किया है। ये आदेश प्रदेश के सभी कार्यालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में रहेगा। इस बीच प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी 28 और 29 मई को बंद रहेगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि यह निर्णय वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि नंदनवन जंगल सफारी पर्यटकों के लिए 2 दिन अस्थायी रूप से बंद रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। पेंड्रा में बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर की हत्या। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हो सकती है वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम झुमझुमा में लीजिए सुनिए नीरबत्ती और साथियों के गाए हल भी खेल गीत।

খাউনু হায়া মা বলিন যা চুন পনা গো লে যা রে হো পাপা যা।

0: पाई सुई बोड़ा।
1: उरी महाराज
0: जो कचरा चो घर पना के उ साउंड दे।

0: lang, po lang na.
1: Dengabe.

জলে ঘরলে শুনে দে লে যারে ওই পাপা ঘরলে শুনে দে।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग हो से रोजे मंगलवार अड़ौ पहाड़ 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसान वाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी चो जुबानी, आकाशवाणी जगदलपुर ने।
6: लोक गीतों के कार्यक्रम झुमझुमा में आप सुन रहे हैं निर्बती और साथियों के गाए हल भी खेल गीत।

लोक गीतों के कार्यक्रम झुमझुमा में अभी आप सुन रहे थे नीरबती और साथियों के गाए हल बिखेल गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

हाँ, घर द्वार कार्यक्रम सुन तो सप्पाए बहिन दीदी मन के मैं रतनी करें से जुहार। और नन ननी पिला मन के तो भूलकुकनी होए, पिला मन के बले मोच बाटले खुबे खुबे मैया। बहिन मन पिला मन के तो मैया करते ची रहूं आम, मानतर पिला मन आजकल घरे आसोत और माए मन के बले परेशान कर सोत। बहिन मन ये पिला मन ओगाए तो रहू नुआत, मानतर आजकल घाम चो समय आए,

0: समयाने पिलामान खिनी के ध्यान देतो राय कि घाम बेरा बुलते रुआत बुलुक नी देतो राय काया कि बहिन मन घाम ने पिलामन बुल्ले जर मुंड दुखा बले हुआ है उनका जे पिलामन के घाम बेरा बुलुक नी देतो राय पिलाची मन नहीं कि बड़े लोग बले बिन काम चो घर ले निकरतो नुआ है बहिन मन काम बुता ने जाऊ तो पड़े से ची असन समय आए कि काम बुता हो नोल पढ़ाई लिखाई हो आमी समय ने नी करुआ तो पाछे पछता खोई दे बहिन मन जुआन समय ने नी कमावा तो डोकरा डोकरी बेरा तो कमाक नी होए होनी काजे जुआन समय जितलो मेहनत में सागत करुन सकू उतरो करतो राय असन समय पाचे नी है आमचो देह हाथ पाए थकले तो नी करू खोए मेहनत मसागत और कमान रले आमचो ए तो समय पीला मंचो जीवना बोले अच्छा चले दे समय काली काली के काय बुता करुआ बोलून बाती आमी आगे चो दिन ले सोचून बाती गोटो टाइम टेबल बनात राय असन टाइम हुन काम बुता के बले करतर घर चो बुता हो नोले पीला मंचो पढ़ाई लिखाई बल हो आजी चो बुता के काली के करें दे आराम से असन नी सोचतो राय कई काम हो बुता हो उनके आजीची करें दे आजीची सपाय काम बुता के करुन करतो राय उन्हीं का जे आमचो बहिन मन उठले आप लो टाइम तो जान सोची कितली समय कितलो समय ने रांदा बाटा करतो पीला झीला नहा धुआ और घर चो बोलन कितले बुता रहे से हुन बुता मन के समया ने कर ले आमच बहिन मन काम बुता ने जात बहिन तो समया ने काम बुता कर सोची मानतर बहिन मन घरे रत बहिन मन के बले गोटक समया बनात रहे काम बुता के कर तोर समया ने आमी काम बुता करुआ आमच जीवना काज बले अच्छा होई दे और समया के जाऊक नी दे तो राय और आजी समया काली के फेर नी आए समय असन आय कि उनके धरुक नी सकू ना ठेबक नी सकू उनका जे आम के समय ने सफाई काम करतो राय बहिन मन ये तो रली नगद गोट अदाए फेर बले गोटोक नगद गोटा से आले एक बले सुनू
1: सो बेड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडाना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दोर किता अदेन के पॉलिसी पोईतनद इंजे सस्ता आंता सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता पोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोरकीता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: हाँ तो बहन मन ए गोट के बल तो सुन लू अदा गोटो कहनी आसे ए कहनी चो नावाय नाग देव और ए कहनी के सांगु बीती बहन नन की भेषणो आले ए कहनी के बले सुनू
4: खुबे दिन चो गोट आए गोटो गांव ने कुम्हार कुम्हारिन रते रहोत हुन मन चो दुई जान पीला मन रहोत गोटोक बेटा गोटोक बेटी बेटा चो बिहाव भर के करुन देवराला बेटी बाछू रहे कुम्हार कुम्हारिन सपाय माई पिला मिसुन हांडी टांडी दिया कोंडी काई जाई बनावत आरु सहरे ने उन बिकोत हुनी ने हुन मंचो जीवना चलते रहे असनी असनी हुन मंचो जीवना हरी कुदिम ने चलते रहे गोटोक दिन काय होली माटी सरू रहे आरु घरे कोनी नी रहोत तेबे सत्री बीती बले से बुहारी ए काली के हांडी टांडी बना तो काजे माटी निहाय एमन बाप बेटा बले निहात डंडिक जाऊन दो एक तगाड़ी बले माटी के अनुरले होती

रले बिहाने बनाओ खोती। बुआरी बोले से, हो आया मैं जाए से। बलून कोड़ की तगाड़ी के धरून जातो काजे निकरते रहे। तेबे हुतली दाए हुंचो ननंद बोले से, मैं बोले तुम च संगे एवं आए भौजी। मके बोले निहा संगे कोड़ लागेंदे। मैं बोले अल मके बोले निहा नहीं बोले से। तेबे भाउज बोले से, अल जाओ तेबे। बलून दोनों जन माटी कोड़ लाए गेला। जाते जाते हमरला चिकन चिकन माटी लगे हुन गोटक नहीं डेंगूर बले रहे। हुन हांडी टांडी बना तो काजे खिंडी चिकन माटी चिलागु आए काय। तेबे हुसने खोजते खोजते अमरला। भाउज बले से, नोनी तुम्ही रहुक दिया मैं कोड़ें दे, तुम्ही रापते जाहा। हाउ बल्ली और रापते रापते हुन के बले कोड़ुक भावली का आयनू। कोड़की के धरुन कोड़ुक धरली। कोड़ते कोड़ते डोंगूर के कोड़ुन दिली। हुता गोटक नांग सापचो नागिन गार पाड़ू रहे। कोड़ की पातों के फुटुन गेली। गार फुटतु के दखुन नांग साप फोंपते इलो आरु लेकी के चाबुन दिलो। बीस चेक तो के लेकी घिरली। बेहुसोन घिर तो के दखुन भाउज बीती पराउनिली आर उठाउन धरली। कहाले उठती ए नोनी उठा काय होली तुमके काय होली बलते। कहाले उठती हूँ गागुक मुरियाली। अरु बले से, हे भगवान मैं काय करें दे अदाएं घरे काय सांगें दे। गोटोक बेटी हैं अले मके घरे ओलुक नी दे होते मन। मैं काय करें दे भगवान हे महाप्रभु बलते हूँ गागते रहे खूब गागली। हूँ चु गाग तो के सुनुन नांग साहब पूरे इलो। और बले से, दख नोनी ए लेकी मचो गार पीला मन के फुटाउन दिली से। हुंचो काजे मैं एक रिस काजे चाबुन दिले। मांतर तो इतरो गाक सीत मके अच्छा नहीं लागली। मैं एक जिया उक सके। मांतर हुंचो काजे तुके आप लो पीला मन के मके सात ठन गार के फोड़ ली से तो सात ठन पीला मन मके दे पड़े दे। तो यहाँ बल से जाले मैं एके जीवन दें दे। असन भले से तुके कहीं नहीं होए। मैं देहने आसी से भी तुई दिन पूर ली जाले। मैं तू चो पीला के आनुक आएं दे तुके कहीं कर रुकनी पड़े। तु हाँ बल से जाल मैं जी आएं दे। असन भले से जाले मैं चौबीस के झिकुन दें से अलसांग। तेब काय करती हाउ बल्ली। मैं मोचो पीला मन के तुमके दें दे एक जिहाउन दिया महाप्रभु बलते हूँ पाए पड़े से। तेबे नहीं हूँ सांप गेलो आरु बीस के झिकुन दिलो। बीस के झिक तो के लेके जल उठुन बसली। तेबे नांग सांप के दखुन डरली आरु बले से, मके खेमा करा प्रभु मैं जानू नी कर ले से। मैं जानू नी कर ले मके खेमा करा बले से। तेबे भाउज बोले से, अले कहीं नहीं होए नोनी कहीं नहीं होए अल जाऊँ घरे जाऊँ। ए कहीं नहीं करे अदाएं तुम के जाऊँ। बोलून घरे जाते जाते ननंद के सब कहनी के सांगे से। ननंद भाउच गोट के सुनुन बोले से, ए बहू तुम्ही मचो काजे आप लो बेटा बेटी के देवा हास। बहू मैं असन नहीं होग दें। भाउज बले से, नहीं नोनी आम चो लगे और काई बाट नहीं है मके देव छी पड़े दे। मानतर तुम्ही एक गोट के का कहे नहीं सांगा से। असने गोठियाते गोठियाते घरे अमरला। माटी के भिजाउन दिला और आप लो काम बुता के करते करला। असने असने दिन बादर पूर ली। बुआरी के दुखा उठ ली पीला होली। नांग साहब तो जानते रहे तुरते इलो और पीला के नेते नीलो और गोटक पखना के मंडाउन दिलो। आ सफाई इला दखला, ए बुआरी कसन पखना के जन्माली से। ए कसन असन होय दे मनुक पटले पखना। सफाई झन मूड धरून बटला। अरे बलसोत आले काय करवा आमच भाग ने यही रहे। बलून बलला आरु सफाई ओगाय होला। सफाई गोट के भूलकला। मांतर फिर दूसर दाएं बले हुसने छोली। तीसर दाएं बले हुसने छोली। असने करते करते सात जान होला। घर चो लोग

0: गेली आरु बले से ए पिलामन एलक तुम्ही काय काज खेला से जा बेटा जहा ए नांग साहब तुमके चाबुन दे दे तुम्ही काय काज चलो खेला से जहा ए तो के सुनुन हुन सांप हासुन दिलो आरु बले से ए पिलामन के तो मैं पोसले से मैं काय काज चाबे दे ए बात घर ने हुंचो ननंद खुबे गागे से आपटी कचड़िन हो उन्हों गागे तेबे हुंचो आया बले से तुई काय काजे हुन चंडालिन काजे गाक्षित आप लो पिला मन के तो खाउन भाती पखना के आम के दखाली हुसन चंडालिन काजे तो इतरो काय काजे गाक्षित बलून खीजली तेबे बेटी चो जीव निच मांड लियर हुन नहीं सफाई गोट के आप लो आया बीती के और सफाई घर च मन के सांग ली सुन तो के सफाई झन अचरित होला और बल सोत है तुम्ही हामी सफाई के काय काजे नी सांगलास बुआरी बले इतरो खिस्तो के बले और इतरो कष्टा के सहली है और जाते गेली मांतर कहीं के नी सांगली आले इतरो सुंदर बुआरी आमचो बेटी काजे इतरो करली है और हामी हुनके घर निस्काउन दिलो आमचो बेटी काज तो इतरो कष्टा के सहली हूँ ये अच्छा नहीं होली ये अच्छा नहीं होली बले बोलू नहीं सत्रा सत्री मन हूँ जो सपाय झन बलसत अल जाओ डगरग जाओ जुगेला फिर नहीं गेली होती बलते सपाय झन हूं के डगरग लाग नहीं करला जाते जाते हुनी बाटे गेला आरु अमरला काय दक्षत बुहारी बीती सातो पीला मन के पोटारून गागुन गागुन मया करते रहे दखुन हुन मन के कहीं समझ नहीं एली ठिया हुन दखसोत तेबे नांग साहब बले से ए सपाय पीला तुम चो बुहारी चो आत आप लो ननंद चो जीव के बचा तो काजे ए मके घोट हारू रहे कि मैं आप लो पीला मन के तू के दें दे बलून तेबे मैं हुन चो नंगत हो तो दिन जाए आरु पीला मन के धनुन एते आए पखना के मोडाउन भाती मैं ये पीला मन के आप लो जन्मालो पीला लेबल आगर मया ने पोसले से तुम्ही इतरो अच्छा बुहारी के घर ले निस्काउन अच्छा नी करलास तुम चो बुहारी आप लो परिवार का जे जीव के बले देख सके समझलास इतरो बलून मैं बले ये चो परीक्षा धरते रहे ये पास होली आप लो परीक्षा ने आप लो पीला मन सबके धरून आप लो घरे जहा बलून सांप आप लो बिल भीतरे ओलते रहते बे सपाय जन हुनके हाथ जोड़ून पाए पड़ला और खूबे खूबे धन्यवाद करला कि तुम्ही आमचो पीला मन के अच्छा ले संगालास और आमचो बुआरी चो इज्जत बले बाचली मचो बेटी चो जीव के बले बचालास असन बलून हुनचो सत्रा सत्री मन सपाय जन हुनके पाए पड़ला और हरी खरी आप लो घरे इला और आप लो बुहारी के बले खेमा मांगला बुहारी आमी तुम चो संगे अच्छा नहीं कर लो असन बलून तेबे बुहारी बीती बले से नहीं ये सब समय चो आए काय करा से हम चो समय असने रहे हम चो भाग ने इतरो रली तेबे हुन होली बलते तेबे सपाय झन खुबे हरी खरीक आप लो घरे इला नाते नतरा संगे सपाय झन हरी कुतिम ने रला मने।
1: हाँ तो बहिन मन ए बहिन आत कहनी सांगू बहिन आत ए ननकी वैष्णव कितलो अच्छा कहनी के सांगला ने गीत कहनी संग संगे गोटो गीत बला से आले ए गीत के बोले सुनु अर ए गीत के गावला से विपिन बिहारी दास और हुन मंचो संगवारी मन आले कहनी के काई गीत के बोले सुनू।

तो बहिन मन ए गीत के गाहुन रोत विपिन बिहारी दास और हुन मंचो संगवारी मन। तो बहिन मन और बोले गोटो गीत आस्ता आले ए गीत के बोले गावला से मेघनाथ पटनायक और हुन मंचो संगवारी मन आले ए गीत के बोले सुनू।

हाँ तो बहन मन ये गीत के गाउन रोत मेघनाथ पटनायक और हुन मंचो संगवारी मन गीत सुन ले तो सुनुक चिभाए से बहन मन समय आबले आस्ता आले फेर बल गोटो गीत सुनुता ये गीत के गावला से लकेश्वर खुदराम और हुन मंचो संगवारी मन आले ये गीत के बोले सुनू।

तो बहन मन, ये गीत के गाउन रहो लकेश्वर खुदराम आर हुन मंचो संगवारी मन। तो बहन मन, अदाय मचो जातो समिया बले होई से, समिया ने एक पड़े से और समिया ने जाऊक बल पड़े से। घर द्वार कार्यक्रम सुनतो सपाय बहिन दीदी मन के मैरत निकरे से जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से

0: बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामी की बीड़ा खड़ा चुगोट।
2: खेतीहर दादा दीदी मन फसल कमानी चो नवा नवा उआट ने आजी जाना कि पपई कमानी कसन करुन करले आम की नगद उपजन संगे संगे लाभ बले मिरुक सके। तो काश्तकार भाई बहिन मन असन तो पपई बूटा आमचो घर मन ने एक ठान दुई ठान रहे से छे। मांतर नगद कमानी का जे ये कमानी बरक कार लाभ देतो बीती हो सके। कसन बल्ले पपई बरक कार फरते चे रहे से। दादा दीदी मन काई बल्ले कमानी का जे लेहरा पानी के बल्ले दघुक लागे से। तो पपई मंडा तो काजे सूखा आरु गरम लेहरा पानी खुबे नगद रहे से। पपई कमानी काजे पानी निकास बीती दुई मटिया भूई नगद रहे से। पपई कमातो काजे बिचारलो बेड़ा मरहान बाड़ी थाने पानी निकास जो नगद उपाय हो तो रासे। खेतीहर दादा दीदी मन नगद उपजन दे तो किसी मन ने पपई के बीचाले अकराउक लागे से। हुंजो काजे पलहा बले थरहा पकाउन कियारी मन थाने अकरावा। नहाले नर्सरी मन थाने पेगड़ थैली ने बले माटी भरून बीचा डारून बूटा अकराउक सकास। पपई कमानी चो नगद किसी मन ने पूसा डेलिसियस, पूसा मैजिस्टी, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, कुर्ग हनीड्यू, ताइवान अरु सूर्या ये किसी मन नगद उपजन बीती हो से। काश्तकार दादा दीदी मन नर्सरी ने कियारी मन ने बूटा तैयार कर तो उवाट के सुना। पलहा पका तो पहिल डोली के नगद खोड़ून खत मिसाउन 3 मीटर लाम 1 मीटर ओसार अरु संभ हुईले खंडित डेंग कियारी बना तो राय। हुंचोले कियारी चो माटी के 5%

0: फार्मेल्डिहाइड नाचो उखदने उपचार करून बीचा पकातो राय। बीचा के पकातो पहिल थायरम कैप्टान नहले कार्बेंडा जिम 2.5 ग्राम उखदने 1 किलोग्राम बीचा के हिसाब धरून उपचार करतो राय। बीचा के अप्रैल ले जून महीना ने 1 सेंटीमीटर चो गड़िया ने मंडातो राय आरु धाड़ी चो धूरिया 10 सेंटीमीटर संगातो राय। 2.5 एकड़ बेड़ा ने रोपतो काजे 250 ग्राम बीचा लागे से। बूटा के नर्सरी थान ले रोपतो काजे निकरातो पहिल पानी झपाउन देतो राय। असन कर ले बूटा निकरातो काजे मसागत नी लागे। दादा दीदी मन प्लास्टिक थैली ने बूटा तैयार करतो उवाट के बले जाना। प्लास्टिक थैली ने बूटा तैयार करतो काजे 150 गेज मोट जो 3 सेंटीमीटर ले 7.5 सेंटीमीटर ओसार आरु 10 ले 12.5 सेंटीमीटर लाम थैली काम ने आंतो राय। थैली मन के माटी वर्मी कंपोस्ट नहले गोबर खत आरु बारू मिसाउन भरतो राय। बीचा के 1.0 सेंटीमीटर गड़िया ने थैली चो मंजात ने मंडातो राय। बीचा मंडातो पाछे काई बले छाए बनाउन ढाकुन पानी देतो राय। बूटा मंडातो काजे खोदरा जेठ महीना जैसे एवे आसे जून महीना ने तुम्ही खोदरा खोडुक सकास। 2-2 फीट ओसार लाम आरु गड़िया रहो। बूटा ले बूटा चो फरक 2 मीटर रहो। सफाई खोदरा मन ने 10 किलोग्राम नगत सड़लो गोबर खत 200 ग्राम सुपर फास्फेट आरु 50 ग्राम क्यूनाल फास 1.5% चूरा के देउन खोदरा मन के भरून देतो राय। बूटा रोपतो काजे तैयार कर लो बूटा मन के अगस्त सितंबर बल्ले ने सावन भादो महीना ने खोदरा ने रोपुन देतो राय। खत भात बल्ले पपई बूटा 12 ले 15 महीना ने फरधरु मुरियाए से। इचो काजे 2 महीना ने 90 ग्राम यूरिया 250 ग्राम सुपर फास्फेट आरु 140 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास सपाय बूटा चो हिसाब धरून देतो राय। कास्तकार दादा दीदी मन असन ध्यान करून कमानी करलास जाले पपई चो नगत उपजन धरुक सकासे।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामी की बीड़ा खड़ा चुकोट।
2: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन।

श्रोता सुमन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को सुशील सिंह ठाकुर का प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में हेलो ब्रदर फिल्म के इस गीत के साथ। सुधाकर शर्मा की बोल धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने, फरमाइश आप सबकी। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल और खुशबू सेन आप हैं। बागबहारा भदरसी से। यवतमाल विदर्भ से आप हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। नरेंद्र कुमार तिवारी जेल रोड रायगढ़ के हमारे श्रोता। मोहम्मद सईद अब्बासी, परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन, सुहान अरजान और अबान आप हैं ऊपरकोट बुलंद शहर के हमारे श्रोता। एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजुम आप हैं झारखंड से। देवलाल कर्ष, कामनी और यश कर्ष आप हैं बिलाईगढ़ से। सुधीर नूतन, संदीप गगलानी, सुनीता जैन, सुनीता

शर्मा और जगमोहन प्रजापति। आप हैं करनाल के हमारे श्रोता। गोलबाजार बक्सर से खत आया है। आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। तहसील वसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से आप हैं रामचंद इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी, सुरभि मंजूषा, गौतम इंगोले। साथ ही हैं नामदेव राव शिंदे, विलास शिंदे और सुनील जबड़े। वसमत हिंगोली महाराष्ट्र से ही दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू और मोनू। छकुल इंगोले, देव इंगोले, छोटू इंगोले, पेंटर रामचंद्र, आप हैं झुमरी तलैया के हमारे श्रोता। मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार और सागर कुमार, आप हैं दतरेंगे से। कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, मौसम संगीता रुद्र और रिधि गुप्ता, आप हैं राजनगर मधुबनी से। मुकेश रानी, कुसुम, पलक और पंखुरी गुप्ता, आप हैं ऐशबाग कॉलोनी लखनऊ के हमारे श्रोता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन। आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा, आप हैं गौरीनगर इंदौर से। फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी, इशिका और तेजल यादव, आप हैं संबलपुर कांकेर से। सनावत मध्य प्रदेश से आप हैं दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार। डगेसर राम साहू, नूतन साहू और गौरव साहू, आप हैं सुंदरपारा रूहांसी के हमारे श्रोता। खरगोन मध्य प्रदेश से आप हैं ध्रुवास सोनवड़े, सुनीता, खुशी, प्रियांश सोनवड़े, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम। शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष, साथ ही आशिक चौहान, आप हैं रायगढ़ बाबा कुटीर के हमारे श्रोता। और बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा और धनेश्वरी वर्मा ग्राम पंचायत भटेना से, साथ ही सारा गांव के हमारे श्रोता हैं। सुजान वर्मा, सुहद्रा, आयुषी और कृत वर्मा। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म हेलो ब्रदर का ये गीत।

मतवारी दुर्ग से नंद कुमार यादव, दुकलहीन यादव शंकर, शमा भोला किरण, कुलदीप द्रोण, अमन ईश्वर और कुलेश्वरी यादव, प्रमोद कुमार साहू बीमा, वैभवी विनोद, विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू आप हैं। बोर्ड सला नैला के हमारे श्रोता दंतेवाड़ा बचरी से बलराम सेन, रितिका इंदु पोषण, पुष्पराज भुवनेश्वर और पंचू सेन, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति, शीर सागर, सतीश जगदीश और संजय चौहान, दरियानामल अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी आप हैं। चार मीनार चौक गंडई पंडेरिया से झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश, कमल सेतपाल, भूमिका और सुशीला, नारायण गायकवाड़ दयानंद, ओमकार साई गायकवाड़ आप हैं। कोली नांदेड़ के हमारे श्रोता विशाल नहावकर और पीएस नहावकर आप हैं नरवेल से, शंकरलाल गंगराडे, वनीता छोटू, पूजा रोशनी, अजय और वामिका गंगराडे आप हैं। ग्राम दीवाल बाजार चौक हमारे श्रोता, जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना भूपेंद्र वाघे, झंवर तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे, प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज शिमाली आप है। कवर कॉलोनी पड़वा के हमारे श्रोता, मोती गार्डन भाटापारा से मोतीलाल झेरिया, कल्पना बिट्टू कुमार, चिंटू और युग कुमार झेरिया, भाटापारा दतरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा आप हैं। नवागढ़ कटई के हमारे श्रोता सुरेश सारथी और पूर्णिमा सारथी आप हैं बेमेतरा से, जलगांव सोमनाथ जालना से आप हैं नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश कार्तिक, अश्विनी वैष्णवी हर्षुल, औरंगाबाद से वैभव गौरव और मेघराज साथी हैं युवराज और रिधोरी देवी, सुधाकर राजी जाधव, प्रशांत जगुताई आप हैं मराठवाड़ महाराष्ट्र के हमारे श्रोता, मुताला से प्रथमेश देशमुख और करडा से सर्वद देशमुख, दुर्गादास जोशी, गंगाधर गजानन, संजय आशीष, पृथ्वीराज और साध्वी जोशी, मुंगेली से आप हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, तिलोकचंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन राज, आर्यन वर्मा, आरोही ईशिका और अंजलि साथ ही श्वेता वर्मा आप हैं खरगोन मध्य प्रदेश से, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा आप हैं प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से, बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल, हरदेवलाल पारा सिमगा से आप हैं रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी और साथी हैं कोमल यादव, परेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन, अभिजोत आप सभी हैं भटिटा के हमारे श्रोता, हनुमानगढ़ से आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश वैष्णव, भीषम दास मानिकपुरी आप हैं हिच्छा महासमुंद से, दल्ली राजरा से एक हदाया है आप सभी हैं सुरेश नागवंशी, ललित यादव, पुनीत सेन, बुधेश्वर रावटी, रामेश्वर चिराम, ललित देवांगन, ईश्वर साहू और गोविंद साहू आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिलवाले से कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया ये गीत, नदीम श्रवण का संगीत बोल लिखे हैं समीर ने।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
2: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हां, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
3: आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। इसमें लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म विवाह का ये गीत। गीतकार और संगीतकार हैं रविन्द्र जैन। पसंदकर्ता श्रोता हैं आप सब। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता आदित्य और कृष्ण श्रीवास्तव, दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लबी श्रीवास्तव। आप हैं अमरपुर पिंडरा से। बाजारपारा बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा। बीड शहर से आप हैं रंजीत कुमार थोरात, रामकिशन गणपत थोरात और पहलवान थोरात। तिरुपति नगर लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पी आर जैन। प्रकाश जैन आप हैं दयानंद नगर नांदेड़ के हमारे श्रोता। मोहाली चंडीगढ़ से आप हैं टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा, शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल आप हैं कालका के हमारे श्रोता। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। धरसीवा से छिदुलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव, छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, साथ ही रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव आप हैं संतोषी नगर रायपुर के हमारे श्रोता। देवपीठ वाशिम से राजेश खंबायतकर, प्रेमा खंबायतकर, राजश्री, राजू भावसार, आरकी कुसुमकर और प्रीति खंबायतकर। सतीश अनेजा और बिमला अनेजा आप हैं चंडीगढ़ से। भाटापारा छत्तीसगढ़ से रामकुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश कार्तिक और युवराज राउत, चंदननाग, हरीशनाग, उदयनाग और बाल सिंह नाग आप हैं लौंडीगुड़ा बस्तर के हमारे श्रोता। दरभा बस्तर से रामधर कश्यप, रामधर बघेल, उदय ठाकुर, मोतीराम मौर्य, दुखूराम, सोनू बघेल, नीलकंठ सिन्हा, भीमा मंडावी, शिव सोरी और बुधराम सोरी। निवासा खुपटी से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट और साथ ही हैं देवीदास। हरिभाव बिड़वे, श्रावण, अनीता बिड़वे आप हैं श्रीरामपुर भोकर के हमारे श्रोता। सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति, वर्षा, श्रीमण और श्रीमेड़ वाघमारे आप हैं चंदन नगर सतारा से। कोल्हापुर से आप हैं

विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता अनिकेत और माया चौहान। घंटाघर चौक खंडवा से आप हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। वी पूनम नायडू, साजन, के मास्टर शिवांशु, कृष शिविक, दुर्गेश कुमार और अभिषेक नायडू आप हैं धनोरा जगदलपुर के हमारे श्रोता। मध्य प्रदेश इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, गणेश मराठा, कार्तिक भाव संजना, परी मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता और नारायण खर्चे। और फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से आप हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस राम गड़िया। पेश है आप सबकी पसंद पर उदित नारायण और श्रेया घोषाल का गाया ये गीत।

जिला नांदेड़ से शंकरलाल जायसवाल, रामलाल, गुलाबलाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, मीनाक्षी, दुर्गेश्वरी और ज्योति। वसमत से आप हैं चंदनलाल जायसवाल, विजया, विजयालक्ष्मी और श्रेया। जमशेदपुर से आप हैं अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी और राकेश कुमार। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, आप हैं छत्रपति संभाजी नगर के हमारे श्रोता। बेरडी से आप हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमड़े, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन गवनेकर और धीरज। मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, आप हैं बेलर गांव के हमारे श्रोता। चितलबाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश अधीरा इंगले, शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे आप हैं मटिया बालोद से। डोंडी बालोद से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू, प्रियंका और मुरली गौतम। दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दतरिंगी से भागवत वर्मा, गुलाबदास मानिकपुरी हैं लेवई से, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से दुर्गा राम साहू, गौतम उर्वशा, डामिन उर्वशा, लक्की और डोमन लाल कोठारी आप हैं डोंडी लोहारा संबलपुर के हमारे श्रोता। अर्जुंदा बालोद से दिनेश यादव और साधना यादव। तुवे गोंदी मंचुआ से रिंकू रावटे और अयांश रावटे। चारामा कांकेर से आप हैं नरसिंह थापा, बीर सिंह थापा और शंकर सलाम। पाठर कवड़ा के श्रोता हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची अनुश्री और धनश्री बुरांडे। सूरज, प्राची और एकलव्य आप हैं बल्ला रशा से। प्रकाश तिरसुनिया, विकास तिरसुनिया, नैतिक मुकुल, दिव्यांश धैर्य और आराध्य आप हैं उत्तर बस्तर कांकेर के हमारे श्रोता। बालोद से एक हताया है आप हैं मंतुराम यादव, चित्र रेखा, साहिल शिवम यादव, साथ ही हैं केशव, माधव, राकेश, पोषण, रितेश, नेत्राम, संतुराम, विजय, शंकर और भोला। गणेश धाम मरसूली बालोद से आप हैं जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास मानिकपुरी, मोतीबाई और धनवंतिन बाई मानिकपुरी। आप सबने फरमाइश भेजी है धर्मात्मा फिल्म के इस गीत के लिए। इंदिवर की शब्द रचना, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, आवाजें कंचन और मुकेश की।

कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे, जालौर उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंचोलिया, जतुका किशनपुर से आप हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज, गणेशपुर से आप हैं हीना कैसर, वकील राही और फिरोज आलम, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, आप हैं कोटवा नारायणपुर बलिया के हमारे श्रोता, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर गाजीपुर से ही आप हैं अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय, बिरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक प्राची और तनु करमकर, दौलतबाग मुरादाबाद के श्रोता हैं आप जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी, जरूड़ वरूड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ुदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक और युवराज, लुहड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद राघवेंद्र, रिया रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी बुल्कीवाली और फलना झा, आप सभी ही गोकुल चौक गंगजला सहरसा के हमारे श्रोता, नयनगर सुपौल से आशुतोष कुमार और अमिताभ कुमार, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया आप हैं जमशेदपुर से, नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे आप सभी हैं कृष्णानगर नागपुर से, सनावत मध्य प्रदेश दुर्गा चौक से एक खत आया है आप हैं कालू सिंह बड़ौले, सीताराम बड़ौले, हीरालाल, तीर सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचन, बुलढाणा महाराष्ट्र के श्रोता हैं आप सभी, नरेंद्र नरवाडे, ज्योति नरवाडे, आकांक्षा और आकाश कुमार, हिंगड़ी आलोट से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़, दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना, लक्ष्मीना यदु, लालपुर से आप हैं लोकेश यदु और समीर यदु, अनारकली बाजार जगराव के श्रोता हैं आप सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष, बीबी गाव्या और भाई सुच्चा पाठक, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग आप हैं भटिंडा रोड बडवाली से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता आप हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला के हमारे श्रोता, जूनापानी सनावत से साहिल, हरिओम, विशाल और सुमन, देवशंकर तामोरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामोरिया, डॉली मास्टर अल कबीर, बेबी पूजा तामोरिया और प्रभा देवी आप हैं डोंडी लोहारा बालोद के हमारे श्रोता, पाटन दुर्ग से एक खत आया है आप हैं संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा, डोंडी लोहारा बालोद से ही पीयूष नेताम और ज्योत्री बाई नेताम, साथ ही हैं कोमल नेताम, दुर्ग से आप हैं सुरित रमेश साई, नयापारा बेमेतरा से ईश्वरी प्रसाद साहू, योगेश सारवा और आशा सारवा आप हैं जिला राजनाथ गांव के हमारे श्रोता, तो आइए सुनते हैं बाजीगर फिल्म से आप सबकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम श्रोता सुमन का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म साजन से। समीर का लिखा ये गीत जिसे सुरों से सजाया है नदीम श्रवण ने, पसंद आप सबकी। गणेश पेठ महाराष्ट्र से आप हैं अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमूल अमृत और सुवर्णा शिंदे, अभिजीत गौहाणकर, सरिता गौहाणकर, सिद्धांत प्रिंस, एकांश गौहाणकर आप हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, विश्वकर्मा नगर नागपुर से, शैलेश गौहाणकर वैशाली, श्वेता सुमित गौहाणकर और कुमारी ध्वनि गौहाणकर, छत्री तालाब अमरावती से आप हैं साधना रानी गुप्ता और किशोर गुप्ता, देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा, प्रीति और देबेन जी आप हैं सुपाही साही बड़ा बाम्बू के हमारे श्रोता, नया पारा दरचूरा से आप हैं फिरंता साहू, दुलौरीन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू, ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू आप हैं दरचूरा के हमारे श्रोता, तासपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, जयंत कुमार बैरागी आप हैं ढोली सकरा के हमारे श्रोता, सुनीता बाई घायल, सानिका घायल और गजानन घायल, साथ ही दत्ता घायल आप हैं मालेगांव से, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा, सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू सोनू, कान्हा और आदित्य देवांगन आप सभी हैं कतियापारा जूना बिलासपुर से, बंबर चाटीडीह से गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी महेश्वरी, मिल्की देवांगन, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन, जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र तालुका नांदूरा से आप हैं नारायण भाऊ खड़से, रक्षाताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से, साथ ही हैं मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और देविका चौधरी, दान सिंह रावत, दानु पद्मनी रावत, शुभम और सौरभ रावत आप हैं भाटापारा से, सुभाष वार्ड भाटापारा से, अमृता यादव, पर्वती यादव, ईश्वरी लक्ष्मी और कुमारी प्रेरणा डिम्पी यादव, प्रभाकर जोंधली और आरती जोंधली आप हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से, हथखेरा भाटापारा से पंचू यादव और दादू यादव, कमलेश साहू, हरेंद्र साहू और सुशील बेलसपुरिया आप हैं बावली के हमारे श्रोता, और महासमुंद से आप हैं रेवती सेन, सुदन साहू, रामकृष्ण साहू, देवनारायण सिन्हा और छगन सिन्हा। आप सबकी पसंद पर प्रस्तुत है फिल्म साजन से कार्यक्रम श्रोता सुमन का ये अंतिम गीत।

0: debated since its creation.
1: At least 31 people were killed and 40 others injured in Israeli raids across southern Lebanon. According to Lebanon's Ministry of Public Health, the strikes targeted yesterday in several towns and villages amid escalating cross-border tensions between Israel and Hezbollah. On to sports. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in the eliminator match this evening at New Chandigarh Mohali. The match will start at 7:30 p.m. The winner will take on Gujarat Titans in qualifier 2 on Friday for a place in the final. In badminton, India's top player H.S. Pranoy produced a superb comeback performance to defeat Indonesia's Jonathan Christie in the opening round of the Singapore Open 2026 at the Singapore Indoor Stadium. Benchmark domestic equity indices were trading in negative territory during the afternoon session today. The Sensex dipped 102 points to 75,908 and the Nifty 50 slipped by 14 points to 23,900 when reports last came in. However, in the broader market at the National Stock Exchange, Midcap 100 index was trading almost 0.3% up. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court upholds Election Commission's power to conduct SIR of electoral rolls, says it is in consonance with Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha. India-Canada reaffirms shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. U.S. Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in U.S.-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
0: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
2: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और

0: महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉ अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
4: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
5: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार। दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र, दात्र,

0: कला और कलाकार सुन तो सब पाए भाई बहन मन के मैं रत्नी करे से जुहार। भाई बहन मन कला और कलाकार भित्रे आमी कलाकार भाई बहन मन संग बले भेंटघाट बल कराते रहूं। असनी एक कलाकार आत प्रहलाद सिंह टिपानिया, ए मन आत मध्य प्रदेश चो मावली लोक शैली कबीर भजन, देश विदेश ने प्रसिद्ध भजन गाते रहो। उनचो प्रसिद्ध भजन आई गुरु महिमा और ज्ञान चो वर्णन करते रहो। संत देव अच्छा गुरु और ज्ञान पाव तो काजे हरि करो। झिनी झिनी बिनी चंद्रिया संत कबीर कालजयी भजन और दोहे रूपी चादर जीवना काजे खूबे सांगला। प्रहलाद सिंह टिपानिया कबीर भजन गाव तो काजे ये मन के 2011 ने आमचो भारत सरकार बाटले बले पद्मश्री पुरस्कार ने सम्मानित करला। ए प्रहलाद सिंह भारत चो खाद्य उद्योग जल शक्ति राज्य ने मंत्री बले रहोत। असनी काई बले गीत नाटक संगीत सीखलो भाई बहन मन। आमचो देश ने पुरस्कार बल मिरे से असनी गामन ने बले नाट मन बल सीखुन बाती उन मन मंडी बाजार होते रहुआए। मुता बले नाट नाच तो काजे बले आजकल मोबाइल ने ची बले उन मन के बुक कर सोत। असनी नाट भजन गीत गावलो बले गोटो कला होय से। ए कला के सपाय लोग तो करुक नी होय। जोन कलाकार भाई बहन मनात होय सोत हुनी मन ची कर सोत। कलाकार भाई बहन मन चो ना बले होय से और उन मन के पुरस्कार बले पाए सोत। असन कलाकार चित्र कलाकार ने बले पुरस्कार मन बले मिरे से। भाई बहन मन असन कला के सीख तो राय कि आप लो जीवना काजे बले अच्छा काम है वो। कला बल्लो ने कितरे ही कला मन होय से। एक कला जान लो भाई बहन मन उन कला मन के नी भूलक तो राय। जसन की घर जो सियान सजन करते ऐसो उन कला के पीला मन के बले सिखात राय। आम जो पीला मन के बले नी सिखा ले कहाँ ले सीख दे ए मन के बले सिखात राय। आमी पीला मन के हुनी काजे नानी बेरा ले उन मन के पढ़ाई लिखाई संगे संगे घर जो सियान मन करते ऐसो उन काम बुता के बले करा तो राय। खेती बाड़ी हो नहोले घर जो बड़ी मूर्ति ए कला मन घर जो सियान मन करते ऐसो उनके सिखात रहे। आजकल जो पीला मन बोलुआ आमी इतलो पढ़लू से आमी ये बुता के नी करूं बोलुआ। असन हुनिका जे पिला मन के नानी बेरा ले पढ़ाई संग संगे घर चो काम बुता के बोले सीखा तो रहा है। नानी बेरा ले नी सीखला ले हुन मन पाचे ठग हो दे। कई बोले बुता के इनामदारी ले करुआ और सीखुआ तो उनके सीखू खोए दे ची। कई बोले काम बुता हो उनके सीखुन रले आमचो जीवना का जे काम है इसे। भाई बहन मन ये तो रली नगद गोट अदाए फिर बोले नगद गोटा से अले एक बोले सुनू।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है। बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेड़ा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दोरकिता जीएसटी तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
0: हाँ तो एक गुट के बोले सुन लू तो भाई बहन मन दाए गोटो गीता से आले ए गीत के गावला से सीयु राम नाग और हुमन जो संगवारी मन आले ए गीत के बोले सुनू।

हाँ, तो ए गीत के तो सुन लू। अरे गीत कुरिया भाई बहिन भाई बहिन भाई मोनाथ शिवराम नाग और हनुमंचो संगवारी मन। तो भाई बहिन मन और बोले गीता से ए गीत के गावला से दैमती नाग और हनुमंचो संगवारी मन। अले ए मन जो गीत के बोले सुनू।

0: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुक जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
1: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 से 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग हो से रोजे मंगलवार अड़ पहार 3:30 से 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
2: हाँ एक गोट चो पहिल गीत सुनते रहूं उन गीत के गाउन रो दैमती नाग और हुन मंचो संगवारी मन। तो भाई बहन मन दाए फेर बोले गोटो गीत आसता समय बोले आसे आले फेर ए गीत के गावला से गेलमनी देवी और हुन मंचे संगवारी आले ए गीत के बोले सुनू।

0: हाँ, ए गीत के गाउन रहोत गेलमणि देवी और हुन मंचो संगवारी मन। ए गीत के तो सुन लू अदाय मचो जातो समयावले होई से जातो पूरे कला और कलाकार सुन तो सपाय भाई बहन मन के मैरत नी करे से जुहा।
1: दादा दादा दादा दादा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला और कलाकार। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे इसी बैंड पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। हम आपको बता दें कि एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए लेते हैं जानकारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। पहले सुनिए आज की सभा के कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:30 पर गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:05 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। शाम 5:10 पर होगा युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी। बस्तर के स्वर शाम 7:21 पर कार्यक्रम आमचो गांव का प्रसारण किया जाएगा। कुड़ई फूल लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नीलू राम और साथियों के गाय भत्री लोकगीत रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम पीलामन काजीगोट में आप सुनेंगे ऋतु चक्र के बारे में, प्रस्तुति होगी बंशी राम कश्यप की पुरानी फिल्मों से। ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर शासकीय योजनाओं की जानकारी संबंधित कार्यक्रम ओवाट में सुनिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के बारे में प्रस्तुति होगी जयराम कवासी की। सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास इस विषय पर हम आपको सुनवाएंगे परिचर्चा रात्रि 10:00। प्रतिभागी होंगे श्री मंथर राम नाग, श्री बलदेव मौर्य और इस कार्यक्रम के संपादक होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 10:30 कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीत। अब लीजिए सुनिए हमारी कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना 6:05 पर, चिंतन 6:20 पर, आलेख और स्वर होगा वगदुम शाह का। 6:25 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर भूपेंद्र सिंह का, संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट का प्रसारण किया जाएगा 6:35 पर और दोपहर 1:05 पर। 6:40 पर कार्यक्रम हुलहुली में आप सुनेंगे हिंगलाजीन माता पाड़, वादक कलाकार होंगे गणपति कड़ियारी और साथी। 7:05 पर कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, इसमें आप सुनेंगे नाटक मंजिल की तलाश। इस नाटक के लेखक होंगे थॉमस चाको, प्रस्तुति होगी शाहिद हुसैन की, साथी होगी फिल्मी गीतों से सजी मधुरी माँ। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे लोकमंजरी, इसमें आप सुनेंगे विभिन्न बोलियों में लोकगीत NCERT। ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा सुबह 9:00। 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, इसमें आप सुनेंगे सफर फिल्म के गीत। गुलशन, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत सुबह 10:00। 10:30 पर लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुनेंगे सामनाथ और साथियों के गाय ध्रुवी आदिवासी लोकगीत। 11:00 कार्यक्रम एक ही कलाकार आधारित होगा करण जोहर पर। गुलदस्ता, गैर फिल्मी गीतों और गजलों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:30 पर। 12:00 पाटा विनार लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पार्वती और साथियों के गाय ध्रुवी लोकगीत। घर द्वार, ग्रामीण महिलाओं का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:30 पर। 1:10 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। कला और कलाकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। 3:00 से विविध भारती के कार्यक्रम

सुन सकते हैं FM बैंड पर। कल शाम 4 बजे हमारी सांध्यकालीन विशेष सभा आरंभ होगी कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार आप सुनेंगे हल्बी बोली में शाम 5:05 पर। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवाणी। जगन्नाथ और साथियों के गाए गोंडी लोगी सुनेगा शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे का समय होगा हमारे दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर का। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:21 पर। डांडामाली लोकगीतों के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कोया और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम पीला मन काजे गोट इसमें आप सुनेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। प्रस्तुति होगी शंभूनाथ नाग की ग्राम पंचायत की विकास गाथा। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। संस्कृति विरासत परंपरा व्यवस्था और जैव विविधता इस विषय पर वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम घुमक्कली में आप सुनेंगे नंदो राम भारती और साथियों के गाए भतरी नाट गीत। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे और रात्रि 10:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। ये तो थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। अब लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत समूह स्वर में।

देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र को। समय है शाम के 5:10 का। पेश है युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी हर भी बोली में।

0: बैठे ऑनलाइन शिक्षा जो माध्यम ले सीखुक सकू।
1: हाँ हाँ हाँ सपाई पीला मन सीख तो अलग रहू है ने। हाँ। आ कोनी झटके सीखवात तो कोनी देर ले सीखवात तो ऑनलाइन असन शिक्षा ले वीडियो के घन घन देखुक सकोत जब तक कोनी विषय टॉपिक समझ नहीं है कसन।
0: हाँ ऑनलाइन शिक्षा खूब ही आसान तरीका है आप लोग हुनर के सिक्तो काजे जो युवा कई वजह ले आप लोग पढ़ाई के बाहर जाऊन पूरा करुक नहीं सके हुन घर बैठे ऑनलाइन जो माध्यम ले आराम ले आप लोग पढ़ाई के पूरा करुक सके।
1: हाँ और सिक्तो काजे बहुत कुछ आसे जो ना आप मंचो जसन की कई लोग के खाना बनातोर डांस करतोर सिलाई करतोर नया भाषा सीखतोर और बोले असन ये सब ऑनलाइन ने सीखुक सकोत ने।
0: हाँ सत्य बसी घर बैठे ही मन मन जो आप लोग मन पसंद जो काम के सीखों आगे बढ़ सको और आप लोग भविष्य बनो सको। इंटरनेट ने ये सब काजे आम जो खूबे काम इवाय
1: आजकल तो स्कूल मन ने बोले छुट्टी दिन जो पीला पढ़ाई ने कमजोर आसे उनके ऑनलाइन क्लास बोले दर्शो ने।
0: हाँ ऑनलाइन शिक्षा जो भविष्य के ये गोटो खूबे अच्छा टॉपिक रही ने काय काजे बल्लो ने आजकल जो जमाना ची यही आए को की कहीं बल पूछ सब यही बोलवात ऑनलाइन ने सीखे दे ऑनलाइन ने करें दे।
1: हाँ।
0: और आप लोग भविष्य बनाए दे।
1: हाँ। और ये भी समय सब सब काम ऑनलाइन ले हो से नानी हो बड़े हो ने जसन बल काम काज हो ये भी कहा सब आमी ऑनलाइन ची बाटे बड़ू से कसन। हाँ उतरी नहीं आगे चो ये चो ले खूब फायदा बले हो से ने जसन की नुआ नुआ कोर्स जो बड़े शहर ने पढ़ाई हो आए और सिखा हुआ तो छोटे गांव चो बच्चा मन आप लोग आर्थिक स्थिति चो लागून करुक नहीं सकुआत कहन।
0: हाँ,
1: हाँ तो ये हुन मन का जे ऑनलाइन सुविधा खूब अच्छा आए हुन मन आप मन पसंद विषय के ऑनलाइन पढ़ून आप लोग भविष्य के बड़ा उत्साह बहुत कसम।
0: हाँ सत्य गोटमन सांसिस खीर सागर तो संगवारी मन तकनीक इंटरनेट ले दूर नहीं भागा एक आप लोग ताकत बनावा आप लोग क्षेत्र जो युवा मन पीला मन जो बड़े बड़े सपना आसे गजब जो प्रतिभा बले आसे बस जरूरत आए तो सही शिक्षा सही संसाधन जो तो संगवारी मन ऑनलाइन शिक्षा हुन मन जो बंद दरवाजा जो चाबी आए जोन थाने हुन मन ऑनलाइन शिक्षा ले आप लोग भविष्य बनो सकोत और आगे बढ़ सकोत आय का।
1: हाँ हाँ ये तो रही संगवारी मन आज जो सामूहिक चर्चा ने का मस्त आमी ऑनलाइन शिक्षा चो बारे में सांगलू युवर्सी संगे कसन।
0: हाँ।
1: तो अदय आमी तुम चो काजे आगे और बले कार्यक्रम आनलू से जो नाय यादों के श्वर और सामान्य ज्ञान चो गोट और रोजगार सूचना और वार्ता तो अदय आगे बढ़ू यादों चो स्वर बाटे ने।
0: हाँ।
1: तो आज चो यादों चो स्वर भीतरे पहली गीत आए फिल्म लव स्टोरी ले जोन 1981 चो सुपरहिट गीत रहे ये थाने दिला सोत लता मंगेशकर और अमित कुमार और संगीतकार आर डी बर्मन और गीतकार आनंद बख्शी।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: तो संगवारी मैन, आज जो दूसरा गीत आए 1960 जो ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम जो जोन सबले लोकप्रिय गीत रहे, और ये सदाबहार गीत के महान गायिका लता मंगेशकर आप लो आवाज दिली से, और गीतकार आत शाकिल बुदियानी, और संगीतकार आत नौशाद आले। फिर या सुनो ये गीत के।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: उर्वशी,
2: हाँ?
1: गीत गोविंद तो सुनते रहने सुनते रहे सुनुक भावते रुआ कसा
2: हाँ।
1: ने तो आमचा मोंडरा ने तो और बोले कार्यक्रम मन बला से उन मन के बोले संगवारी मन लगम रहू कसा ने तो आज संगवारी मन आज जो वार्ता है जोन वार्ता आत गौरी यादव और इचो विषय है बेरोजगारी और हिंदी माध्यम तो के सांगला से गौरी यादव आलिया सुनू ये वार्ता के।
3: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में मैं गौरी यादव आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विशेष विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमारे देश के लाखों युवाओं के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए चर्चा करते हैं हमारे महत्वपूर्ण विषय की, बेरोजगारी और हिंदी माध्यम। मित्रों, हमारा देश युवा शक्ति का देश है। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हर वर्ष लाखों विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी करके बड़े सपने लेकर निकलते हैं। कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई अधिकारी, तो कोई डॉक्टर, इंजीनियर या उद्यमी। लेकिन जब यही युवा नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी केवल नौकरी ना मिलने की समस्या नहीं है, बल्कि यह युवाओं के आत्मविश्वास, परिवार की आर्थिक स्थिति और समाज की प्रगति से भी जुड़ा हुआ विषय है। जब पढ़ा लिखा युवा भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता तो उसके मन में निराशा उत्पन्न होती है। यदि हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की बात करें तो उनकी चुनौतियाँ कुछ अलग और कठिन दिखाई देती है। हमारे देश में बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। वे मेहनती होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भी होते हैं। लेकिन कई बार नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान उन्हें भाषा के कारण कठिनाई महसूस होती है। आज निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट जगत में अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दिया जाता है। इंटरव्यू के समय उम्मीदवार के ज्ञान के साथ साथ उसकी भाषा शैली और संवाद क्षमता को भी परखा जाता है। यहाँ हिंदी माध्यम के विद्यार्थी स्वयं को थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ समझना चाहिए कि समस्या केवल हिंदी माध्यम होना नहीं है। हिंदी एक समृद्ध और सम्मानित भाषा है। हमारे साहित्य, संस्कृति और इतिहास की आत्मा हिंदी में ही बसती है। वास्तविक चुनौती यह है कि आज के समय में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, इसके साथ कौशल, तकनीकी ज्ञान, कंप्यूटर शिक्षा और संवाद क्षमता भी आवश्यक हो गई है। यह केवल भाषा का मुद्दा नहीं है, बल्कि अवसर, संसाधन और कौशल के संतुलन का विषय है। तो आइए चर्चा करते हैं भारत में होने वाली बेरोजगारी और उसकी स्थिति के बारे में। बेरोजगारी का अर्थ जब व्यक्ति काम करने के योग्य और इच्छुक होते हुए भी उसे रोजगार नहीं मिलता, ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें इंसान पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसे अपनी योग्यता अनुसार कोई काम नहीं मिलता, जिसके कारण वह बेरोजगार हो जाता है। लाखों युवा डिग्री लेने के बाद भी उचित नौकरी नहीं पा रहे हैं। इसका असर केवल आर्थिक स्थिति पर ही नहीं बल्कि उनकी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। आगे हम चर्चा करते हैं हिंदी माध्यम और रोजगार की चुनौती। हिंदी माध्यम से पढ़े हुए विद्यार्थियों के सामने विशेष चुनौतियां होती है, जिसे हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिसमें पहला है कई प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरियों में अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व दिया जाता है। उसके बाद इंटरव्यू और कॉर्पोरेट सेक्टर में अंग्रेजी संवाद कौशल को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा की अधिकांश सामग्री अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध होती है। इसके बाद हिंदी में गुणवत्तापूर्ण संदर्भ पुस्तकें, अध्ययन नोट्स और पत्रिकाएं अंग्रेजी की तुलना में कम उपलब्ध हैं, विशेषकर तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों में। इसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल और MBA जैसे क्षेत्रों में अधिकांश पढ़ाई और पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में ही होती हैं, जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों को अवधारणाओं को समझने में संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद है हिंदी माध्यम के छात्रों को अक्सर अच्छी कोचिंग वेबसाइटों या समाचार पत्रों तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें होती है, जो जानकारी के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इस कारण हिंदी माध्यम के विद्यार्थी कई बार पीछे रह जाते हैं, जबकि प्रतिभा और मेहनत की उनमें कोई कमी नहीं होती। इसके बाद हम चर्चा करते हैं

0: क्या केवल भाषा ही समस्या है? यह समझना जरूरी है कि समस्या केवल हिंदी माध्यम होना नहीं है, असल मुद्दा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, आधुनिक कौशल की कमी, डिजिटल ज्ञान की कमी और करियर मार्गदर्शन का अभाव। अगर इन क्षेत्रों में सुधार किया जाए तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी उतने ही सक्षम बन सकते हैं जितने की अन्य। इसके साथ ही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं सरकारी प्रयास और सकारात्मक पहल की। सरकार द्वारा समय समय पर रोजगार बढ़ाने और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं, जैसे इसमें पहला है कौशल विकास योजनाएं, जिसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कहते हैं, दूसरा रोजगार मेले, तीसरा स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा। इसके बाद नई शिक्षा नीति के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देना। इन प्रयासों का उद्देश्य यह है कि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके और वे अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके। इसके बाद सबसे प्रमुख और अहम चर्चा करते हुए हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी माध्यम के छात्रों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वे कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं, जिसमें पहला है अंग्रेजी को एक कौशल के रूप में सीखें, डर के रूप में नहीं। दूसरा कंप्यूटर और डिजिटल स्किल्स विकसित करें। तीसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, जैसे यूट्यूब ऐप्स इत्यादि। चौथा आत्मविश्वास बढ़ाएं और नियमित अभ्यास करें। इसके बाद पांचवा सरकारी योजनाओं और अवसरों की जानकारी रखें। इसके बाद कंप्यूटर शिक्षा पर ध्यान दें। आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है और हर युवा को आज तकनीकी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सभी युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद रोज समाचार पत्र पढ़ना, जिससे सामान्य ज्ञान और भाषा दोनों मजबूत होती है। आठवां है समय प्रबंधन सीखें। इसके बाद प्रतिदिन बोलने का अभ्यास करें। वो कहावत ही है ना, जिसमें कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, बार बार रस्सी सील पर आवत के पड़त निशान। प्रतियोगी परीक्षाओं की सही जानकारी रखें। इसके बाद नई तकनीकों से जुड़े, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टूल्स इत्यादि। अच्छे व्यवहार, स्पष्ट बोलने की कला और सकारात्मक सोच को अपनाएं। इसके बाद स्वरोजगार के अवसरों को समझें, अर्थात केवल नौकरी पर निर्भर ना रहें। छोटे व्यवसाय और ऑनलाइन कार्यों की जानकारी भी लें। इसके बाद असफलताओं से निराश ना हो। असफलता सफलता की तैयारी होती है, लगातार प्रयास करते रहें। पंद्रहवा है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। सोलहवा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पढ़ाई और कार्यक्षमता भी बेहतर होगी। इसके बाद अंतिम पॉइंट है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें। मेहनत, अनुशासन और धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इसके बाद चर्चा करते हैं समाज और शिक्षा प्रणाली की भूमिका की। समाज और शिक्षा व्यवस्था को भी यह समझना होगा कि भाषा किसी की प्रतिभा का मापदंड नहीं हो सकती। इसके लिए स्कूलों में बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दूसरा हिंदी माध्यम में भी गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री दी जाए। तीसरा है विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान और कौशल सिखाए जाएं। इसके बाद चौथा है, गांवों के स्कूलों में अच्छे शिक्षक, पुस्तकालय और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। स्कूलों और कॉलेजों में करियर काउंसलिंग की सुविधा होनी चाहिए। इसके बाद विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा और आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाए। सातवां, विद्यार्थियों में डर पैदा करने की बजाय सरल तरीके से भाषा सिखाई जाए। इसके बाद समाज को केवल सरकारी नौकरी को ही सफलता मानने की सोच बदलनी चाहिए। इसके बाद शिक्षा को रोजगार और कौशल से जोड़ा जाए ताकि पढ़ाई के बाद अवसर बढ़ सके। इसके बाद हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं को भी समान अवसर और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए। इसके बाद हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के महत्व को समाज और शिक्षा दोनों में उचित स्थान मिले। मित्रों, सफलता कभी भाषा की मोहताज नहीं होती। सफलता मेहनत, लगन, अनुशासन और आत्मविश्वास से मिलती है। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार है और निरंतर सीखने के लिए तत्पर है, तो कोई भी बाधा उसके रास्ते को नहीं रोक सकती। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमें हिंदी और अंग्रेजी को प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि पूरक के रूप में देखना चाहिए। अपनी मातृभाषा पर गर्व करते हुए आधुनिक कौशलों को ही अपनाना चाहिए। यही आज के युवाओं की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश के युवाओं के लिए ये कुछ विशेष पंक्तियां हैं। युवा देश का भविष्य है यदि उन्हें सही शिक्षा, सही अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
1: तो संगवारी मन, एबे तो सुनते रलास वार्ता जोन जो विषय रली बेरोजगारी और हिंदी माध्यम, और एके सांगते रला गौरी यादव। आशा करूं से संगवारी मन तुमके ये सब अच्छा लागली होती, अच्छा समझ बलीली होती। अदाय बढ़ू अमी आम जो अगला कार्यक्रम बाटे जो नाय रोजगार सूचना।
2: तो उर्वशी, हाँ? तो आज ही हमें रोजगार सूचना बोला लुसने हम जो संगवारी मन का जे,
1: हाँ?
2: तो एक बोले सांगू, हाँ? कसन, तो आज ही जो पहला रोजगार आए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नवा रायपुर ले, तो अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक पच्चो लिखित भर्ती निकल ली से ने,
1: हाँ?
2: तो ये जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भर तो प्रारंभिक तिथि 14/5/2026 और ये जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो अंतिम तिथि जुन भरतुवी तो 8/6/2026 5 बजे तक,
1: हाँ।
2: तो आर एच रूठी सुधार आए 9/6/2026 ने और 11/6/2026 5 बजे तक। तो परीक्षा शुल्क आए सामान्य वर्ग मन का जे 350 रुपया और अन्य पिछड़ा वर्ग का जे 250 रुपया,
1: हाँ।
2: और अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो उनकी 200 रुपया ने,
1: हाँ।
2: तो संगवारी मन ऑनलाइन आवेदन करतो काजे वेबसाइट सीजी व्यापम ने जाऊन आपन एचो फॉर्म भरुक सकास, ठीक।
1: और बलिया से संगवारी मन जो नए दूसरा रोजगार सूचना, नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं SDRF जो अंतर्गत फायरमैन जो पद जो निकरली से भर्ती व्यापम वेबसाइट ने पंजीयन उपरांत ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर दो। प्रारंभिक तिथि आए 8/5/2026 और अंतिम तिथि आए 5/6/2026 5 बजे तक। परीक्षा जो समय आए 10 बजे ले 12:15 तक। परीक्षा केंद्र आए रायपुर। परीक्षा शुल्क आए सामान्य वर्ग मन का जे 350 रुपया, अन्य पिछड़ा लोग का जे 250 रुपया, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति मन का जे आए 200 रुपया। ऑनलाइन सीजी व्यापम वेबसाइट ने जाऊन बले ये जो आवेदन करुक सकास
2: सकास है संगवारी मन,
1: हाँ।
2: तो ये तो रैली उर्वशी आज जो रोजगार सूचना ने,
1: हाँ।
2: तो अले अले फिल आप गीत बाटे मूर करू,
1: हाँ।
2: ने
1: तो संगवारी मन

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: उर्वशी, गीत गोविंद तो सुनते चे रहो आने दे आम चो संगवारी मन के ज्ञान ध्यान चो गुड़ बोले तो सांगो आन लुसे जे ने तो ई गवर्नेंस अवार्ड जानी जो छत्तीसगढ़ जो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स और किसान पोर्टल के बेहतर मैनेजमेंट का जे अप्रैल मई 2026 ने राष्ट्रीय स्तर ने सर्वश्रेष्ठ ई गवर्नेंस पहलो चो पुरस्कार मेर ली।
3: मई 2026 जो शुरुआत ने तीरथगढ़ और चित्रकूट जलप्रपात जो आसपास जो क्षेत्र के प्लास्टिक फ्री जोन घोषित करून इको फ्रेंडली टूरिस्ट कॉटेज और नुआ सुविधा लॉन्च खोली से।
2: भारत सरकार देश जो अब तक जो सबसे तेज एडवांस्ड एआई ऊपर सुपर कंप्यूटर परम रुद्र राष्ट्र

0: के समर्पिता से जो मौसम विज्ञान और स्वास्थ्य रिसर्च ने काम करुआ है।
1: हाँ, देश जो पहला AI संचालित रेलवे स्टेशन सुनिश्चित जोन भारत जो एक प्रमुख सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पूरी तरह ले AI कैमरा और ऑटोमेटेड फ्राउड मैनेजमेंट सिस्टम ले लेस करून देश जो पहला AI संचालित रेलवे स्टेशन बन ली।
0: अच्छा, मई 2026 ने बस्तर संभाग जो महिला स्वयं सहायता समूह का जे कोसा सिल्क प्रोसेसिंग और धागा करण जो एक नए आधुनिक केंद्र शुरू करला जोन थाने स्थानीय महिला मन के रोजगार मिले से ने।
1: हाँ संगवारी मन, ये तो होली सामान्य ज्ञान, अदा फिर बढ़ू बे हम जो गीत गोविंद बाटे।
0: हाँ तो संगवारी मन, अगला गीत आए फिल्म जो जीता वही सिकंदर ले, और ये थाने स्वर दिला से उदित नारायण और साधना सरगम, और संगीतकार जतिन ललित, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। तो आले या सुनू एक गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: तो संगवारी मन इबे झाला छो, पहले तुम एक गोटो गीत सुनते रहलास फिल्म साजन का घर ले, जोन थाने स्वर दिला से हिंदी सिनेमा चो जाना माना गायक मन अलका याग्निक और कुमार सानू, संगीत का रात नदीम श्रवण और एक गीत के लिखला सोत समीर।
3: तो संगवारी मन अगला गीत है फिल्म जो जीता वही सिकंदर, और थानेश्वर दिला सुत उदित नारायण और साधना सरगम, संगीतकार जतिन ललित और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। तो आलिया सुनो ये गीत।

0: संगवारी मन अदा आमचो बोले जातो बेरा होई से ने
1: हाँ।
0: तो आम के आले विदा दिया ने
1: हाँ।
0: तो मैं आखिर सागर
1: और मैं उर्वशी कश्यप
0: आमी दोनों करो से जुहार।

युववाणी, अभी आप युवा दोस्तों का ये कार्यक्रम सुन रहे थे हल्बी बोली में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है, शाम के 6 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने

0: की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। समय है शाम के 6:05 का।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हम आपको बता दें कि आज रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से और रात्रि 10:30 पर आनंद लीजिएगा पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। छत्तीसगढ़ी में समाचार का प्रसारण अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करते हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज की प्रमुख समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस ला जारी राखे के दिन मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है देश के आने आने हिस्सा में बढ़त तापमान ला देखत लोगन वाला सावधानी बरते के दिन सलाह। और प्रदेश के आने आने जिला में खाली पड़े सरकारी जमीन मन के विकास पर राज्य सरकार है रीडेवलपमेंट कार्य योजना तैयार करही। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय मंत्रिमंडल है आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस ला जारी राखे के मंजूरी दे दे है। एकर बर केंद्र सरकार को तिले 25,530 करोड़ रूपया के आवंटन करेगे है। नई दिल्ली में मीडिया माला जानकारी देवत सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहीं ने कि ये योजना राज्य एजेंसी मल्ला अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन के संगे संग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण पर मदद करही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है देश के आने आने हिस्सा में बढ़त तापमान ला देखत लोगन मला सावधानी बरते के सलाह दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी है लोगन मल्ले कहीन है कि ओमन भरपूर पानी पिए और घर ले बाहर निकलत बेरा अपन संग पानी जरूर रखें। ओमन सुझाव दीने कि जौन भी प्यासा है ओला एक गिलास पानी जरूर पिलावें। प्रधानमंत्री है जम्मो झन ले कहीन है कि ओमन अपन परिवार वाले मन संग संपर्क में रहें और उखर हाल चाल पूछत रहें। मंझनिया के चमचमावत घाम मा बाहर निकले ले बाँचे और जतका हो सके आराम करें। ओमन जम्मो झील ले आग्रह करीन है कि जानवर और पक्षी मन बर घर बालकनी छत दुकान या ऑफिस के बाहर एक ठन छोटे बर्तन मा पानी भर के जरूर रखें। प्रधानमंत्री है लोगन मन ले ये मुश्किल के दिन मा पूरा संवेदनशीलता और करुणा के संग एक दूसर के ख्याल रखे बर कही है। एति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो जोरदारहा गर्मी ला देखत प्रदेशवासी मन ले अपन ध्यान रखे के अपील करे है। मुख्यमंत्री है कहीने कि ज्यादा गर्मी के दौर में हरेक मन खेला अपन स्वास्थ्य के संगे संग अपन तीर तखार के लोगन मन के घलो विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय है निर्वाचन आयोग डहल ने कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता ला बरकरार रखे है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागीच के पीठ आज ये मामला की सुनवाई करत कहीने कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक जरूरत ला आगू बढ़ाते। न्यायालय ये तर्क ला घलो खारिज कर दिन कि ये प्रक्रिया ले मतदाता सूची में पहले से मौजूद मनखे मन के नागरिकता के अनुमानित मान्यता खत्म हो जाते। प्रदेश के आने आने जिला में खाली पड़े सरकारी जमीन मन के विकास पर राज्य सरकार रीडेवलपमेंट कार्य योजना तैयार करही। एकर तहत सरकारी विभाग निगम मंडल और बोर्ड के खाली जमीन मन के उपयोग करके डिजिटल लैंड बैंक बनाए जाही। मुख्य सचिव विकासशील की अगुवाई में आज मंत्रालय में हुए समीक्षा बैठक में फैसला लेगी कि जम्मू सरकारी जमीन के जीआईएस मैपिंग करके ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करे जाही। उन्हें शहर मन में खाली जमीन में आवासीय योजना व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और सरकारी कार्यालय बनाए जाही। उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में कृषि वेयर हाउस और कौशल विकास केंद्र स्थापित करे जाही। योजना के तहत जर्जर भवन मल्ला हटा के नवा निर्माण कराए जाही और जमीन मल्ला अतिक्रमण ले बचाए बर फेसिंग और सामलात निगरानी के व्यवस्था करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में काली संझा मंत्रालय में हुए राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कतकोन महत्वपूर्ण फैसला लेगीस। बैठक में राज्य के आने आने विभाग और निकाय मन में जमा स्क्रैप सामग्री के पारदर्शी निस्तारण बर एमएसटीसी के संग सेलिंग एजेंसी अनुबंध के बेराला अवैया 3 बच्छर तक बढ़ाए के फैसला करेगी। उन्हें छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ला सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाए के प्रस्ताव ला घलो मंजूरी देगी। इकर संगे संग बिटुमिन यानी डामर के कीमत में बढ़ोतरी ला देखत सड़क निर्माण काम प्रभावित झन हो एकर बर 1 अप्रैल ले 30 जून तक ठेकेदार मल्ला थोर बहुत कीमत में राहत दे के फैसला लेगी। राज्य सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण कुमार पांडे ला प्रधान मुख्य वन संरक्षक नियुक्त करे है। श्री पांडे है रिटायर आईएफएस अधिकारी वी श्रीनिवास राव के जगह ली है। इस संबंध में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग डहले आदेश जारी कर दिए गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़ बाचे समाचार कोती। केन्द्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे काली रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले भेंट करीन। बैठका में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन बढ़ाए, ऊर्जा सुरक्षा, खनन क्षेत्र में आधारभूत संरचना और रेल लॉजिस्ट कनेक्टिविटी के विस्तार में गोटबात हुईस। दोनों नेता मना स्वच्छ ऊर्जा, कोयला, गैस और सौर ऊर्जा विकास के माध्यम ले निवेश और रोजगार के नवा मौका बढ़ाए पर जोर दीन। मुख्य सचिव विकासशीला सहकारी समिति मल्ला मजबूत बना के किसान मल्ला आत्मनिर्भर बनाए पर जोर दीन है। रायपुर में राखेगी राज्य सहकारी विकास समिति के बैठका में उमन हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करे के निर्देश दीन। बैठका में प्राथमिक कृषि साख समिति यानी पैक्स ला दुग्ध मत्स्य पालन और लघु वनोपज गतिविधि ले जोड़े ऊपर गोटबात हुई। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा बढ़ाए बर माइक्रो ATM और रूपे कार्ड उपलब्ध कराए के समीक्षा घलो करेगी। मुख्य सचिव है सहकारी शक्कर कारखाना में इथेनॉल संयंत्र के निर्माण में तेजी लाए के निर्देश दिए। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला में पाछू रतिया अज्ञात लोगन मन एक झीन सराफा व्यापारी के गोली मार के हत्या कर दी। ये घटना पेंड्रा के कोटमी मुख्य बाजार के बताए जावा थे। मिले खबर के मुताबिक बदमाश मन भीड़ वाले इलाका में व्यापारी पर गोली चलाई और मौकले फरार हो गए। घायल व्यापारी अस्पताल ले जाएगी जिन्हें डॉक्टर मन ओला मृत घोषित कर दी। पुलिस नाकाबंदी करके आरोपी मन के तलाश शुरू कर दे। ये घटना के विरोध में आज गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला में बंद के ऐलान करेगी जिला सबो प्रमुख संगठन मन अपन समर्थन दिन। घटना के बाद ले कोटमी मुख्य बाजार में सुरक्षा बल मल्ला तैनात करेगी। बस्तर में आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश बर चयन परीक्षा काली अउ परन दिन यानी 28 और 29 मई के जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में बिहने 7 बजे ले राखी जाही। ट्रायल में सुग्घर प्रदर्शन के आधार में खिलाड़ी मन के चुनाई करी जाही। आवासीय खेल अकादमी में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसन खेल मन शामिल करे गए है। अकादमी में 13 से 17 बच्चर आयु वर्ग के लड़का मन प्रवेश ले सकत है। छत्तीसगढ़ सरकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मन के महंगाई भत्ता में 2% के बढ़ोतरी के आदेश जारी करे है। सामान्य प्रशासन विभाग डाले जारी आदेश के मुताबिक अब IAS, IPS और IFS अधिकारी मन ला 58% के जगह 60% महंगाई भत्ता मिली। बाढ़े महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 ले प्रभावी माने जाही। राज्य के 900 ले ज्यादा लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम ले ये दिन तेंदुपत्ता इकट्ठा करे के काम करे जावत है। प्रदेश में अब तक 13,52,000 ले ज्यादा मानक बोरा तेंदुपत्ता के इकट्ठा कर ले गए है। तेंदुपत्ता संग्रहण में बिलासपुर वित्त सबले आगू हवे जिया 3,00,000 ले ज्यादा मानक बोरा तेंदुपत्ता इकट्ठा करे गए है। एखर बाद सरगुजा, कांकेर और रायपुर वित्त के जगह हवे। राज्य सरकार डहले तेंदुपत्ता संग्रहण के दर 5,500 रूपया प्रति मानक बोरा निर्धारित करे गए है और संग्राहक मन के खाता में सीधा भुगतान करे जावत है। अब थोड़की समाचार सार में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI बिलासपुर ले रायगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 में यात्री मल्ला तुरते मदद दे बर डायल नंबर 1033 आधुनिक आपातकालीन चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा की शुरूआत करे है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा हा बताइन है कि कुछ एक अनाधिकृत मनखे मन खुद ला रेरा के अधिकारी या कर्मचारी बता के लोगन मन ले पैसा के मांग करत है। प्राधिकरण आम लोगन मन ला ऐसा साइबर ठग मन ले सतर्क रह के सलाह दे है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश पर प्रस्तावित प्रक्रिया ला कोनो कारण ले स्थगित कर दी गई है। और प्रदेश में दिन पड़ा ज्यादा गर्मी ला देखत नवा रायपुर के नंदनवन जंगल सफारी ला पर्यटक मन पर 28 और 29 मई के बंद रखे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS ला जारी रखे के दिन मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आने आने हिस्सा में बाढ़त तापमान ला देखत लोगन मला सावधानी बरते के दिन सलाह। और प्रदेश की आने आने जिला में खाली पड़े सरकारी जमीन मन के विकास पर राज्य सरकार रीडेवलपमेंट कार्ययोजना तैयार कर ही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
2: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणार्थं 500,25,000 कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय परिव्ययेन सह सार्थक पीडीएस योजनायाः विस्ताराय स्वीकृतिः प्रदत्ता। सर्वोच्च न्यायालयेन मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणाय निर्वाचनायोगस्य अधिकारः न्यायोचितम् अंगीकृतम्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानम् अवलोक्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षायाः प्रश्नपत्र गोपनभंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अपि च आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आर्थिक प्रकरण मन्त्रिमण्डल समित्या अद्य 16 वित्तायोगस्य पुरस्कार चक्रावधौ सार्थक पीडीएस इति अम्रेला योजनायाः निरन्तरतायै 30,25,000 कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय विनियोगः करिष्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना राज्यसंस्थाभ्यः राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहनाय साहाय्यं प्रदास्यति। सहैव उचित मूल्यापणानां सुदृढीकरणं करिष्यति तथा च सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणेऽपि सहयोगं करिष्यति।
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
2: मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्यां योजनायां कृत्रिममेधायाम् आधारिताः निर्मल आशा सक्षमाख्याः त्रयः घटकाः भविष्यन्ति। तेन स्पष्टीकृतं यत् निर्मल इति कृत्रिममेधाचालितः वास्तविक समय पीडीएस लाभार्थी पञ्जीकरण मञ्चः अस्ति। सहैव आशा इति बहुभाषीय कृत्रिममेधा आधारिता जनपरिदेवना निवारण प्रणाली तथा च नागरिक संवाद मञ्चः वर्तते। एवं च सक्षमः इति कृत्रिममेधायुक्तम् आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन तन्त्रमस्ति। अनेन सहैव आर्थिक प्रकरण मन्त्रिमण्डल समित्या राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहन व्ययस्य तथा उचित मूल्यापण विक्रेतृणां लाभांश सीमायाः पूर्तये केन्द्रीय सहायता नियमेषु संशोधनस्य तथा च पूर्ववत वित्तपोषण प्रारूपस्य निरन्तरतायाः अपि दृढ निर्णयः कृतः। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य भारत निर्वाचनायोगेन प्रदत्त मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणस्य वैधता प्रमाणीकृता। तेनोक्तं यत् एतादृशं विशेष पुनरीक्षणं निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्वाचनानां संवैधानिक अनिवार्यतां संवर्धयति। न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् जनप्रतिनिधित्व अधिनियमः 50+1 4020+300 अनुच्छेदस्य नियमानुसारं निर्वाचनायोगस्य पार्श्वे विशेष गहन पुनरीक्षणस्य पूर्णा शक्तिः वर्तते। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य तथा च न्यायाधीशस्य जयमाल्य बागची इत्यनयोः पीठेन एतत् निर्णयवचनं तासां याचिकानां सन्दर्भे प्रख्यापितम् यासु गतवर्षे जूनमासे निर्वाचनायोगेन बिहारराज्ये विशेष गहन पुनरीक्षणार्थं प्रसारिता अधिसूचना समाहूता आसीत्। मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन प्रख्यापिते निर्णयपत्रे स्पष्टीकृतं यत् यदा स्वयमेव विधिः कारणानि अभिलेख्य केनापि प्रकारेण कस्मिन्नपि समये विशेष पुनरीक्षणाय आयोगम् अधिकरोति तदा इयं विशिष्टा प्रक्रिया केवलं तस्मात् कारणात् अवैधतां न प्राप्नोति यदेषा सामान्य पुनरीक्षणस्य पारम्परिक प्रक्रियाणां सर्वथा अनुरूपा नासीत्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानम् अवलोक्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे श्रीमोदी सर्वान् आद्रीकरणं रक्षितुं गृहात् बहिः गमनावसरे च जलं स्थापितुं परामर्शं प्रदत्तवान्। दैनिक जीवने उष्णताप जनित कष्टानां विषये चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् एतादृशायां ऋतौ संवेदनशीलता एव महत्तरः आधारः भवति। तेन पिपासितेभ्यः चषक परिमितं जलं प्रदातुं परामर्शो प्रदत्तः। सः सर्वान् स्वपरिजनैः आत्मीयैः च सह निरन्तरं सम्पर्कं स्थापयितुं तेषां कुशलवार्तां प्रष्टुं भूरि जलं पातुं मध्याह्ने प्रचण्डे आतपे बहिर्गमनं वर्जयितुं तथा च यथाशक्यं विश्रामं कर्तुं स्मारितवान्। तेन पशुपक्षिणां कृतेऽपि करुणां प्रदर्श्य गृहात् बहिः अलिन्देषु छदिषु आपणेषु तथा कार्यालयेषु जलपूरितं लघुपात्रं स्थापयितुं निर्देशो विहितः। श्रीमोदिना तेषां प्रयासानां भूरि प्रशंसा कृता ये पिपासित जनकल्याणाय स्वगृहाणाम् आपणानां च बहिः मृत्तिकाघटेषु शीतलं जलं स्थापयन्ति। प्रधानमन्त्री सर्वानेतेषु कष्टकरदिनेषु परस्परं करुणा प्रदर्शनार्थं साग्रहं प्रार्थितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा प्रश्नपत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अनेन तावत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्मिन् प्रकरणे दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे लातूर अहिल्यानगरेभ्यः एतावता त्रयोदश आरोपिणः निगृहीताः। अस्मिन्नेव क्रमे लातूर वास्तव्यः कश्चन चिकित्सकः डॉ मनोज शिरूरे इत्येषः नीट प्रश्नपत्र भेद प्रकरणे निगडितः। अन्वेषणाभिकरणानुसारं कोचिंग संस्थापकस्य पुत्रेण सह त्रयाणां छात्राणां कृते अभियुक्त पीवी कुलकर्णी इत्यमुना रसायनशास्त्रस्य प्रश्नान् प्रापयितुं मुख्य भूमिका निर्व्यूढा। अपरः निगृहीतः अभियुक्तः तेजस हर्षद कुमार शाह वर्तते, यः पुणे नगरस्य डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी इति कोचिंग संस्थायां भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः अस्ति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन एतावता देशस्य 49 स्थानेषु सहसान्वेषणं विहितम्, यत्र अनेके आपत्तिजनक अभिलेखाः अंकीय संगणकाः दूरभाषयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः सबलं प्रोक्तवती यत् देशस्य विकासाय पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य विकासः सर्वथा अनिवार्यः वर्तते। अद्य गंगटोक नगरे सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपति मुर्मुः छात्रान् स्वकीय विचारैः नवोन्मेषेण परस्पर विश्वासेन च राष्ट्रनिर्माणे योगदानं विधातुं परामर्शं प्रदत्तवती। मुर्मू महोदया अवदत् यत् शिक्षा एव सशक्तिकरणस्य परम मार्गः अस्ति।
4: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहें और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
2: कनाडा यात्रायाः द्वितीय दिवसे भारतस्य वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे वरिष्ठ व्यापारिक नेतृभिः संस्थागत निवेशकैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितवान्। यात्रा प्रसंगे श्री गोयलः कनाडा देशस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मन्त्रिणा मनिन्दर सिद्धू इत्यमुना सह साक्षात्कृत्य भारत कनाडा देशयोः वर्धमान पूरकताम् अधिकृत्य चर्चां कृतवान्, तथा च सुदृढ सर्वकारोद्योग सहयोगेन चालितस्य अधिक सशक्तस्य पूर्वानुमान योग्यस्य च व्यापार पारिस्थितिकी तन्त्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्। आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
5: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गोंडी समाचार बुलेटिन।

आकाशवाणी जगदलपुर गोंडी समाचार बुलेटिन तंगन सावित्री नाग नेटा मूल समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ ता गोडवाले दंपत्ति संघ 66 वरिष्ठ माने किन वर्ष 2026 ता पद्मश्री पुरस्कार इत्ता। जनजातीय संस्कृति समागम तीन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट कित्तर की समान नागरिक संहिता तिना जनजातीय समाज ता परंपरा और अधिकार तक बेदे असर आयो। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति कारण प्रदेश तोर किसानेर किन इद वर्षा यूरिया और डीएपी अत्ता वर्षा ता मुकाबला चुड़न का मीनोर। बस्तर तक आवासीय खेल अकादमी तक प्रवेश कलय चयन परीक्षा 28 और 29 मई ते जगदलपुर तक आयोजित कीनोर। इधर समाचार कुंडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार 25 मई ते राष्ट्रपति भवन तक आयोजित कार्यक्रम तक 66 वरिष्ठ माने किन वर्ष 2026 तक पद्मश्री पुरस्कार इत्ता। एका छत्तीसगढ़ ता दंतेवाड़ा जिला तो रामचंद्र गोडवाले और सुनीता गोडवालेन संयुक्त रूप ते चिकित्सा ता क्षेत्र तक किता उत्कृष्ट बूतोतलाय पद्मश्री पुरस्कार ते सम्मानित किता। समारोह तक उपराष्ट्रपति सीपी रामकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वेंड मत्तूर। दंतेवाड़ा जिला बारसूर तक मदनोर डॉक्टर रामचंद्र गोडवाले और डॉक्टर सुनीता गोडवाले आदिवासी लोरा नड़मा स्वास्थ्य सेवा एवितीनत बूतो कित्तूर और ट्रस्ट फॉर हेल्थ पेदे तर संस्था पारतूर और इदिनाकेट अबुजमार लेकेताओ इलाका नग बूतो कित्तूर। इद डॉक्टर दंपत्ति बारसूर तग ओंड दशक त दिब्बे शम्या तिना संचालित आश्रम त माध्यम ते और बस्तर त आदिवासी अंचली नग 35 वर्षा त दिब्बे शम्या ते जरूरतमंद मानेक न स्वास्थ्य सेवा एवितीनक बूतो कित्ता। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अत्ता 24 मई ते नई दिल्ली तक भगवान बिरसा मुंडा न 150वीं जयंती वर्षा तक आयोजित जनजातीय सांस्कृतिक समागम तीन संबोधित कित्तूर और कित्तूर की इद समागम वायनत वर्षा तक जनजातीय महाकुंभ तरूप ते वैश्विक चीना बने माता। श्री शाह कित्तूर की भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय समाज तीन अपना संस्कृति धर्म और जल जंगल जमीन त रक्षा त संदेश ईश मत्तूर और कित्तूर की केंद्र सरकार जनजातीय समाज त विकास त लय लगातार बूतो की मुता। जनजातीय कल्याण त बजट 28,000 करोड़ रुपया तीन पेड़सीस 1,50,000 करोड़ रुपया कित्तूर और कित्तूर की नक्सल हिंसा तक बिड़िया संख्या ते जनजातीय मानेक न जीवत्ता मती सरकार नक्सलवाद तक प्रभावी नियंत्रण दुर्कित्ता। गृह मंत्री स्पष्ट कित्तूर की समान नागरिक संहिता इतके यूसीसी ते जनजातीय समाज त परंपरा और अधिकार तक बेदे असर रहियो। श्री शाह कित्तूर की वनवासी लोरा इद आंदोलन वायनत दीनम जनजातीय माने किन निस्तासिता अर्तान संग मावा भूम संस्कृति अर धर्म त वेंडे जोड़ा की स्तासिता और कित्तूर की तू और मैं एक ही रक्त हैं इद मंत्र त संग वनवासी कल्याण आश्रम मूक सेवक बनेमास जनजातीय सेवा ता अखंड यज्ञ चला कित्तूर। जनजातीय संस्कृति जनजातीय भूम जनजातीय धर्म तीन सुरक्षित की लय इद महाकुंभ ने कह बिड़िया बूतो कीता। श्री शाह कित्तूर की जनजातीय मानेक भ्रांति ते नईड़ भेदभाव किनोर किन चिता कीवीर अर ओंडोयास वर्षा 2047 तक विकसित अर समृद्ध भारत पाड़नक दिशा तक मुने पेड़सिर। राष्ट्रीय जनजाति संस्कृति समागम तीन संबोधित किसो छत्तीसगढ़ तोर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कित्तूर की जनजातीय समाज दुनिया तीन प्रकृति तसंग संतुलित विकास ता अर तोता परदिता। मुख्यमंत्री कित्तूर की जनजातीय समाज भारत त संस्कृति आत्मा त सबले पांता अर जीवंत रूप मिंदे और कित्तूर की राज्य सरकार गोंडी हल्बी अर सादरी लेके तो माटा नग प्रारंभिक शिक्षा तीन प्रसिद्धिया मुतुर। श्री साय कित्तूर की आदि परब बस्तर पंडुम अर बस्तर ओलंपिक लेकेताओ आयोजन जनजातीय चीना अर प्रतिभा तीन राष्ट्रीय मंच इमुता। इत कार्यक्रम तग देश ता और राज्य तिना वत्तुर जनजातीय कलाकार पारंपरिक नृत्य लोक संगीत और संस्कृति प्रस्तुति ता माध्यम ते भारत ता समृद्ध जनजातीय विरासत त जीवंत झलक प्रस्तुत कित्तूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्ता 23 मई ते 19वें रोजगार मेला ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग त माध्यम ते और सरकारी विभागी और संगठनी नग आयमुतद 91,000 त दिब्बे लयोर की नियुक्ति पत्र तूस्तुर। इत मौका ते श्री मोदी कित्तूर की सरकारी नौकरी नागरिकी न जीवना तीन नेला अर पाड़नक महत्वपूर्ण माध्यम। प्रधानमंत्री कित्तूर की भारतीय देश तीन विकसित भारत पाड़नक संकल्प त संग बूतो की मुता। रोजगार मेला देश त 47 और जगह नग आयोजित कित्तूर। रायपुर तग इद आयोजन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ताकेट
पंडित दीनदयाल

0: उपाध्याय ऑडिटोरियम तक कित्तूर। कार्यक्रम तोर मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके कित्तूर की निर्ण 257 लयोर की नियुक्ति पत्र इत्तूर और कित्तूर की ईद केवल ओंड नौकरी अयो बल्कि भारत तीन विकसित अर पाड़नग ओंड जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट विशेष आवश्यक तुर पिलाना शिक्षा व्यवस्था तीन पोई छत्तीसगढ़ शासन तीन विशेष शिक्षकी न भर्ती प्रक्रिया ऋण लेंच त पूरा कीना निर्देश इत्तूर। ईद याचिका त सुनवाई तचूट अदालत केत्ता की राज्य तक 39,000 त दिबे विशेष आवश्यक तोर पिला किन लाए करीब 4,000 त दिबे शिक्षकी न जरूरत में दे। राज्य सरकार अदालत तीन केत्ता की 848 स्वीकृति पदीनग 62 शिक्षकी न नियुक्ति अत्ता। सुप्रीम कोर्ट केत्ता की 155 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और 85 विशेष शिक्षकी किन स्क्रीनिंग कमेटी न समक्ष प्रस्तुत आयना अवसर इविर। प्रदेश तक नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती न आम और उपचुनाव ते उन जून ते मतदान आयनत। इदिन लाए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ताकेट नामांकन पत्री न जांच और पेदर वापसी त प्रक्रिया पूरा आना पेर के अभ्यर्थी न अंतिम सूची जारी की सित्ता। नगरीय निकाय नग उमके 240 और त्रिस्तरीय पंचायती नग उमके 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान तक में देर। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह कित्तूर की त्रिस्तरीय पंचायती नग पंचना 640 पद और सरपंचना 51 पदी नग निर्विरोध निर्वाचन अत्ता। जनपद सदस्य त उमके 10 पदी किनलाय 41 उम्मीदवार चुनाव लड़े मायमुतुर। अगाय नगरीय निकाय नग कुंडे रिक्त पदी नग बेदे नामांकन निरस्त अयो और बेदे निर्विरोध निर्वाचन अयो। राज्य शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तोर उमके तकनीकी कर्मचारी किन नशे मत्त हैंडपंपी और पाइपलाइनी किन सुधरा कीना और उंडनद एर चीपता उभय निराकरण कीना निर्देश इत्तूर। इत निर्देश तपेर के यद समयाते नाटेनोरा एवना स्वच्छ और नियमित उंडनद एर एवितीनद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ता टीम सतर्कता ते बूतों की मुता। विभाग ताकेट जल जीवन मिशन ते संचालित योजना त नियमित संचालन त संग संग नाटेनोरिन जल संरक्षण त प्रति चेता की मुतुर। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश तग इब्लो संक्रमण तीन के पीति लय जरूरी निर्देश जारी की सित्ता। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा ताकेट जारी निर्देश तग एयरपोर्ट तक वायनोर यात्री लोरा स्वास्थ्य जाँच संदिग्ध मामला त पहचान और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था सुनिश्चित किलाय कित्तूर। तानसंग मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर तोर स्वामी विवेकानंद विमानतल परिसर तग ओयतूर नोडल अधिकारी नियुक्त कीना निर्देश इत्तूर। स्वास्थ्य विभाग आइसोलेशन रिफल और आपातकालीन प्रबंधन व्यवस्था तीन तैयार ताशना निर्देश इत्तूर। बाड़ित के बेदे वेंडे संभावित स्थिति तीन उभय निपटा कीना आई कांगो और युगांडा तग इब्लो संक्रमण त पेड़समूतद मामला त पेर के दुनिया भर तग सतर्कता पेड़सित्तूर। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुनेन इदिन अंतर्राष्ट्रीय चिंता त सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित कित्तद मिंदे। इदिन उड़ सो भारत तक वेंडे सुरक्षा परिस्थितियां मुतुर। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति त कारण ते प्रदेश तोर किसानीर किन इदवेर्षा यूरिया और डीएपी अत्तवेर्षा त मुकाबला उचुक कम इनुर। इदिन लाए राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी की सित्ता। इदिना अनुसार अत्ता वर्षा किसानीर किन तुस्तद उर्वरक ता मात्रा ता आधार ते इद वर्षा ता कोटा तय कित्तूर। इदिना केड इद वर्षा किसानीर किन यूरिया ता 80% मात्रा पारंपरिक यूरिया ता रूप ते इनुर शेष 20% मात्रा उपलब्ध ता आधार ते इनुर अयो के ताना बदला नैनो यूरिया इनुर। डीएपी तुसनद वेंडे अत्ता वर्षा ता मुकाबला 60% ही किनोर और शेष 4% मात्रा तलाय वैकल्पिक एनपीके उर्वरक अयो के नैनो डीएपी उपलब्ध किनोर। राज्य सरकार एग्रिस्टेक पोर्टल तक विशेष श्रेणी तोर किसानीर किन जोड़ा किलाय अभियान मूर कित्ता। इले तोर किसानीर अविनक मुनेट के एग्रिस्टेक आईडी मेंदे मती ओना कसरा अयो के कंपार्टमेंट नंबर पोर्टल तक दर्ज अयो अभी किन इदाय इत प्रक्रिया तक माध्यम ते आसानी जोड़ा किया परदितुर। इदिन लाय किसानीन भूया पोर्टल तहसील और जिला लॉगिन त जरिया पंजीयन तलाय शेष नई कसरा आर कंपार्टमेंट नंबरी न उबाय पंजीयन किला कित्तूर। पटवारी स्तर तक जांच और सत्यापन त पेर के इद डेटा तहसीलदार त आईडी तग लोहतनूर तहसीलदार ताकेट अनुमोदित किया पे चुटे मतद कसरा अयो के कंपार्टमेंट नंबर सीधा किसानीर न एग्रिस्टेक आईडी संग लिंक आयनद। छत्तीसगढ़ सरकार के तक की प्रदेश तक पेट्रोल और डीजल त बेदे कमी इला आम माने किन वेरिस मंच अतिरिक्त असना जरूरत इल्ला। सरकार त अनुसार राज्य तक करीब 3,94,00,000 लीटर पेट्रोल और 8,08,00,000 लीटर त दिबे डीजल त भंडारण में दे किसानी अहर जरूरी सेवा किन प्राथमिकता ईसो ईंधन त नियमित आपूर्ति जारी में दे राज्य तक 22 मई तीन ड्रम और जरीकोन तक पेट्रोल डीजल एवोड सरकार माने किन अफवाह ते नए दना अपील किता जीरम घाटी तक कांग्रेस नेता लोरा नग अत्ता हमला तीन अत्ता 25 मई ते 13 वर्ष पूरा इद अवसर ते कांग्रेस नेता लोर और कार्यकर्ता लोर रायपुर स्थित कांग्रेस त प्रदेश मुख्यालय तक आयोजित कार्यक्रम तक जीरम घाटी तक शहीद अत्तुर नेता लोरिन श्रद्धांजलि इत्तुर 25 मई 2013 ते बस्तर संभाग त जीरम घाटी तक माओवादी ताकेट किस्मतत हमला तक कांग्रेस तुर शीर्ष नेता लोर और सुरक्षा बल तुर जवानी संग 30 मानेक डोली मत्तुर कांकेर जिला तुर कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव चीर सागर अत्ता 25 मई ते अधिकारी लोरा वेटका पैतुर वेटका तग और केत्तुर की जिला तग वायनद करीब सीजन तलाय खाद बीज त पर्याप्त भंडारण की वीर वेटका तग कृषि विभाग त उप संचालक केत्तुर की किसानीर नाकेट खाद बीज पैतना मूर कित्तुर कलेक्टर ईद भूतो त निगरानी कीना निर्देश इत्तुर समीक्षा तचुट कलेक्टर जिला तग संचालित निर्माण भूतो त समय सीमा त लोपा पूरा की लाय केत्तुर तानसंग उचित मूल्य दुकानी किनलाय भवनी न निर्माण मुसुटा मुने कीना अर एवद परवा क्षेत्री नग खाद्यान्न त भंडारण कीना वेंडे निर्देश इत्तुर कलेक्टर मनरेंगा त तहत संचालित उमके बूतो किन 30 जून एवना पूरा कीना केत्तुर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 20 मई आयनत संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा त तारीख मुने पेड़सित्तुर एजेंसी केत्ता की बकरीद त तिथि त बदलाव त ईद निर्णय पैतुर संशोधित परीक्षा तिथि ते सूचना उबाय इनोर ताजा खबर तलाय विद्यार्थी NTA त आधिकारिक वेबसाइट तग उड़ा पर दितुर प्रदेश तग संचालित प्रयास बालक और कन्या आवासीय विद्यालय त वर्तमान सत्र तग प्रवेश तलाय आयोजित प्रावचन्य परीक्षा त मॉडल उत्तर जारी की सितुर विद्यार्थी लोर तिना कक्षा नवी प्रवेश परीक्षा त प्रश्न पत्र आयो के उत्तरी ते संबंधित विद्य वेंडे प्रकार त दावा और आपत्ति 30 मई ते 5:30 बजे किरंगतुर बस्तर जिला त 16 सदस्यीय लयोरा टीम अत दिनम हिमाचल प्रदेश त बीर तग आयोजित प्लेस ऑफ पॉसिबिलिटीज यूथ फेस्टिवल तग हिस्सा पैतुर 10 दिनम त अध्ययन भ्रमण तचुट लयोरा दल हिमाचल प्रदेश त बीर तग विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट डियर पार्क तग और भगवान बुद्ध स्थल त अवलोकन कित्तुर इदिन संग प्रतिभागी लोर ह्यूमन लाइब्रेरी योगाभ्यास नेचर वॉक ट्रैकिंग कैंपिंग और स्किल डेवलपमेंट गतिविधि त संग संग और सांस्कृतिक कार्यक्रमी ना हिस्सा पैतुर इद दल दिल्ली तक ऐतिहासिक इंडिया गेट त भ्रमण वेंडे किता इद भ्रमण कार्यक्रम त उद्देश्य लयोरग लाइफ स्किल नेतृत्व क्षमता प्रकृति आधारित सामुदायिक जीवन और सांस्कृतिक आदान प्रदान तीन प्रसिद्धिनत मत्ता बस्तर तक आवासीय खेल अकादमी तक प्रवेश तलय चयन परीक्षा नाड मनाटी इतके 28-29 मई ते जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीडा परिसर तक नरकुम 7 बजे तिना आयोजित आयनद मनमंदनोर खिलाड़ी आवश्यक प्रमाण पत्र और खेल उपलब्धि त संबंधित प्रमाण पत्र संग 27 मई एवना उपस्थित आया परदितुर ट्रायल तक उत्कृष्ट प्रदर्शन त आधार ते खिलाड़ी न चयन कीनुर आवासीय खेल अकादमी संघ एथलेटिक्स तीरंदाजी और फुटबॉल लेकेताओं के लिए किन शामिल कितद में दे अकादमी तक 13-17 वर्ष आयु वर्ग तोर पेकोड़ प्रवेश पोता पर दितुर बस्तर गोंचा पर्व त तैयारी 3 पोष अत्ता 24 मई ते जगदलपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर त 360 घर आरण्य ब्राह्मण समाज त वेटका आयोजित कितुर वेटका तग बस्तर गोंचा महापर्व तीन पारंपरिक रीति रिवाज त संग माने मायना निर्णय पैतुर वेटका तग मुक्तेश्वर पांडेन बस्तर गोंचा महापर्व तुर अध्यक्ष नियुक्त कित्तुर मैडम पे मूल समाचार उन्तावा वेंडे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ त गोडवाले दंपति संग 66 वरिष्ठ माने किन वर्ष 2026 त पद्मश्री पुरस्कार इकता जनजातीय संस्कृति समागम तग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट कित्तुर की समान नागरिक संहिता तिना जनजातीय समाज त परंपरा और अधिकार त विधि असर अयो अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति त कारण प्रदेश तोर किसानीर किन इद वर्षा यूरिया और DAP अत्ता वर्षा त मुकाबला चुटन का मीनोर बस्तर तक आवासीय खेल अकादमी तक प्रवेश तलय चयन परीक्षा 28 और 29 मई ते जगदलपुर तक आयोजित कीनोर इदिन संगोंडी समाचार बुलेटिन त इद अंक इगा मारता जुहार।
1: गोंडी समाचार बुलेटिन का प्रसारण

0: सकती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्थक पीडीएस को जारी रखने की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की दी सलाह। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुपयोगी और खाली पड़ी सरकारी जमीनों के विकास के लिए राज्य सरकार रीडेवलपमेंट कार्ययोजना तैयार करेगी। और गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों का समर्थन करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से यह भी कहा कि दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी भीषण गर्मी के मद्देनजर लोगों से अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी विशेष ध्यान रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि अत्यधिक गर्मी के इस दौर में पर्याप्त पानी पिए और तेज धूप में जाने से बचे। उन्होंने अपने घर, दुकान, कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों के आसपास राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल शाम मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों और निकायों में जमा स्क्रैप सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए MSTC के साथ

0: सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले 3 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हो इसके लिए 1 अप्रैल से 30 जून तक ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुपयोगी और खाली पड़ी सरकारी जमीनों के विकास के लिए राज्य सरकार रीडेवलपमेंट कार्ययोजना तैयार करेगी। इसके तहत शासकीय विभागों, निगम मंडलों और बोर्डों को की खाली जमीनों का व्यवस्थित उपयोग कर डिजिटल लैंड बैंक बनाया जाएगा। मुख्य सचिव विकास शुल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सरकारी जमीनों की GIS मैपिंग कर ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। वहीं शहरों में खाली जमीनों पर आवासीय योजनाएं, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और सरकारी कार्यालय विकसित किए जाएंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, वेयरहाउस और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस बीच मुख्य सचिव विकास शुल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में परियोजना निर्माण और क्रियान्वयन समिति की भी बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि महानदी और इंद्रावती भवन स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के दूसरे और तीसरे तल पर आधुनिक कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा। वहीं नवा रायपुर के सेक्टर 24 में संयुक्त शासकीय भवन बनाया जाएगा। आम लोगों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के तहत 43 नई ई बसें चलाई जाएंगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन प्रश्नपत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपनी आपत्तियों के साथ संक्षिप्त स्पष्टीकरण और 3 प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त सहायक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय थल सेना ने अग्निवीर के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के 1163 युवाओं ने सफलता प्राप्त की है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस भर्ती परीक्षा के परिणाम भारतीय थल सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं और इन्हें सेना भर्ती कार्यालय नवा रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया गया है। चयनित सभी अभ्यर्थियों को आगामी दिशा निर्देशों और प्रारंभिक प्रक्रियाओं के लिए कल 28 मई को सुबह 7 बजे सेना भर्ती कार्यालय रायपुर में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्यालय शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास नवा रायपुर में स्थित है। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कल रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा, खनन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और रेल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के विस्तार पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा, कोयला, गैस और सौर ऊर्जा विकास के जरिए निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव विकासशील ने सहकारी समितियों को मजबूत बनाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। रायपुर में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में उन्होंने हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स को दुग्ध, मत्स्य पालन और लघु वनोपज गतिविधियों से जोड़ने पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी अरुण कुमार पांडे को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख नियुक्त किया है। श्री पांडे IFS अधिकारी वी श्रीनिवास राव का स्थान लेंगे। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। बस्तर में आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा कल और परसों यानी 28 और 29 मई को जगदलपुर स्थित धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर में सुबह 7 बजे से आयोजित की जाएगी। ट्रायल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आवासीय खेल अकादमी में एथलेटिक्स, तीरंदाजी और फुटबॉल जैसे खेलों को शामिल किया गया है। अकादमी में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक प्रवेश ले सकते हैं। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में बीती शाम कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना पिंडरा के कोटमी साप्ताहिक बाजार की है। बदमाशों ने बीच बाजार में व्यापारी पर गोली चलाई और जेवर लूटकर मौके से फरार हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस घटना के विरोध में आज गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में बंद का आह्वान किया गया, जिसे सभी प्रमुख व्यापारी संगठनों ने अपना समर्थन दिया। घटना के बाद से कोटमी मुख्य बाजार में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने बिलासपुर से रायगढ़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 पर यात्रियों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए डायल 1033 अत्याधुनिक आपातकालीन चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेरा ने बताया कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति स्वयं को रेरा का अधिकारी या कर्मचारी बताकर लोगों से धनराशि की मांग कर रहे हैं। प्राधिकरण ने आम नागरिकों को ऐसे साइबर ठगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के अंतर्गत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। बलरामपुर में जिला प्रशासन ने जरहाडी में स्थित आदर्श सेवा कृषि केंद्र में निरीक्षण के दौरान गोदाम से 1150 बोरी अवैध यूरिया जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी पर्यटकों के लिए 28 और 29 मई को बंद रहेगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि यह निर्णय वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कृषि विभाग की टीम ने खाद बीज और कीटनाशक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 निजी संस्थाओं के लाइसेंस निलंबित किए गए। बलरामपुर जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम राधाकृष्ण नगर स्थित एक दुकान से लगभग 400 लीटर डीजल, 70 लीटर पेट्रोल और 32 बोरी PDS चावल जब्त किया है। और गरियाबंद जिले के उदंती सीधा नदी टाइगर रिजर्व के जल स्रोतों में उदबिलाव की प्रामाणिक उपस्थिति दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की दी सलाह। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अनुपयोगी और खाली पड़ी सरकारी जमीनों के विकास के लिए राज्य सरकार रीडेवलपमेंट कार्ययोजना तैयार करेगी। और गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में कुछ बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हम आपको बता दें, आज रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से और रात्रि 10:30 पर आनंद लीजिएगा पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम मुद्रमाजी, राम राम
1: राम राम धर्मु, राम राम
0: अमर लिसने आले तक आम्ही तो अमर लुने और एच संग संगे आमचो रेडियो सुनतो दादा दीदी मन बल अमर होती तो उन मन के बल जुआर भेट करूं तो बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनतो सब पाए दादा दीदी सियान सजन और संग जोहरिया संगवारी मन के मैं धर्मु
1: और मैं मुद्रमाजी
0: हम दोनों करूं से राम राम, राम, राम। और दक नान नान पीला मन के बल नी भूल तो रहे तो उन मन के बले हम दोनों जो बाटले खूबे खूबे मया और लाड़ तो मुद्रा मांझी दक आम्ही रोज दिना काही ना आले काही असन ज्ञान ध्यान चो गोट मन के धरून ए तरुण आवने तो असनी आजी चो बल गोट आहे कि बस्तर ने आम्ही जसन दखू से कि हाथ ले बनातो बीती जिनिस मना से जे कि आम्ही हस्तशिल्प बलू से तो उसन मन चो बले आजकल खूब मांग होली से तो उसन जिनिस मन के बले सीखू रहे ने आम के बले ये तो समय ने काई अच्छा नगत वार्ड बल होए से और अच्छा दुई पैसा कमात का जे आम के उन सहारा बल मिले से आए कसन
1: सच बल सी दख आजकल बातचीत जो समय आए और बातचीत से मैंने आम के समय अच्छी हिसाब ने काई बल काम बुता कर लेने हर हुए ने और समय अगेली बल काम बुता बल जगवाई तो उसने कला जो गोट तो मूर कर ली सी बल ने कला तो कई प्रकार से वासे ने माटी बल बनाए सोट लोहार बल बनाए सोट ने संगे संगे हम थन बांस बल होए से हुन तो संग संग रुक राइल बल होए से तो कई प्रकार कला होए से कला हिसाब ने अब कलाकार मन होए से हाथ गुण है तो हाथ गुण ने का हुआ धर्म जिसने भी हामी दुख से छतरी आजकल तो छतरी नहीं है मानतर मंजी करता कई प्रकार जो कार्यक्रम चल ली तो कौन कौन लोग छतरी कान तो लोग मन तो काय सुंदर आजकल तो मोबाइल जमाना है ना
0: फोटो खिंचाते
1: एक से एक लोग मने उतने उसकी टाटी होली पाल होली ने और बोल बरन बरन चुआसे बांसले बने से उसने लोहाले बोल कई प्रकार जो जीन्स बने से तो माटी लुसनी होली हाँ संगे संग गोटो कहू रहता हम चो ऐसा दुगु सामी कि कपड़ा बल बुन सो हाँ
0: हाँ कपड़ा बल बुन सो
1: और काय सुंदर कपड़ा और फटका बोले तो सुंदर रेशन है पेन तो और दक्षिण बोले
0: उनकी हाथ कर का बोलूँगा तो जेने हाँ
1: हाँ हाँ हाथ ले बोल लो बीजी
0: हाथ ले बोल
1: कर बोल से तो इतना सुंदर जो ने सब बने से हाथी बोल सी इसकी कि हम ही आगे कसन नहीं हुआ तो आज कल ऐसा है धर्म कि ये के घेनु भी तामन बनाए हम ची भारत बल नहीं मतलब भारत ले बाहर जाए इसमें
0: आए का है हम चो राज हम चो देश हम चो देश ले बाहर बल जाए से
1: बाहर जाए से और फटका बोलते बीच बोल जो उन कपड़ा बने से नहीं उन बोल खूब मोल आए
0: आए का है
1: नानी ऐसा तू वाला है मानता हूँ जो मोल के अमरी नहीं
0: हुए अमरी नहीं हुए
1: मानता हम के जानते कि मार्केट कहाँ से बाजार कहाँ से मुता कसन हमें संपर्क करूँ और कसन है कि
0: ये
1: आगे बढ़ाऊँ
0: तो नगद गोट के संगली मुंद्रा मांझी काय कि दक बना तो काज तो बनाओ खोए दे सीखुक बल होए दे और बनाओ बल होए दे मानता रही कि कहाँ बिकुक होए दे हुन जो काज हम के बाजार बल डगरा तो रहे और हम के कसन थाने के न्यून हम बिकुक सकूं ये जो हम के जानकारी बल होते रहे
1: और दक ये भी समय ने सबले बढ़िया मोबाइल
0: मोबाइल
1: जान सीस तो मोबाइल सी सबले हो और असनी जोड़ी मन संगल हो ना कोई विभाग तो साहब मन संगल हो मेल मुलाकात ने तो ये जो असन नु है कि कोनी जुगे मतलब बसन में कि बोले कि हम इतना शहर हाट भी कुआ ना बाहरी आजकल तो सन होली ना कि हुन बन तो मतलब टाइम लगे से जैसे कपड़ा वाले बना बोले सिर्फ बन तो समय आ से घेन तो बिता पचास जना
0: सोच का
1: लेकिन हो नहीं आए काम करो लोग नहीं आता तो हम क्या हम कसन आगे बढ़ा हुआ और कसन हम ये तो पीला मन सीखा हुआ ने तो ये सबले पहले आए कि हम से जो ये तो पीढ़ी आए कि ध्यान दे और एक अच्छा रोजगार से रूप ने अगर काम नहीं आन ला बोले इतना पैसा बला से काम से काम बला से ने और नाव से नाव बला से हम तो जिला से बोलना हुआ है कि कौन जिला से कपड़ा है कौन जिला से बांस से ये बन लुबी दिया है ने तो ये सब जिस मन इतना है हम तो देश ले बाहर बोल जाए
0: जाए से जाए से ये तो खूब नगर
1: मानते ही आए धर्मो कि कर तो ऊपर आए
0: खूब नगर गुट के सांगली से तू बोल मुंद्रा मांझी और दक ये संग संग दक काम चला गये और भले काय गोट मना से अरे हुन झाला मन के बले सुन
1: अले
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे एच एस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स उपरे एबर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे एच ई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल हो दे बिजली ले चलतो बीती गाड़ी उपरे 5% कर लागे दे ए मन ने काही बदलाव नहीं होली से बिजली ले चलतो सपाई गाड़ी दुई चक्का बीती गाड़ी अरु तीन चक्का बीती गाड़ी उपरे 5% कर चो लाभ मिलते रहे दे असन ले ये मन सपाय कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रदे।
5: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। डायबिटीज कैपिटल कहे जाने वाले भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
6: जीएसटी काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वन सरल बना कि तोड़ बस ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सी तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता एचएस कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी ना सामान तपोरो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सी तोड़ इत बुताते इव सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयना बुता सरल आयना उम्मीद मिंदे इलेक्ट्रिक गाड़ी न पर्रो मुन्निटा लेकेन 1% टैक्स मंता नेलता माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्काना गाड़ी 1% जीएसटी मोला देने दोरकिता अदेन के और सोबेर कम टैक्स तक गाड़ी बने मास मनता।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: हाँ तो धर्मो नगर जहाँ थोड़ी नहीं हाँ। और आज दिन आए का बुधवार और आज दिन हम का
0: भेटवार्ता
1: भेटवार्ता कार्यक्रम ने आसे शिल्पकार और ये मना श्री शंकर बघेल भेट है तो बलबीर सिंह कच्छ आलिम गोट के सुनो
0: सुनता
7: रेडियो सुन तो भाई बहन मन मैं आज फिर गुटुक जवान लेका स्वरोजगार कई चीज चु शिल्पकार बनो भाई संग गोट बात करे से सब ले आगे तुझ नाव और गाँव चुनाव सांगना।
8: मच नाम शंकर है मैं राजूर ले है।
7: अच्छा तो शंकर दक पलन तु कई जिनिस चु काम जैसन की लोहा चु बलिया है रुख चु बलिया है और का चो है ना
8: रुख चो है और पकना चो बोले।
7: अच्छा पकना चो
8: पकना चो बोले।
7: अच्छा ये बोले तीनों जिनिस चु तु बोले ने कलाकारी हिसाब ने काम करवा। अच्छा ये काय चीज बना हुआ ना
8: बोले ने लोहा चो बोले ने जोन बोला है खेती बाड़ी।
7: अच्छा मतलब ये नांगर फार कटरी टंगिया ये सब तो आई चीज बोले गाँव ने जो परंपरा हिसाब ने चले से। अच्छा तो ये जो संग लोहा ने बोले कई मूर्ति वगैरह बोले बना ऐसी
8: लोहा ने तो मूर्ति वगैरह बना लो नहीं आये इसने देवभूत लोग संग हुआ तो उन्हें सब ने कौन कौन वगैरह बना बोल पड़ो है।
7: अच्छा बोले सांग लेने बने
8: सांग लेने।
7: अच्छा हाँ हाँ बाकी जितलो बोले गाँव ने जो खेती बाड़ी ने उपयोग घर वगैरह काम ने जैसे की बारसिया है बीनना है खेती बाड़ी हीरा रा पाटंगिया कडरी हार ये सब चीज बना हुआ। हाँ हाँ तो बोले नहीं तुम चो बोले ने परंपरा पुरकाल चलते है ना।
8: हाँ पुरकाले हम चो बाप दादी ले ची काम करते है सब।
7: अच्छा हाँ फिर होता है तू ये सीख लीज बोले।
8: हाँ हाँ
7: हाँ अच्छा जैसे की रुक चो बोले थे रुक चो का सामान बना हुआ
8: रुक चो बोले ने रुक चो मूर्ति पलंग दीवान।
7: अच्छा
8: ये सब उन्हें संग संग काम बल सी कुक पड़ ली मके।
7: अच्छा
8: खंड के लोहा काम ने उतलो आमदनी नहीं मिलते रहे करूं से बोले उतलो नहीं मिले।
7: अच्छा हाँ हाँ हाँ बोले उन तो मतलब का है कि गांव हिसाब से करते रहे से लोहा भी ती काम है
8: पेट जीवना टाइप का।
7: हाँ हाँ मतलब पैसा कोड़ी हिसाब ने आमदनी उतलो नहीं हुए।
8: हाँ नहीं हुए।
7: हाँ तो हनी हिसाब के तो फिर ये लकड़ी चुकाम से।
8: हाँ हाँ लकड़ी चुकाम से।
7: हाँ हाँ ये ने काय काय चीज बनाया था जैसे कि तू पलंग वगैरह बोल से सोफा वगैरह ये सब बनाया था।
8: हाँ हाँ आगे तो ये मूर्ति भी थी लकड़ी भी थी बनाते रहे छोटे छोटे।
7: अच्छा
8: अरे शहर भी था मन उन व्यापारी मन धरते रहो तो उनने बोले उतलो फायदा नहीं बोलो तो यार दूसरा तर नीलो टाइप चो होते बोल रहे जबरदस्ती जोन बोला मेरे उतला उतलो फायदा बोले उतलो नहीं मिलते रहे तो धीरे धीरे फिर बड़े ही काम से को पढ़ ले।
7: अच्छा
8: हाँ
7: अच्छा बड़े ही काम।
8: हाँ बड़े ही काम बोल।
7: हाँ बड़े ही ने बोले ने ये जो घर चो।
8: हाँ घर चो जैसे पलंग दीवान सोफा जोन बोला ये काम बोले।
7: अच्छा और ये तो और घर चो जो दरवाजा खिड़की ये सब चीज।
8: हाँ ये सब चीज बना।
7: अच्छा तो ये चुका है तो तू के अलग ले कहाँ सीखो पढ़ ली होती ना।
8: हाँ ये चुका है जाम चो घर ची ऐसे आगे ले करते बोल रहे हो उन्हें मन चो दकुन दकुन फिर उन मन चीज आपने घर करे सब तो ये लोग बोल खेड़ सीख सीखते सीखते फिर सीखो खोली।
7: अच्छा
8: दकुन दकुन करते करते मचो हुए से 15 साल सीख लो।
7: अच्छा 15 साल हो
8: छोटे समय जिसने स्कूल छाड़ ले जो बाद में होने काम लाइन धर ले।
7: हाँ। अच्छा नहीं आजकल लग ये पलंग आए कुर्सी आए टेबल आए सोफा आए दीवान आए बोले खूब डिजाइन हिसाब ने बने से।
8: हाँ हाँ ये भी तो मोबाइल ने एक से डिजाइन उन डिजाइन अनुसार बना पड़े से।
7: अच्छा
8: हाँ सामने भी ताज पसंद ले।
7: हाँ हाँ अच्छा नेट वगैरह दुकान
8: हाँ, नेट वगैरह।
7: हाँ हाँ हाँ तू तो दुकान बाती जोन डिजाइन बोले उसन।
8: हाँ हाँ
7: अच्छा बनाते रहे।
8: हाँ बनाते रहे।
7: हाँ हाँ तू देखना ये बोले ने फिनिशिंग का जी ये जैसन की बना तो बीती जो औजार आए रूप सामान तो ये चो औजार बल्ले काय काय आस जालना पूरा आसे
8: ये चो औजार बल्ले ने ये भी मशीन बीती मन बोल मेरे सागे तो आते चीज सब काम होते रहे। ये भी तो एक से एक मशीन मन होली से।
7: हाँ
8: अब बाकी जितलो जरूरत है उतलो तो मशीन बोल नहीं है बड़े बड़े छोटे मोटे आसे ये रेता काट तो बीती और डिजाइन वगैरह निकरा तो घिस तो भी थी मशीन मन तो आसे जी।
7: अच्छा
8: बाकी बड़े मशीन बल्ले नहीं आए।
7: अच्छा हाँ छोटे चीज आसे
8: बोले छोटे मशीन।
7: अच्छा बनात रहे बल्ले का है कि लकड़ी खुद जो गेन बाद बनाया सास कि दूसर तन जाऊन बती बनाया सास।
8: नहीं नहीं मचो दुकान आसे बे लाइसेंस वगैरह बना ले से।
7: अच्छा दुकान आसे।
8: हाँ
7: हाँ
8: तो खुद जो काय तो कर लो रासे तो उन हिसाब ने मके तो मिलता लकड़ी घेन पड़ू है।
7: अच्छा
8: हाँ
7: हाँ बल्ले दुकान बल्ले कितलो दिन होली तुझे लाइसेंस वगैरह बना लो।
8: ये 2 साल है इसे।
7: 2 साल हो इसे।
8: हाँ।
7: अच्छा तो ये लाइसेंस बनात काज काय करू पड़ू है ना।
8: ये लाइसेंस का जो उन्हें ये डीजन ने जाऊ पड़ू है उताले जो दुकान हम किराया या खुद चो आए तो उताले नक्शा खसरा ये सब निकरा उन बते जमा करू पड़ू है।
7: अच्छा
8: डिवीजन ने।
7: हाँ कौन विभाग से डिवीजन ने।
8: ये वन विभाग ने।
7: अच्छा वन
8: विभाग। हाँ
7: अच्छा
8: डिवीजन ऑफिस ने। तो उन चो महादेव ने उन मन देखुआत नक्शा खसरा देखुआत कौन रोड ले बाहर ही आए या भीतरे आ से बोले उन फिर मन उन मन दखला जल परमिशन दिला जल फिर लाइसेंस बना उन दीवात।
7: अच्छा बोले हुतायल बने से।
8: हाँ हुतायल बना।
7: अच्छा बोले कागजात हिसाब ने का है खाली नक्शा ही लागे से।
8: हाँ नक्शा लागे से वकील दान ले नोटरी वगैरह करे पड़े से।
7: अच्छा अच्छा कहीं फीस बोल लागे सुन चुका है
8: मतलब फीस तो नहीं लागे जो चालान पटा उतरे उन्हें भी दिया 501 रुपया धरुआ साल ने।
7: अच्छा
8: हाँ
7: अच्छा साल ने 501 रुपया।
8: हाँ 501 रुपया।
7: अच्छा बाकी नहीं लागे कहीं फीस नहीं लागे।
8: नहीं बाकी नहीं लागे।
7: अच्छा तू बोले ने भी दुकान तुझ तना से तो ये सब चीज तू कहाँ खोली थी दुकान ने।
8: ये तोका पाला से।
7: अच्छा तोका पाला। हाँ तो ये सब चीजें भी संगाई थी दुकान ने।
8: हाँ दुकान ने संगाई से लोहा भी तिरुआ है पकना चरुआ है लकड़ी भी थी सब चरुआ है
7: असन।
8: हाँ
7: अच्छा तो बोले रेट कसन हिसाब रहे ना अलग अलग डिजाइन चो अलग अलग रहे से होती।
8: हाँ रेट बोल लेने अलग ही अलग रहे से सब चो।
7: अच्छा
8: हाँ
7: दीवान है पलंग
8: है। हाँ पलंग है डिजाइन ऊपर है।
7: अच्छा
8: कौन तो सस्ता भी थी बोल रहे से कौन तो महंगा भी थी बोल रहे से।
7: हाँ और फिर उन लकड़ी रूकी साहब ने बोल रहे
8: हाँ रूकी साहब ने बोले साइगन चो तो ज्यादा कीमत है। अब बाकी बोल लेन सस्ता भी थी बोल लेन सस्ता भी थी बोल बने।
7: अच्छा हाँ हाँ तो देख बोले काई बोले जैसे कि पलंग आए नहीं तो सोफा है।
8: हाँ
7: गोटक चीज के पूरा कंप्लीट कर तो काज जैसे मान लो सोफा जी है।
8: हाँ
7: तो ये था तू के बनात काज काय काय चीज ने तू खर्चा लागे से ना।
8: खर्चा बोल लेने ये था फेविकोल खिल्ला पॉलिश एक लान तो हो ना
7: लेबर तो लागे
8: लेबर से, तो लागे से। ये सब ने जो है लकड़ी
7: लागे से
8: लकड़ी ज्यादा पैसे लागू है।
7: अच्छा
8: और एक टन सामान कम से कम दीवान वगैरह ले जाए 20-25 हजार जो लकड़ी लागू है।
7: अच्छा
8: हाँ और फिर 1500 रुपया उन खिला पॉलिश फेविकोल ने लागू है।
7: अच्छा
8: हाँ फिर ऐसा लेबर फेबर वो जो पॉलिश वॉलिश करुआ है उनके बोल 2-3 हजार दे पड़ू है।
7: अच्छा तो सफाई मिलान बाती बोले ने खर्चा कितलो सन होय से तुम छो
8: मिला लेने बोले ने होने 35 हजार बट अमरू है।
7: अच्छा
8: हाँ
7: 35 हजार
8: हाँ
7: पूरा बना तो काजे
8: बना तो काजे।
7: अच्छा तू कित दिन ने निबड़े जाल ना
8: नचनी दू एक दू तीन जन हो लेने 15-20 दिन ने कंप्लीट हुआ है।
7: असन
8: हाँ
7: अच्छा तू दक 35 हजार बोल लीस ना कितना लाम वो सार रहे से जाले
8: 6x6 चोरे से।
7: अच्छा 6x6
8: हाँ
7: पलंग बोल ली
8: हाँ दीवान
7: दीवान
8: हाँ।
7: अच्छा फिर बिकतरल फिर कसन बिकसा ना
8: बिकतरल ने उन्हीं 40-42 ऐसे नहीं आए उन 5-6 हजार जो नाम काम करे उनसे उन्हीं भी पैसा बच हुआ है।
7: असन
8: हाँ
7: अच्छा हाँ तो बोले हर समय मतलब तुम चलो ऑर्डर इतने रहे से बना तो काजे ना
8: हाँ कौन तो बेरा हुआ है बरसात नहीं हुई ना खिंड सीजन आ सकू नहीं हुआ है ये भी तो शादी बिया चो चले से गुन खिंड का ऑर्डर मन।
7: अच्छा
8: ये हुआ है बरसात बेरा तो काम बंद हुआ है।
7: अच्छा
8: बरसात नहीं उतलो लकड़ी ऐसे निकाले तो बोल पानी फूल रुआ है कहीं कहीं दुनिया भर चो बोलू अच्छा हमने भी था उलगरा है
7: हाँ उन तो ऐसी
8: हाँ
7: आरे जैसन की पखना चो बोल लीस पखना चो का चीज बनाऊंगा जल
8: पखना चो असनी देव भूत।
7: अच्छा
8: हाँ गुड़ी उड़ी मंतन का जे
7: हाँ तो मूर्ति बना तो का जे गोटो अलग किस्म चो पखना रहे से बेना
8: हाँ हाँ
7: काय जो कड़ी पखना बस
8: हाँ हाँ हाँ हुनी भी ते उन चिकना टाइप चे रुआ है
7: हाँ
8: हाँ कोनी कोनी हार्ड बोल रुआ है कौन तो मुलायम बोल रुआ है
7: हाँ अच्छा
8: उन भी ते यारापुर बाहर असन भी तीन बोल मीरू है नाला ने
7: हाँ अच्छा
8: उन भी पखना अरे बट हुन मिचना रहे के ही कहे जले हुन डोंगरी था नहीं बोला।
7: अच्छा तो तुम के बाहर ही ले आनु पड़े सुन बाट ले
8: हाँ जोन की जरूरत है हुनी मन धरुन ही बात।
7: अच्छा धरुन बात
8: है धरुन बात ही बात।
7: अच्छा
8: हाँ
7: हाँ तो उन मन जसन भी ती सांगले उसन भी तुम बनाते हैं सर। अच्छा हाँ हाँ तो ये चुकाए तो ज्यादा मेहनत बलनी धरा ससन लागे ना मेहनत पैसा वगैरह
8: हाँ उन आप लोग मनी चांदी हुई बात
7: आप लोग मनी
8: चांदी हाँ उन देवपति सब भी थी दोनों कपड़ा लता रुचि पति
7: हाँ हाँ
8: उन हिसाब बना उन दी बात।
7: अच्छा हाँ उन आप लोग हिसाब
8: हाँ हाँ
7: हाँ बोले कहीं मोल भाव
8: नो आए हाँ
7: तो बोले तू चो बोलते ने लोहा चो काम आरु लकड़ी चो काम
8: हाँ
7: ज्यादा किनिक रोजगार हिसाब ने वैसे
8: हाँ हाँ हाँ
7: हाँ
8: पकना भी थी बोले ना उन जो उनके जरूरत आ से का है उन उधर लाए की बात
7: तो ये तू चो दुकान ने बोले तू चो संगे और किस जाना सन आसोतना काम करते लोग
8: मैं चो संगे बोले ने अबे एक लाया से आरामता ने लेखा मना सच्ची छोटे छोटे उन मन बोल कर रुक लग हुआ।
7: अच्छा
8: हाँ
7: तो ज्यादा काम होले फिर और बोलती यार
8: हाँ हाँ और बोलती यार रुक पड़ हुआ खिंड की ज्यादा काम बढ़ लेने।
7: अच्छा
8: काम नहीं आए तो फालतू एक्स्ट्रा बोल संगा उन
7: हाँ उन तो आए सी दक शंकर ये चो का जो कहीं पैसा कोड़ी बोल कहीं सरकार बाट ले मदद धर लीस ना
8: नहीं नहीं नहीं धर ले
7: नहीं धर लीस
8: नहीं
7: बोले तू चो खुद चो पूंजी
8: हाँ खुद चो पूंजी।
7: अच्छा
8: अब बैंक ने बोले जा रहे हैं तो आज होगा कल होगा बोलन बोलू नसने असने थोली मैं जाऊन जाऊन नस्कट हो ले।
7: अच्छा तो बोले कोशिश करूं दखली
8: कोशिश करूं दखले।
7: अच्छा बोले मान लो पैसा वगैरह मेरे लेने ज्यादा मात्रा में तो चुकाए बना तो बड़ा तो भी हिसाब आज जाल ना
8: बड़ा तो बल लेने मके भी लकड़ी बीतिन बड़ा तो रास है।
7: अच्छा लकड़ी
8: हाँ हाँ ये भी तो लकड़ी खूब ज्यादा महंगा बोली से बस पूंजी टाइप चो होनी है लकड़ी मेन चीज लकड़ी है।
7: अच्छा
8: हाँ
7: तो यही चीज की कहने बड़ा से तो ये दुकान तू खुद चो आए कि कहीं किराए धर ले से
8: नहीं दुकान मुझ खुद चो नो आए किराया में धर ले से
7: किराए ने
8: हाँ।
7: अच्छा तो बल्ले ने ये भी जैसन की रोजगार हिसाब ने बल्ले तुझे जो आमदनी हिसाब ने है तो चो पूछो पूरा जीवन काज हो ना
8: वैसे अभी नया नया तो उतलो जानुकनी होली से
7: हाँ। अच्छा
8: हाँ कितलो फायदा होए से कि घाटा होए से बस खाऊ से पेऊ से बीती
7: अच्छा
8: जो फायदा और घाटा तो नहीं दगा दिली पूरे नया नया पता ही नहीं चले
7: अच्छा
8: लेकिन खिड़क परेशानी जाए से
7: परेशानी बोल
8: पूंजी ना लोग
7: अच्छा पूंजी ना लोग तो दक कसने कोशिश कर ली जाले तो केवी ना कभी मेरे को ऐसा हाँ,
8: कोशिश कर ले केवी ना केवी तो हो दे मैं बोल सोच मैं हाँ
7: हाँ क्योंकि बैंक ताने बोले काय की तुझे दुकान चो कसन चले से
8: हाँ, हाँ।
7: ये सब चीज बोले भीतरे भीतरे पता बोल लगाए सो
8: हाँ लगाए से तो थी फोटो हाँ। खींचू नीला से मैनेजर में
7: हाँ तो धीरे धीरे मतलब कोशिश करते रहे इस बल्ले ने
8: हाँ, हाँ।
7: मेरे कितलो सन पैसा काजे बोले तू हिसाब बनाल से चाले
8: मैं 2.5 लाख का जे बोलो रहे हैं
7: अच्छा
8: हाँ
7: अच्छा बोले नुन मन देवन दे बल्ला से राजी होला से ने
8: हाँ राजी रोत का पहले शुरू में 1 लाख 1.5 लाख तक देंगे बोलो रोत
7: हाँ अच्छा
8: हाँ
7: बोले ने खिनिक बोले पैसा मदद मेर ली जाले
8: हाँ
7: बोले तुझे काम की खिनिक अच्छा बड़ा से बड़ा
8: दे असन टाइप चे सोचे
7: असन अच्छा पढ़ा लिखा हिसाब ने कितलो पढ़ून छान ली जाल ना
8: पढ़ाई बोल लेन मैं उन्हें 8वीं पास कर ले
7: अच्छा उतन बातें छान ली सार फिर घर चो जो परंपरा हुनर चलते रहे
8: हाँ उस स्थिति बोल आगे खूब खराब बोल रहे
7: हाँ
8: उन्हें पढ़ाई बोल कर रुक नहीं सकलू
7: अच्छा
8: 9वीं पढ़ते रहे 9वीं में पढ़ाई बंद हो ली
7: अच्छा तो बोले ने दक ए भी तुई तुम चो जो कला है बोलू भी घर चो जो कला है
8: हाँ।
7: उनके आगे तू बड़ा ऐसी बोलू
8: हाँ, हाँ।
7: एबल गोटो को रोजगार ची
8: है हाँ, रोजगार है
7: हाँ। हाँ। तो अलना शंकर बघेल तुझ संगीत लो अच्छा तुझ जो कलाकृति बना तो गोट बात होली आल खूब खूब जुगार ना
8: हाँ, जुगार जुगार
1: तो धर्मो काय सुंदर गोट रहने
0: हाँ,
1: शिल्पकार भाई रो तो श्री शंकर बघेल भेंट करता रहो तो बुलबीर सिंह का
0: अच्छा
1: तो वाले मैं मोड़ रख सकूं तो भी जामा
0: तो बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो सब पाए दादा दीदी सियान सजन और संग जो रहा संगवारी मन के जातो पूरे मैं धर्मू
1: और मैं मुद्रामा जी
0: हमी दोनों करो से
1: राम राम, राम। राम।

बस्तर के स्वर, अभी आप हमारा ये दैनिक कार्यक्रम सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम। समय है कार्यक्रम आम चुगांव का, प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का ये कार्यक्रम।

0: सब आप लोग बेड़ा हो नालबाड़ी होने बड़ी आकाश में कमानी कर सकते हैं
1: और
0: ये भी समय तक उन्ती हिसाब ने बारती हिसाब ने खाद हो बीज होने और नंगत वाट ये भी ने अदक हम जो जो दादा मन रला उन समय काय करो कि नांगर चला बढ़िया गाय बड़ा से नांगर ने और बुनून देव नाल फिर रोपा बल लगाओ मान सर ये भी हम दुख से धर्म कि रोपा बले बटुक अलग विधि हिसाब लगाए सोत ने और हम तो संगे संगे फिर बुना बल नहीं को छिड़काव बोल विधि हिसाब लगाए सोत अगर धान से गोठे जले और साग भाजी ने बोले ना किसम किसम चो पहले का हो टेंट आन टेंट तो जो चले तरी आसे मुडा आसे नहाल फिर गोटुक नाला बल हो
1: नाला बल
0: तो होता है पानी धुरमत नहीं कमाली कसम कर बोलने सो जी मतलब पानी के दखाउ दे उतने तो लाटा बूटा दुनिया भर रख रही
1: अकरे बोले
0: तो उस समय का फसल हमसे नुकसान हो
1: नुकसान बोल होते रहे
0: मान रही है बस मैं तो कुछ धर्म हमी असम दवाई में नीली से कि जो लाटा सो जी मर लाऊं दे इसे
1: मर लाऊं दे ऐसे का हां
0: तो ये बीच समय ने बातें जुग आए और हम जो जो खोजाखारी भाई बहन ये मन चो नुआ वाट हिसाब ने ये बीच किसान भाई बहन बढ़िया बढ़िया फसल मन लगाए और नगर उपजन कर सो
1: उपजन कर सो
0: देखे भी हमें देखो ड्रिप सिस्टम बोलते बीच बोर पानी चो पानी हो से
1: पानी बोलो
0: और हम पानी बोल नहीं जोन बूटा लगे सो बूटा नहीं फिर जाए
1: ये बात मत फुका नहीं जाए पानी बोले
0: तो असन वाट मन जोन वैज्ञानिक वाट ले खेती कर तो भाई बहन मन नगद पानी बोल बचाए सो समय हिसाब से बूता बल हो नगद उपजन बल हो और खत बीज का तो हम आसत खोजा खाली भाई बहन मन ने जो सांगस कि ये खत कैसा समय लगा इटलो लगा ये लगा और संगे संगे देखो माटी जांच बोल कर
1: माटी जांच तो खूब जरूरी चाहिए बोल ने और देख माटी भीतरे काय चीज चो काय कमी हो सी काय चीज के जान तो काजे उन जो गोटक जांच बल हो से तो हम के पता चले कि नहीं होता नाइट्रोजन नहीं आए कि फास्फोरस कम आए काय बल जो रू है उन सब के देखुन बाती उनमें सांसद बोले कि ये सब चीज के लगा लेने तुमके उन बल फायदा बल दे कि होता यूरिया डाल तो रहा है कि फास्फोरस पोटास का लगा तो बीती है तो उन बोले डर सकू हमें और संग संगे हम चो देसी खत के नहीं भूलक तो रहा है गोबर खत के नहीं तो उन खत बोले सबले ज्यादा हमके फायदा दे से काय काज की हम चो माटी के नुकसान नहीं हम रहा है
0: नहीं हम रहा है और देख ये समय जो नहीं मन बोर पानी हो ना चुआच पानी बोलने और जो आधुनिक विधि बोलने जो बोलते रहे बढ़िया काय सुंदर हुन पानी के बूटा मन ने दे सोने और खाली बूटा मन ने हुन पानी जाए से और हुन लगे नहीं कहीं बोले खरपतवार अकर ली बोले हूं तो कच बोल दवाई आसना हूं दवाई खींचन दिले हूं फिर लाटा बूटा बोल सोचे
1: मरुन जाए से
0: तो आसन वाट ने खेती कर लेने दक समया बल बाची हुआ है भूता बल हर हुआ है और जोन फसल के हामी लगल उसने हूं तो हम के मन बल लागे थे भूता कर तुम बोले नाई ना मैं मेरी बूटा लगा ली से नाल में चुंतरा लगा ली से नाल में करगा लगा ली से
1: दक तुम बल का हरिक लागे हरिक
0: लागे तो हरिक लागल का है कि खुद बल जाऊं बती नहीं कुछला बल करूं दखें दे जानी कहीं और बल करें दे कोई डी रामन बल जान से करला लगा ली से करला और जो माई मुर पानी खेती का जी हूं बोल बचत हो और जो दादा मन लगे मान के चलो कि उसमें नहीं आए साधन चुहा नहीं आए बोर नहीं आए ना फिर तरी बल नहीं आसपास तो हुन मन बल गोटुक फसल धस मान तो गोटुक फसल धरू दादाजी मन बल नहीं अभी समय का है सुंदर लाइन बिदिल धान लगाए सो
1: धान तो लगा और आजकल जोंदरा लगा चुल कई जगह दक्षित आजकल नदी कटा कटा होली तरी लग लग होली और बोर पर कराउन बाती जोंदरा बल लगाए सो
0: लगाए सो तो हम चो रेडियो सुन तो किसान भाई मन ये भी समय ने ध्यान दिया पक्का अच्छा समय से और खोजा खारी भाई मन संग तुम भेंट हुआ
1: और कृषि विभाग
0: जो गाँव मन ग्राम सेवक बोल से उन ग्राम सेवक दादा मन संग भेंट हुआ और पूछा कि कसन बीज लगाऊं जो जोगी हम के आमदनी दियो संगे संग कसन खत डालुआ या फिर काय रोग राई घर लेने हम चुका काय उपाय ये सब पाए कि आप लोग गांव से जो ग्राम सेवक दादा मनासो दीदी मनासो उन मन ले तुम जम बस गोट बात करा और कमानी करा तो धर्म मोहन राम तो खूब गोट पाता आसे
1: आसे का
0: और गोट हलू बोले तो रात बोलनी हो हम सरे बोल नहीं गोट ने
1: और ये गोट बोलनी सरे हम
0: तो उसने दिन हिसाब ले फेरा जी हमी धर्म हल भी नाटक ने मान तो मैं बोल से हल भी नाटक ले पहले गोट नगद जहाला आसे
1: जहाला बोला से हाँ
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटी। चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: GST काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की सरकार सीमेंट तपोर्रो GST मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% की सिक्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे लेकिन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके उनले कटात बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% की सित्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% GST लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडकल तीन जोड़ाई की अनबूता तेवेंट मोला 12% से कम मास 5% की सित्तोड़।
0: हाँ तो धर्म दके नगद जहालत होली
1: होली क्या
0: और हम लोग समय बला से और नंगत नंगत गोट बला से ने मानतर मैं बोलते हैं पहले गोट खल भी नाटक आसे लेके सुनाओ दी उन्हें
1: हाले सुनो
0: नाटक सुनाओ है बेटी धन लेके लिखला
1: 47 सदन सिंह नाग और एक आम चला कमरासोद बलबीर सिंह कच्छ और इता भाग धरु मनात पीताम्बर दास वैष्णव शशांक कुमार ठाकुर श्रीमती विजय लक्ष्मी दानी और पूर्णिमा सरोज।
0: तो आले नाटक के सपाई सुनो
1: सुनो

0: ए संबलू कौन बैठ जासीस ना पक्की गीत के गाओ सीस
1: होए ना आज खिंडीक नरस बाई लगे जाओ रहे काय
0: नरस बाई लगे जाओ रहीस काय का जाओ रहीस ना
1: काय का जे अली बाटे आओ नू अली बाटे बैठे ओडो खुसखुसा तुके कान ने सांगे दे
0: कान ने सांगु आस
1: हो काय
0: अली सांग सांग ते बे
1: ये दे तुझे बहु नहीं वो तो बोलो है मक्के सुम सुम हम सब तो मरो आओ ना मत कर रुरा है अली सोर
0: ये तो खूब हरीक चोट है ना मात्र आगतले तो तू दुई जान नोनी मन आसोत जे फिर तीसर चुआट आए चाले काई नहीं होए बहु मन नंगत आसोत काय
1: हुन तो नंगत आसे मंतर खिंडीक दखा रखा बोले तो लगवाए नहीं
0: लगवाए लगवाए लगवाए
1: एक आजे तो जाऊं रहे मैं नरस भाई बाटे
0: हाँ
1: और ये कोई टू
0: हाँ हाँ
1: तू ये काय बोल सिस ना दुई जन नोनी आसत बोल ले
0: हाँ
1: हुन मन तो ले की आत ना एकलान बोले लेका बोले तो हो तो राय
0: हाँ अबर समझ ले तू बेटा चो साध ने असन हो सीस ने
1: बेटा रले तो बस चले दे ना बेटी मन का चूल्हा फुक तो काजे जा दे दूसर घरे
0: देख न समलू आज ही चो दिन ने बेटा और बेटी ने काई फर्क नहीं आए बेटी भले उसनी बेटा भले उसनी समझ लीस
1: मैं तो समझ ली मन तो तू ही नहीं समझतीस
0: नहीं नहीं नहीं
1: तू के कौन बाट ले बेटी और बेटा गोटकी महा लागे से ना
0: दख समलू एबे जानू बेटा जसन पढ़े से लिखे से बेटी बोले उसने पढ़े से लिखे से बेटा जसन बड़े होन कमानी करे से नौकरी करे से बेटी बोले करे से असन काय काम आसे जे के बेटा करुक सके और बेटी नहीं करुक सके
1: एना कोई तू ए
0: हाँ।
1: तू ही मोके नहीं समझाओ दख तू ही पहले हार ने बेटा पावलीस फिर बेटी गुनुक तू ही मोके समझाओ सीस मोचो असन बेटी ची बेटी रता जाले समझती सुझ मोचो करला नी के
0: बेटी आसो जाले काय करला नी आए ना
1: आमी डोकरा डोकरी होन दे उदल दाए सत्रह सत्री घरे गेलो बेटी एवन भाती आम के दखे दे आम के जतनाए दे बेटा रालो ने तो जतन करे दे
0: ये देना समलू
1: होली होली मोचो गोट के मोचो घर से गुआट के मैं जाने तू वगैरह मैं जाए से
0: ये मनु के समझात और खिंडी मुश्किल ची आए ना
1: पारो ए पारो अल कहाँ गेलिस रे
2: काय आए हो एदे बाटे आसे हो सांग लास चैतन के
1: दख पारो मैं सांगुन दे से हुन दिन नरद भाई सांगते रहे जजकी चो दिन अमरतो के आगत ले मोटर बिता के सांगुन रसे मैं चेतन के सांगुन दिले से और ये नोनी मन दखा नहीं देवत कहाँ गेला से
2: कहाँ जा देता हो हुन जो आई संगे झित्री घर बाट गेला से कितरो पैसा धरें दे बोल लो चेतन
1: तू ही हुंचो फिकर नहीं कर हुंचो वाट के मैं बना ले से तू ये सांग कि सांग तो हिसाब ले तू दवाई औखत मन के नंगत खासिस काय
2: दवाई औखत के तो खाए से हो मंतर तुम्हें काय काज असन हरबर होला सा हाज गुनुख
1: काय काज हरबर होले से दुई जान बेटी चो पाछे बेटा पाऊ आजे कसन फिर हरबर होनु आयता
2: ये हो तुम्हें बेटा बेटा बेटा बोले सास हुन तो भगवान चो दे ना फिर बेटी होन दिले कसन करा से
1: तू यो गैरा ये हर फिर बेटी जन्माले जाले तुझे देव की न चाहें दे मैं बोले से बेटा और एक होली से बेटी चो साध अगर गौठियालीस बोल ले भूलकुन जान दे फिर दख फिर होए दे बड़गी
2: मारुआ जाले मारुन दियास गाय बाले जन्म तो धर ले से मनुक जो मारे खातो काज तो आए मार लेने मारुन दियास मोके
1: अले ओगायरा रे ओगायरा मारपीट करे से गुनेक में तुके गागू धर ली सी थाए अले ओगायरा ओगायरा
2: तुम ही तो बोले सास बेटी होले ने पेटे दे बोलन बादी मोए काय करू आई
1: मैं बोले से भगवान असन अड्रा कोट की नी गोठ बोलून बेटी होए दे बोलून भाती बोल सीस तुई आले बेटा ची होए दे दाग बेटा ची होए दे सुन लीस परले होली ना कोई टू मचो तो बुद्धि बाम होली मके असन लागे से कि जाऊन भाती तुझ बहू के पेटा पेटो पेटा पेटो
0: हे ये समलू तू यसन नहीं होना थाम तू चोरीस के थाम तू योगाय हुन मोचो गोट की सुन
1: काय के थामे देना दुदी जान बेटी आगतले आसोची एबे फेर गोटक बेटी के जन्माली से कितरो शौक रहे मोके बेटा पाव तोर तू ची सांग कसन रिस नहीं होन दे और एबे पारो अस्पताल ने आसे और मोके तो असन लागे से कि हुन उतैची रहो
0: तू यसन कसन बोलसीस ना समलू तू के फेर एबे बेटी होली हुन्ने बहु मंचो काय गलती आए गुनो और सुन मैं तुके आगत ले सांगे से बेटा और बेटी ने काई फरक नहीं कर तो राय एबे चो समिया ने दिन बदल ली समिया हिसाब ने चलुक पड़े से बेटी मन बले नंगत पढ़ा लिखा होन माय बाप चो नाव के गांव चो नाव के ऊपरे उठा सोर तू चो घरे फिर बेटी इली जाले तू समझ कि बेटी इली माँ लखी इली जसन दुर्गा माय सरस्वती माय दंतेश्वरी माय माय चो रूप तो आए बेटी
1: उन तो आए काय को तू मंत्र मैं तो बेटा चो साथ करू रहे ना
0: असन आए समलू आगे बलते रहू बेटा रले बंस के बढ़ा हुआ है मानता रसन नु आए बेटी बले बेटा ले कम नु आप बेटी आए बेटी धन बेटी मन के तुई नंगत पढ़ाव लिखाओ बेटा मन महापोस गोटोक दीने यही बेटी मन तुके संग दे दे
1: तुई सत्य बल सिस काय नुक समलू एवे फेर बेटी होली जाले पारो चो काय गलती आए मैं फोकहा रिस्का जी हुनके होता अस्पताल ने छाणून एते हो रहे भले कर लेना सरसरा तुचो लगे इले काय करते ता बुद्धि घुपू रह जानू
0: हाँ अच्छा कर लीस एबर जाओ मैं बले ए दे तुझो संगे बहु मन संगे संगे नुआ सगा के हरी कुदिम ने आनवा
1: होए ना कोई टू जसन मचो भाग ने आसे हुन तुमो की मिरली से
0: हाँ
1: अबर मैं पारो की नी खीजे
0: नहीं नहीं
1: और मचो बेटी मन के नंगत पढ़ाएं दे लिखाएं दे
0: हाँ
1: बड़े लोग महा शिक्षा मिर्तो के मचो नाव के तो जगा देची
0: हाँ काय
1: आले जोते बे
0: ये ना बेटी चो सटी के बोले हरी कुदिम ने बना सिकाए
1: होए ना बेटा होलो ने हरी कुदिम होए दे बोलू रहे मंत्र बेटी होली जाले काय होली
0: कहीं नहीं होए कहीं नहीं होए
1: ए बोले काय मन जा हरी कुदिम ने सटी मनावा
0: हाओ काय
1: फटका फुटावा
0: हाओ
1: अरे ते सुनता
0: आले आले सांग
1: कसन बोले दख सरगे

0: त्रिपुरा बिड़ार का अपनी झारा। सुन लीस?
1: हो ना।
0: और ये सुनता
1: हाँ आले सुनाओ।
0: जसन सरग ने तारा बरे से की नहीं, उसने ची मोचो बेटी चो नाव बोले तारा रहे दे और हुन तारा सन बरे दे। सुन लीस?
1: हाँ ठीक है।
0: आले ऐसा ना ले, तू तैयार हो झपके? आई अल जाओ, आले आले आले
1: ये दाए बेटी चुमान के समझ लीस ने। अल जाओ ते बे।

0: ये हो काय की मने मने विचार करे सास
1: काय विचार करीन तारे विचार ए करे से कि दख नू कसन दखते दखते दिन गेली
0: हुन तो आए
1: आम्ही जुआन ले डोकरा डोकरी होलू
0: हुन तो होतो रे ची आए हो
1: आमचो तीनों जान बेटी मन बाढ़ते बाढ़ला दिन कसन पहाली आम्ही गम के नी जानलू ने
0: ए हो दखानू दुई जान बेटी चो बिया बर्पन करलू तीसर बेटी डॉक्टरीन बनली गांव चे लगे नौकरी ने आसे घर ले जाऊन भाती सपाय चो सेवा करे से कसन हरिक सुख शांति लागे से ने
1: तू सत्य बलसिस रे मैं चे बेटा बेटा बोलते रहे आजी मचो बेटी मोके सहा होली से दखनू
0: हाँ दखलास
2: कहाँ गेलीस ना ए समलू
0: या कोई टू बाबू ये आसो घरे आसो
2: हासे ने
1: आओ ना आओ आओ कोटू आले ये बाटी आओ आले कुर्ती ने बस
2: आओ ना बस इंदे आले हाँ बस ले ये समलू
1: हाँ
2: खंडिक सियान हो तो के अगर हिंडा बुला बले नहीं हो जानू ना
1: आले काय होली जानू
2: काले तले खिंडी खोकली महा हो सिना खिंडी तारा नोनी के सांगे द बलते ये उरे
1: अच्छा कर लिस ना दख तू ही मोके समझा तो के काय सुंदर मैं मचे बेटी मन के पढ़ पठा ले ए बे पढ़ू लिखुन भाती बड़े नोनी मन तो सत्र सत्र घरे आसोत मानते तीसर बेटी जेचो लागुन मैं रीस धरू रहे कि तरो सुंदर डॉक्टर हो मच नाव के उजागर कर ली ना भगवान असन बेटी सफाय के देव
2: दखलीस तू ही बोलते रहलीस सियान बेरा आम के कौन दखे दे ये बे बेटी दखा रखा करेस जे कसन
1: सत्य बोले सत्य आए
0: सत्य आए नहीं गाय कोई टू बाबू ये डॉक्टर इन होन आमचो बेटी कितरो लोग मन की इलाज पानी करे से और नहीं तारा बोले से मैं मोचो आया बाबा के बेछाणु नी जाए
3: आया हे आया
0: हां दे हाक दे से ओ यहीं से अस्पताल जा तो काजे हर बर होली से कोई टू बाबू हो
3: मोचो काजे टिफिन ने भात साग जोड़ूं देस
0: ए ये नोनी
3: होय
0: ए दे तू चो काका के खोकली धरली से मन नोनी काई उपाय आसे अल देउन देइस नहीं
3: ए काका किधर दाइलीस
2: बेचसनी
3: खोकली होली से जर बोले चगाए से
2: जर नी धराय नोनी चाय खोकली चाय मगे
3: काका
2: ये
3: दवाई मन के खातो रहे
2: गोली आए
3: हो ठीक है और

0: ये तो आए बेटी धन।
1: हाँ
0: बेटा रू बेटी ने काई फर्क नहीं आए, मैं चिफंदी रहे बेटा बेटा करते रहे। ए बे सियान हो तो के जीना चमूर के जान ले, बेटी चमान के समझ ले।
2: ये हो तुम ही तो रीस होते रहास। ये बे दखानु गुलाए गांव तुम के, तुम चो नाव ले आगर बेटी चो नाव ने जाने सोत। हाँ दे डॉक्टर इन चो बाबा जाए से बोल सोत, सुने सास का है।
0: हो सत्य आए रे, असन सुन तो कि नाई मचो छाती और डेंगोन जाए से हरिक काजे।
1: आले हुन तो नंगत गोठ है ना समलू,
0: हो
1: मानतर खूबे दिन होली आम चो घर बाटी लोर के भी हुआ आज तू चो गाँव लो गीत के सुन लोर खूबे दिन होली ना।
0: तू के एथाए सुनाए से ना गोटोक ठसा सुन, बेटी धन ले बड़े धन निहाय काई, सफाए सुना दादा भाई। बेटा बेटी ने भेद तुम्ही नी करा, तेबे तो पड़े दे घाई।

0: तो धर्म
1: भाई
0: दक्षिणी बोल ने कान के टेकु बात सुन तो दी
1: सुनते रहे का है कितरो नगत एता गोटक संदेश बोल मिर लिसे ने कि बेटी के पढ़ा तो रहा पढ़ाउन लिखाउन बाटी आगे बढ़ाउन लेन का है आम क्यों मतलब सियान होलो बेरा गोटक सहारा बोलो वैसे
0: वैसे जगत नाटक से नावल काय सुंदर नाव ने बेटी धन
1: बेटी धन
0: और एक लिखु रोत सदन सिंह नाग ने और हमसे कमरा रोत बलबीर सिंह कच और भागधुर कलाकार भाई मनरो
1: पीताम्बर दास वैष्णव शशांक कुमार ठाकुर श्रीमती विजयलक्ष्मी दानी और पूर्णिमा सरोज
0: तो दक इतलो लगे था नाटक ने भागधुर रोते और दक धर्म नाटक हो कहानी हो ने और गीत बोल हो ये सब ने कहीं ना कहीं नगद गोट रुआ है
1: आज का
0: है कि नहीं
1: वो टॉक्सिक बल मेरे से
0: मेरे से हम ही काय बोला नहीं और गीत सुन लो अच्छा जी लग गीत का अच्छा सुनो गीत ने कहीं ना कहीं सुंदर गोट रुआ है और हम जो गांव का तिजान सीस अगर हम से बेड़ा बुता बोल होली बोले गीत मन गावत के नहीं बेड़ा बोले धान रोपा सन बोले ने तो होता बोल गोट कहानी रुए
1: कहानी रहे
0: और कहानी भीतर रुए
1: नगद गोट बोल रहे और काय द काम बुता बोल करते रहे काय जितरो बोले हम से मसागत लागे सुन बोले हमके पता बोल नहीं चले
0: हां नहीं चल तक कहानी कहानी है गीत गीत है और बुता बुता है और उसने तक धर्मो जो ने हम सुन लो हलबी नाटक ने तो एबे समय तो कोनी बोल सुन नहीं मान सोच नहीं सब पाए तो बेटी पढ़ाए सो आगे काट कर सोचने और सच बोल गोट है बेटा और बेटी नाम के कहीं फर्क संगत रू है क्योंकि ये भी समय तक सबले बड़े जो हम जो देश के जो नियम संविधान हिसाब लेने सबले बड़े जो पद बोल हमी हूं पद ने आम थाने गोटो को मेहरार दे दिया जो कि हम राष्ट्र पति बोलू से तो हूं जगह तक हम जो मेहरार दीदी उन पद के संभाले से तो एक जानते हुए हम से रेडियो सुन तो जन बोला सो दादा दीदी मन आपन मन बोल जानो कि एबे से मैंने लिखी बल कोनी कम लुआ
1: कम नवा हुने का तो बेटी धन बोलवात
0: धन बोलवात जो ने बे देश के चलाए से तो आपन मन बेटी बल हुन जगह नहीं उगले सके मान तो अच्छा तुम ज्ञान दिया अच्छा संस्कार दिया ने पढ़ा लिखा कसन उन लेका बराबर मुता नहीं करे
1: करे देखा
0: है हम खूब ठान मन तो कम जगह कलेक्टर मन आसोत ने हम जो दीदी मन खूब जगह आईपीएस आसोत आईएएस आसोत बोले पुलिस अधिकारी मन आसोत
1: इंजीनियर आसोत बड़े बड़े पद
0: मन पद मन आसोत अधिकारी मन आसोत कसन सीओ बीओ दुनिया भर ने आसोत
1: सब ने हाँ।
0: तो हम के आए कि हम जो घर बेटी बहन के नगद हमी गोटो बाट दखाऊ
1: हाँ।
0: और हम बाट के अच्छा दखाऊ और हम मन के पढ़े लिखे कहीं कमी नहीं करू
1: हाँ।
0: और नगद गोट बाट नहीं रहू तो हूं हम से घर से नोनी बल पक्का नाव कर दे
1: करे थे
0: कसन
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल वसन जो गोट निकल ली
1: हाँ।
0: हम जो नाटक सुन लू
1: हाँ, हाँ,
0: गोट ने गोट निकल ली
1: गोट निकल ली और दक इतरो अच्छा हरिक गोट के तु सांगलीज बोले तो दक एवे इतरो हरिक चो गोट बल चले तो मैं बोलते रहे गोटो काम चो मोटरा भीतरे अच्छा गीत बोला से
0: मैं जान ले जरूर जान ले
1: गीत बोल होले का
0: और हरिक लगती ने तो हम लोग समय बोला से
1: ने
0: तो समय आज जल पर गोट गीत हो ने पाछे हम गीत कुरिया मुझ नाव के सांगवा
1: सांगवा

0: आमचो गांव, अभी आप ग्रामीण श्रोताओं का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। कुड़ई फूल लोकगीतों के इस कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए भत्री लोकगीत। गायक कलाकार हैं नीलू और साथी।
3: आज यो दे गला को।

0: नीलूराम और साथियों के गाए भद्री लोकगीत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुड़ई फूल में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जगदलपुर के कार्यक्रम।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पीला मन काजे गोठ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ऋतु चक्र के बारे में। जानकारी दे रहे हैं बंशीराम कश्यप।
3: पीला मन काजे गोठ कार्यक्रम सुनतोर सब पाए गांवकारी भाई बहन मन के मोचो बाटले खुबे खुबे माया और लाड़। देखा भाई बहन मन, आमी रोजे दिनाचो सन तुमचो काजे नंगट नंगट गोठ मन धरून इवाओ। उसनी आजी बले मैं तुमचो काजे ऋतु मंचो नंगट गोठ धरून अमर ले से आले मैं मूर करें से सुनावे। ऋतु चक्र बोलने ने मौसम चो बदल तो समय आए। एक बरक ने मौसम कितलो वार बदले से कसन ने बदले से बल्ले ने पृथ्वी बेर चो बाहर किंदर तोर और पृथ्वी आपलो जगह ने लोहलो कारण ने समय बदले से और आमी एक ही मौसम चक्र या ऋतु चक्र बलो से। ऋतु चक्र ने एक बरक ने 12 महीना होय से 12 महीना ने हर ऋतु 2 महीना चो होय से और आमचो भारत देश ने ऋतु 6 ठान भाग ने बाटला से एमनचो नाव असन आए। गर्मी, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत ऋतु। उसनी पहली ऋतु चो नाम आए गर्मी, जो के आमी जेड बोलो से। ये बरक चो 6 ठान ऋतु मन ले गोटक ऋतु आए। जेट ने घाम खूबे अधिक रुआए। जेट ऋतु चो मूर बल्ले ने मार्च अप्रैल, जो कि हम जेट या आषाढ़ महीना बोल बोलुआ। ये महीना बेर चो उजर खूबे अगर रागुआए। जोन कारण ने बियाने बियाने बोले खूबे घाम लागुआए। जोन कारण ने बियाने बोले घाम लागू रुआए। जेट समय ने खूबे घाम चो कारण ने नदी नाला तरी डबरा टिकरा चुआ पानी आठून जवाए। पानी आटलो कारण ने पानी काजे जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी मन बले खूबे हरबर हुआ। जेठ समया ने मेरार मन मनुक पीला झीला मन पातर ढीला ढाला कपड़ा मन फिंदुआत काय काजे बल्ले ने गर्मी ले अस्थिर लागो और संगे संगे देह ने पानी चो कमी नी हो बोलून पानी डंडिक डंडिक पीवात। जेठ दिने बड़े दिन रुआए और डहा बले खूबे लागुआए। गर्मी दिन चो तापमान 40 डिग्री ले ऊपरे रुआए। जेठ ले आम के खूबे फायदा बले हुआए। नगद जेठ घाम होले ने नगद वर्षा बले हुआए। नगद घाम छेकले जहरील बीती कीड़ा मकोड़ा बले मरुन जवात। जेठ समय ने खूबे पाक फल मन बले फरुआए। जसन आमा काकड़ी तरबूजा खरबूजा लीची भेलवा तेतर काटाकुली चार डूमर खदम खूबे ठान फाग पलमन बले फरुआत। और दूसरा ऋतु बोलुआत आमी चमास। चमास जो जेट चो पाटकुटी हुआ है। चमास ऋतु चो मूर जुलाई ले सितंबर, जो कि आमी सावन भादो बोल बोलुआ ये महीना ने शुरू हुआ है। चमास चो मूर दक्षिण पश्चिम मानसून लेहरा मन ले शुरू हुआ है और आम चो देश ने चमास चो सीजन मूर हुआ है। चमास इले ने आमचो देह पाए के जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा मंचो देह पाए के बोले नगद अस्थिर लागू आए और आमचो भारत देश गोटो कृषि प्रधान देश आए। ये थानो लोग खुबे पानी चो ऊपरे आशित आसोत। चमास चो पानी ने धान पान कोदो कुटकी मड़िया जोंद्रा आरु खुबे ठान फसल मन लगवात और संगे संगे चमास चो पानी ले लाटा बूटा पेड़ पौधा मन बोले हरा भरा और नगद बढ़ुआत। वर्षा कसन होय से बल लेने बेरचो घाम खूबे छेक लेने नदी नाला तरी डबरा टिकरा चुआ समुद्र चो पानी भाप ले रूप धरून बत्ती झिकुआए और ऊपर उन बास के ठंडा अने शीतल करून बत्ती अमके नीचे फिर घसरू आए। बादरी चो पानी खूबे वजन होले ने वर्षा चो रूपले खाले घसरू आए। चमा समय ने खूबे जहिरा कीड़ा मकोड़ा मन वाले जन्मुआत जनले खूबे बीमारी सीमारी मन हुआ है। आरु चमास बेरा आम के बासी कोसी मन के निखातो राय, आम के अधिक ले अधिक तपलो बीती मन के खातो पीतो राय। चमास बेरा खूबे पानी होले ने खूबे जनधन चो हानि हुआ, जसन बाढ़ ले खूबे आम के जनधन चो हानि हुआ है। ऊंचो पाटकुटी हुआ है शरद ऋतु, ये तीसरा ऋतु आय। शरद ऋतु के आमी पतझड़ वल बोलवाऊ, ए असन ऋतु आय जोन चमाचो पाटकुटी और शीत चो फूरे युवाय। अरु रुख राई आपलो पाना पति मन के घसरवात। शरद ऋतु ने तापमान ने गिरावट बोले दखुक मिरुआ। शरद ऋतु ने दिन रात चो समय लगभग बराबर रुआ। शरद ऋतु ने बेर चो घाम खूबे अच्छा लगवाए, जोन कारण ले सुनहरी गुणवत्ता सुनहरे घटे चो बोले ऋतु बोले बलुआ। आरु शरद ऋतु चो मूर होतो महीना आय अक्टूबर नवंबर, जोन आमी अश्विन या कार्तिक महीना बोले बोलुआ। शरद ऋतु ने वर्षा होले पाटकुटी बादरी साप आरु नीलिया दखा दीवाय। शरद ऋतु ने भौरक हरा भरा हरियाली दखा दीवाय आरु वातावरण खूबे मनमोहक बोले लागुआय। शरद ऋतु ने दिन बेरा खूबे घाम लागुआय आरु राती भेरा खूबे शीत लागुआय। आरु खेत मन के पाकलो धान चो सुगंध गंध चारो बाटे फैलून वातावरण के एकदम सुगंधित बनवाए। शरद ऋतु ने मौसम अच्छा रुआ, जोन कारण लोग मन चो श्वास बोले खूबे नगत रुआ, जेन कारण शरद ऋतु के अनुकूल ऋतु बोले बलुआत। आमचो लगे आश्रय चौथा ऋतु हेमंत। हेमंत ऋतु शीतकाल समय ले ए तो गोटोक ऋतु आए, जोन उन छह भारतीय ऋतु मन ले गोटोक आए, जोन शीत समयाचो स्वागत करुआए। आरु ए ऋतु समय ने पूरा वातावरण शीत लागुआए। पारंपरिक हिंदू कैलेंडर चो अनुसार हेमंत ऋतु चो मूर दिसंबर जनवरी जो के आमी माघ या पूस महीना बोले बोलुआ। आमचो जीवन ने हेमंत ऋतु बरक चो सबले अच्छा हरिक उदित और आनंदमय चो ऋतु आय। हेमंत ऋतु ने शीत धीरे धीरे बाड़ुआए और दिन नानी और राति बड़े होते जाए। हेमंत ऋतु ने ओस बले खूबे घसरुआए। हेमंत ऋतु चो शीत और शिशिर चो ठर्राती सर्दी चो मंजार चो ऋतु आय, जोने हरिक उदिन संगे संगे श्वास काजे बोले नंगत आय। आमचो लग आसे पांचवा ऋतु शिशिर। शिशिर ऋतु बारची छह ऋतु मन ले गोटोक ऋतु आय। शिशिर ऋतु के आमी शीत ऋतु और सर्दी ऋतु बोले बलुआ। आमचो भारतीय कैलेंडर ने ए ऋतु जनवरी फरवरी जो के आमी माघ या फागुन महीना बोले बलुआ। शिशिर ऋतु के समय ने खूब शीत लागुआय और मौसम बोले शुष्क यानी ठंडा रुआ और लहरा बोले ठंडा ठंडा बहुआय। शिशिर ऋतु ने पेड़ पौधा मन के पाना मन बोले निकरुक मुरियाए। शिशिर ऋतु ने रवि फसल मन हुआ, जसन चना गेहूं जो और खूबे ठान फसल मन हुआ। ए ऋतु ने हल्का फुल्का घाम दका दीवाय, जोन कारण ने शीत बले नगत लगुआए और संगे संगे ऋतु स्वस्थ काजे बले और देह पाए काजे बले नगत ऋतु आए। काय काजे बले ने कि आमचो देह पाए ने रोग प्रतिरोग क्षमता बले रोग संगे लड़तो बीती क्षमता बले खूबे बढ़ुआए। ए ऋतु बारह महीना चो सब ऋतु ले ठंडा ऋतु आए, जोन थाने शीत चो तापमान जीरो डिग्री से ले खाले जरूर आए। ए ऋतु ने ठंडा लहरा चो कारण ने देह चो त्वचा शुक्लो असन लागुआ, जोन कारण ने शरीर तो त्वचा चिड़चिड़ा टाइप चो लागुआ और ऐसो संगे संगे आलसी ठग सुस्ती बोले शरीर के लागुआ। ऊंचो पाट कुटिया आम चलक बसंत ऋतु। बसंत ऋतु भारत चो छठान ऋतु मन ले गोटोक ऋतु आय। बसंत ऋतु चो मूर मार्च अप्रैल बल्ले ने चैत बैसाख महीना ने हुआ। बसंत ऋतु ने इले ने धरती जो नाम पृथ्वी बोलुआ खूबे सुंदर सुंदर लगुआ। बसंत ऋतु चो समय ने धरती के दकुन मन हरिक और गदगद लगुआ। हिंदू पंचांग चो अनुसार बरक चो मूर ऋतु और आखिरी ऋतु बसंत ऋतु के बलुआत। बसंत ऋतु शीत ऋतु चो पाटकुटी युवा उन्हीं कारण ने बसंत ऋतु ने शीत कम लगुआ और रुख राही जंगल झाड़ी ने नवा नवा पाना पति मन बले इवात और आमचो रुख ने फूल मन बले इवात जोन खूबे सुंदर महकू और संगे संगे बाड़ी खिड़ी ने सरचो सो सुंदर सुंदर पीलिया पीलिया फूल मन बले दगुक मिरुआ। आमचो भारत देश ने रीति रिवाज परंपरा चो अनुसार मांग महीना चो शुक्ल पक्ष ले पंचमी ले बसंत ऋतु चो मोर हुआ बोलवात जो के आमी बसंत पंचमी के रूप ले बनावा। भारतीय संस्कृति रीति रिवाज चो अनुसार बसंत ऋतु के ऋतु मंचो ऋतुराज बले बोलवात और संगे संगे बसंत ऋतु ने त्योहार बहार बनातो काजे नगद समय बले आए बोलवात। बसंत ऋतु ने आमी होली चो त्योहार बले बनावाओ आमी एक रंग मंच चो त्योहार बले बोलवाओ और होली त्योहार बसंत ऋतु चो मुहूर्त होतो चीना त्योहार आय और आमचो भारत ने देश ने हरिक उदीले होली त्योहार मनावात। बसंत ऋतु ने शीत ऋतु ले दिन बड़े रुआय और बेर चो घाम खूबे रुआय जोन ले वातावरण खिनी खिनिक तपते जाऊआ। बसंत ऋतु ने रवि फसल काटतो समय आय जो के आमी शीत समय ने लगा रुआ और बसंत ऋतु के काटुआ आमी उनके रवि फसल बोलुआ। मौसम चो प्रभाव मौसम बदल तो ऐचो प्रभाव जलवायु ने तापमान ने और दिन के और राति चो बेड़ा नानी बड़े होतर ने रुक राही चो जीव जंतु ने कीड़ा मकोड़ा ने सब जीव ने ऐचो प्रभाव पड़ुआ है। तो आम तुम चो का अच्छा नंगत नंगर गोड़ धरू नेवरो आम चो लगे गोड़ गीत आसे ए गीत के बोले सुनू।

0: এদায় আমচো যাত সময়া হয়েছে যাতো ফুরে পিলামন কাজে গোর্স কার্যক্রম শুনতো সব পায় নানি বড়ে পিলামন কে মচো বাটলে খুবে খুবে মায়া আর লাড়।
1: पीला मन का जिकूट इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋतु चक्र के बारे में। प्रस्तुति थी बंशीराम कश्यप की। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या का प्रसारण अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करते हैं।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25

0: सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.

0: 10 पर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
3: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
2: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernise the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
4: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे. फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयर हाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर

यादों की बारात कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे हैं इस फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, सुरों में ढाला है आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में लीजिए सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है अनामिका।

हम किसी से कम नहीं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ में। शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीत बकिया है आर डी बर्मन ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: ये है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। रात्रि के 9:30 हुए हैं। उवाट शासकीय योजनाओं की जानकारी संबंधित इस कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं जयराम कवासी।
3: उवाट कार्यक्रम के जनोड उनकेर दादा दीदी किन नया कर जोहार। उवाट कार्यक्रम ते मोम सरकार था पुना पुना योजना किन केचोमन तोम नेंड आले तेन ओंड योजना मिंदे राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना इद योजना ता बारे में ते नेंड ननमी किन जानकारी इतान। छत्तीसगढ़ राज्य ते डेयरी उद्यमिता इत कचोन पाल पीरी व मनद हर तो अर निकय तो पिता पाल अर पाल दव बनेम अत्तव जाकिना नेट दिनम ते निकय मांग तिन उड़ी हविना पूर्ति की लय डेयरी इकाई पाड़नद निकय जरूरी मिंदे नेलोटा नेलोटा गोटक बर्रे दिव्य पोड़पी तेना निकय नापा पोईत तोड़ जुआन लया लयोड़ किन डेयरी क्षेत्र ते व्यापार ता मोह का ईनद उद्देश्य ते राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना लागू की ता इद योजना ते लोपा मुन्ने पुनर डेयरी उद्यमिकिन कोन इद बूतोथिन कीले नेला लागते मतु निन्ने उन दिन गोटक बर्रे पोड़पनोड़ किनवेंड आहुर दिब्बे गोट बरे पोड़पनद मन वाना कीता तान लागी मन व राज ते फाल पीरन भूतो हाड़ उंकिड़ किन फाल वेंड दुर कीता तेना उद्देश्य इद्दे मेंदे की इद योजना ता लाभ पोई के अपुन खुद तविंडे रोजगार बड़े माता डेयरी विकास ता माटा मेंदे की दिव्य मूल दिन नाप आई अर्थान संग संग ते डेयरी उद्यमिता व्यापार वन बड़े मई मन व राज ते पाल उंडनोड अड़ फाल व मनोड़ नड़मा पाल व मनोड़ परिवार तोड़किन डेयरी क्षेत्र ता विस्तार कीनद उद्देश्य मिंदे पाल व मनोड़ अड़ फाल दव जाकी किन मुन्ने पेंजितीनद इसाप मिंदे डेयरी इकाई ता अनुदान विवरण इले मिंदे घटक न पिद्देड़ उनकी वित्तीय लागत सहायता प्रकार पेर किटा पूंजी अनुदान सबले मुनेन घटक न पिदेड़ भारत देशम ते नेलोठा फाल इनव गोट साहिवाल रेड रेड सिंधी गीर तारपारकर नेलोटा शंकर की तो बर्रे गोट उनकी वित्तीय लागत रेंडिन ले दिव्य पाल इनव गोट न पैसा 1,40,000 आड़ ओंडिन पोरो 70,000 रुपया मुंड वेडसन मेदले मंता सहायता प्रकार फेर किटा पूंजी अनुदान सामान्य श्रेणी तोड़किन मेदले सामान्य श्रेणी तोड़किन मेदले 50% ता अधिकतम 70,000 रुपये छूट मिंदे SC/ST तोड़किन मेदले 66.6% छूट मिंदे अनुदान पात्रता और लाभ पोईतनोड़ा विवरण इले मिंदे इद योजना ते अधिकतम 2 पशु असा पर्दतोर सामान्य श्रेणी तोड़ किन मैदले पाल ईनव पशु न वास्तविक लागत ता 50% और अधिकतम 0.70 लाख आड़ SC/ST तोड़ किन मैद पाल ईनव पशु न वास्तविक लागत ता 66.6% अधिकतम 0.932 लाख रुपया अनुदान दुर्कता योजना ता प्रावधान 3 में ज्यादा खर्च अत के पशुपालक खुद अपन खर्च किया पर्दतोर आड़ ओन अनुदान दुर्को असम पे बेवे वेंड गोटक बर्रे पाल इन ले मनी आड़ताना उमर एंग वर्षन ले हागेड़ मनमकी अस्तद गोटक नालुक बर्रे पाल इनद नपन ते कम 10 लीटर फाल इनद मिंदे फास अस्तव गोटक बर्रे ना मेंदुल इले मनी की हव न अविनगा अविनक्टीना ओंड दीन ते कम औसतन 8 लीटर पाल दुर्की गोटक बर्रे ना पशु बीमा एंग वर्षन लय मंदनद डेयरी इकाई ता पार्तद नफंते खमते खम मूंड वर्षन लय अनिवार्य मंदनद नेलिल वरोड़ सुडु नेल मंदनोड़ आड़ सीमांत कृषकीड़ गरीबी रेखते दौड़ मंदनोड़ दुग्ध सहकारी समिति तोड़ दुग्ध संकलन मार्ग मंदनाव नाहनोड़ नरवा योजनते मंदनोड़ पशुपालकेड़ महिला स्व सहायता समूह नव आड़ मुनेट के पाल पीरानोड़ इद योजनातीन मैदले मुने लाभ पोयत परद तोड़ इद योजना तल लाभ पोयतले इत ग्रहीड छत्तीसगढ़ दौर आयनद मिंदे संयुक्त परिवार दौर बिच वेरठोरे लाभ पोयता परदी तोर बेनु नगे मुनेट के रेंड पाल इन गोट मिंदे जाले और इद योजना तल लाभ पोयता परवोर इद योजना त पंडिंग पैटर्न क्रियान्वयन आड़ डेयरी इकाई ता दिशा निर्देश इले मिंदे इद योजना ता इकाई तीन मैदले बैंक ऋण ताकेट ना लोग खुद अपुन वेंड पूंजी लगा किस बूतो किया पर जतोर तेन लाभ पोयतनोन बेदे वेंड होंडोय इतके बैंक लिंकेज या सब वित्तीय ताकेट अनुदान दुर्का पर दिता ओणदम अनुदान दुर्कता फिर की हेंग वर्सन फिर की दुर्किता योजना तल लाभ पोयतले इले आवेदन कीनाद विकास खंड तग बोकते मंदनाद पशु चिकित्सा संस्था पशु औषधालय कृत्रिम गर्भदान उपकेंद्र मुख्य ग्राम इकाई पशु चिकित्सालय कृत्रिम गर्भदान केंद्र मुख्य ग्राम खंड तग अंजमन फार्म एदा परदितोड़ दस्तावेज फोटोकॉपी पहचान पत्र छत्तीसगढ़ द मूल निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र पता सत्यापन दस्तावेज डेयरी पार्तद नेल द उनके जानकारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब वित्तीय प्रखार आसुंता कागजी लागता मुनेट के पाल पीरानोड़ जाले ओना मुनेन ओंडले किताव खागेतीना फोटोकॉपी लागता इद योजना तीन मैदले पंजीकरण विकास खंड तद संस्था तक पशु चिकित्सालय कृत्रिम गर्भदान केंद्र मुख्य ग्राम खंड तग पंजीकरण आयनद मिंदे पंजीयन तद कर्मांग वित्तीय वर्ष संस्था तपे देड़ आड़ अंडिन तद दिनांग मंदनद अये विकास खंड तक पंजीयन अत्त पेर के आवेदनी किन जांच की सीधा विभागीय जिला कार्यालय तग लोथी तोड़ आ फेर के जिला कार्यालय तग टीना दुर्ख तद बैंक लिंक ता जांच की पंजी तक संधारित की तोड़ इद योजना तक लाभ पोतनोड़ा चयन बैंक तक लिंक

0: संयुक्त आयन अदमिंदे संयुक्त उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा ताकेट दुर्ख तव आवेदक नाकेट बैंक ताकेट लोह तव आवेदन मुन्नेदाता बैंक ताकेट ऋण स्वीकृत आड़ पैसा जारी कित के संयुक्त उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा तिन एनेक्सर एक लोहता वैतनद एनेक्सर एक ताकेट चयन अत्तरोर बितल मंदनोर चयन अत्तरोर उम्मीदवार जिला थोर अधिकारी संघ ढेरी इकाई तर तथा अनुबंध कीनोर सब वित्तीय पंजीकरण की तव आवेदन पत्र जनपद पंचायत कृषि स्थायी समिति तगटिना फेर की जिला पंचायत कृषि स्थायी समिति दायनव आड़ अगय लास्ट चयन आयनद आपेर के चयन अतंजो ओन सूचना इनोड आड़ ओन फेर के डेयरी इकाई खोला किले सत्यापित किस मन अनुदान तीन मैदले आवेदन लोह तनोड डेयरी इकाई ता स्थापना बाले आयनद लाभ वेतनो नाकेट डेयरी इकाई स्थापना ता संबंधी सामान्य निर्देश इले मिंदे लाभ वेतनोर बितल उनके विवरण ये वैतता और बेगटीना गोट बरियास्तोर अगर टीकाकरण की नद सुविधा मिंदे की वाले तान लेख किए वेतन मुनेट के पोर्ट तव पाल ईन गोट किन इद योजना अंतर्गत शामिल की नदयो एससी एसटी तोड़किन सक्षम अधिकारी नाकेट जारी की तर जाति प्रमाण पत्र ईनद अनिवार्य मनता लाभ पोतनोर आड़ गवातीन मैदले मंदनोड़ा दस्तखत कीनद अनुबंध पत्र मन्नी इत ग्राहीन कम ते कम एंग वर्षन मैदले डायरी तीन चलाकीय वैतता डायरी तक अस्तव गोट बरे किन बीमारिया वत के ताना आयनद नुकसान तीन मैदले इत ग्राही बैंक तक लिंक मंदनद कागत संबंधित पशु चिकित्सा सहायक आड़ बैंक तोन प्रभारीन आड़ सब वित्तीय स्थिति ते पशु चिकित्सा सहायक संलग्न आड़ सरपंच नालोक पार्षद नग लिका किसमंज सूचना या प्रदितोर सूचना इत फेर के भौतिक सत्यापन आड़ पुना पशु इले इत ग्राहीन डोलतत पशुता पलटा पुना पशु असीमंज इत ग्राहीन इतोड़ इले ता स्थापित इकाई ता पशु डोलता फेर के दुर्खता बीमा राशि ते इत ग्राहीन पुना पाल इनद गोड असीमंज वेंडे अस्के गोटकिन एंग वर्षन तग एवना पोड़पतोर पशु विक्रेता बित्तलोड ईनद रसीद तग उनके विवरण मंदनद ना नसल उमर बियत संख्या पाली नदी साप आदि इकाई सत्यापन कियम पे सत्यापन करता पशु विक्रेता ताकेट इत्तद रसीद तग उनके विवरण ता मिलान कीस डेयरी ता थोनग मिदद पशु तिन तासना आता बैंक तक लिंक आयनद ऋण स्वीकृत आड़ वापसी ते इत ग्राहीन अनुदान तीन मैदले बैंक तव उनके शर्त लागू आता इत ग्राही तनग आवेदन पत्र लिखा कितद बैंक साका ता पेदड़ लिखा कीले मरंगमा कीर बैंक ताकत नियम अनुसार आवेदकिन डेयरी स्थापना कितद नपन थे ऋण स्वीकृत कितोर आड़ और इत ग्राहीन तनवा पशु किन वमले इतग्राही खुद वम परदितोर डेयरी स्थापना किस स्थापित तद डेयरीता संबंधी खर्च जानकारी पशु टीकाकरण प्रमाण पत्र बीमा प्रमाण पत्र और विभागीय जिला कार्यालय आड़ बोके तद पशु चिकित्सा सेवा संस्था तीन जानकारी इया पर तोर सब वित्तीय इतग्राही नाकेट डेयरी स्थापित किस स्थापित तद जानकारी ता उनके उल्लेखित किया वैतता आड़ बैंक पशु पासबुक ता फोटोकॉपी बोकेतल डोर डॉक्टर अस्पताल तग जानकारी या प्रदतोर इकाई ता सत्यापन इले आयनद बैंक लिंक्ड बैंक ताकेट सत्यापन खीले सत्यापन समिति तले किए वैतता समिति तग संबंधित बैंक तोर शाखा प्रबंधक अध्यक्ष मंतोर और नारदोर सरपंच नालुक पार्षद पशु चिकित्सा सहायक संलग्न वेंड शामिल मंतोर सौवित्य इतग्राही नाकेट सत्यापन समिति तग सत्यापन करा किया वैतता समिति तग स्थानीय सरपंच पार्षद पशु चिकित्सा आड़ इतग्राही सदस्य मन तोड़ अनुदान स्वीकृतिता प्रक्रिया इले आयनत इदमाटा उच्च स्पष्ट के चीनद आता कि अनुदान योजना अंतर्गत विभाग आड़ शासन तहायतते राशि मनता इव राशि किन मैदले दावा किया परवोर बैंक लिंक्ड इकाई स्थापित अत्त फेर के जिला अधिकारी पशु चिकित्सा सेवा कार्यालय ताकेट एनेक्सर एक ताकेड दोर्ख तद दिनांक और सत्यापित कितद समिति प्रमाण पत्र दिनांक थद इसाप्ते योजना ते मंदनद अनुदान राशि स्वीकृत आता सौ वित्तीय इतग्रही ना राशि स्वीकृत अत्त फिर के इकाई लागत्ते वायनद राशि खुद त पैसने असप्रदतोर प्रकरण स्वीकृत अत्त फिर के इकाई तग पशु किन वमनद मानदंड इतग्रही खुद किया प्रदतोर इकाई स्थापित अत्त फिर के अनुदान दुर्कम इतग्रही न आवेदन दुर्ख तद इसाप्ते संयुक्त उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा ताकेट राशि स्वीकृत आता अनुदान दुर्कनद प्रक्रिया इत ग्राहीड किन अनुदान राशि दुर्कले यूजा किन लागता गोटबरे व मनत संबंधी दस्तावेज सत्यापन कित्तव कागजी बीमा कित्तव कागजी अस्तव गोटक बरेना टीका वाट तव कागज इतग्राही आड़ इड़वुड़ गवा मत्तरोड़ ओड़ा दस्तखत इतग्राहीन इकाई तीन कम ते कम एंगवेर सा चला किया वैतता तेन मैदले इतग्राही आड़ विभाग तोड़ उड़ा बीच ते नलोटा माटा मन्नी बैंक का तथा विवरण आयनद मिंदे जाति प्रमाण पत्र वेंड आयनद मिंदे एससी एसटी तोड़ इतग्राही कीन सक्षम अधिकारी ना दस्तखत अत्त जाति प्रमाण पत्र मन्नी नारदा पेदेड़ तीन संग संग उनके सीता कियन लायक ना कागज वेंड आयनद मिंदे छत्तीसगढ़ द मूल निवास प्रमाण पत्र वेंड लागता बैंक लिंक आयनद मिंदे इत योजना का लाभ दुर्कचुन अनुदान राशि पैसा इनद बैंक जारी कीता अनुदान बैक एंडेड अनुदान रूप ते दुर्कीता इदिन बैंक पेर के लॉक इन पीरियड वेंडे किया परदता बैंक पेर के अनुदान राशि तीन बीने कात तक तासा परदता इत ग्रहीन बैंक पेर के ब्याज पोयो विद्य कारण ते बैंक एंडेड अनुदान दुर्कोक और पैसा संबंधित संयुक्त उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा तिन वापस दाता सवित्य इतके खुद था पैसा योजना त लाभ दुर्कता फेर के अनुदान राशि इतग्रहीन बैंक खाता तक डीबीटी ता माध्यम ते पैसा दुर्कता अनुदान तो पैसा ना गलत उपयोग अत के बाले आता इतग्रहीन दुर्कता पैसा ना गलत उपयोग अत के ओन पोर्रो फेर के कार्रवाई चले माता अनुशीलन एवं अनुसरण लाभ पोतर और इतग्राही तनग ओंड पंजीतासी मंतोर अगा उनके विभाग त जानकारी प्रशासनिक अधिकारी रा जानकारी इकाई बैठ त उनके जरूरी सुझाव आर डेयरी इकाई ताकेट तव तकनीकी सेवना उनके विवरण अगा मन्नी विकास खंड स्तर ते आवेदन अग्रसरण करता संस्था ताकेट सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी नाकेट कम ते कम लेंज मेट ते ओणदम जांच की सोमन तोर हाड़ पशु चिकित्सा सहायक सलग्य थाकेट वेंडे ऋण लेस ने ओणदम इकाई पंजीतक लेका जो कतासी तोड़ जिला स्तर ते स्थापित तद डेयरी इकाई तग कम ते कम आरु लेस ने ओणदम जिला अधिकारी वेंड जांच की सोमन तोर आड़ तम व पंजीनक लेका जो का किसो मन तोर इद योजना त जानकारी इच्छोरे मत्ता मी कुंकेड़कीन इद योजना त लाभ पोइसमन मुन्ने बड़ेम हाई मोड मीड उंकेड़ इद योजना त लाभ पोइसमन मुन्ने बड़ेम आई मोड अले इंजे नाक ईमुड बीदा मी उंकेड़कीन सेवा जुहार
1: उवाट शासकीय योजनाओं की जानकारी संबंधित इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के बारे में प्रस्तुति थी जयराम कवासी की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए जगन्नाथ और साथियों का गाया गोंडी लोकगीत।

0: जगन्नाथ और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। ये है आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र। रात्रि के 10 बजे हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हल्बी बोली में परिचर्चा। विषय है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास। प्रतिभागी हैं श्री मंधर रामनाग और श्री बलदेव मौर्य। संपादक हैं बलबीर सिंह कच्छ।
3: रेडियो सुन तो भाई भिन मन दखा आमे बेरा पस्त आपन मन के कई गोट बात करूं से आपन मन लगे अमराव से मंत्र दखा आमचू बोले ने पूरा बस्तर ने बोले कई किस्म चो त्योहार बार मन होते रहे से तो आज यही हिसाब ने बोले आज गोट बात कर तुका जे आमता नीला से श्री बलदेव राम मौर्य सामाजिक कार्यकर्ता और श्री मंधर राम नाग प्राचार्य ले सेवानिवृत्त होला से सबले पहल भेंट गाठी साहब ने खूबे खूबे जुआर
4: जुआर जुआर जुआर और खूबे दिन ले अलग अलग रलू।
3: हाँ
4: मातर नवा जुआर निकाजे आम सुतर होन बाती ये था एक दूसर जुआर करूं से।
3: हाँ
4: और आम चो जितले वाले रेडियो सुन तो भाई भाई मन के आम तीनों बाट ले आम के
5: जुआर सब के कोना कोना में सब जितले वाले आसो सब लगे जुआर सब की करूं से
3: का। हाँ तो देखा आसन आए ये तियार बहार बोले ने हरी कुदिम ने आमी बनाओ से ये सांगा सुना ने बोले आमी बोले पढ़ा लिखा होलू पढ़ू से जानू से कि आगे आमी बोले ने कहा कि अंग्रेज मंचू गुलाम रलू बोले ने हन मंचू हिसाब ने आमी चलते रलू आम के असन कहीं तियार बहार ना ले आमचो मन हिसाब ने कहीं चीज आमी नहीं करते रलू।
4: हाँ नहीं करते रलू है कि नहीं डर रहे
3: डर रहे रहे तो हन हिसाब ने एवे गोटोक आजादी चो अमृत महोत्सव मनातोर मोर होली से तो यही गोट बात आज आमी तीनों एता भोसलू से करवा कि कई जन बाढ़ती उन्ती बाढ़ती चो बाट आए जैसे कि समाज चो विकास आए बौद्धिक बल्ले ने पढ़ाई लिखाई चो आए आर्थिक बल्ले ने धन दौलत चो विकास आए ये सब चीज के भी आम के जानतो रहे आमी कहाँ तक गेलू से और नहीं गेलू से जाले आमी आमी कसन आगे बाढ़वा आए के नहीं। तो सबले पहले मैं बलदेव राम मौर्य से मैं पूछूँ अभी कि समाज चो बाढ़ती हिसाब ने सामाजिक उन्नति चो हिसाब ने तुमके पूछे से कि ये आज़ादी चो बाद ने बोले ने कतलो विकास होली से और आम के काय का रुकलाए पढ़े दे।
5: आज़ादी चो बाद में पहले हम चो बस्तर संभाग ने सबे लोग एक ही हिसाब ने पिंदा ओढ़ा रहे जोन बोले ओबीसी मले रहो चाहे जोन बल रहो तो नहीं एक ही स्टाइल में पहना ओढ़ा जसन आजाद होती बाय होलो बाद में धीरे धीरे पहना ओढ़ा बदल ली सब एवे जब जब तक के कागज में लिख लो नहलोर के जनजाति है कि ओबीसी है लिख लो ना ले समझी नहीं हुए ये भी बराबर टाइप के दखा दे सो पिंदा ओढ़ा ने।
3: हाँ
5: पिंदा ओढ़ा ने बदलाव ही ली हुंचो बाद में खान पान ने बोले बदलाव ही ली हुंचो बाद में खिंडिक कृषि खेती ने बोले बदलाव इली सबे बाटे खिंडिक बदलाव इली मंतर ये बे तक के नहीं हम चो लोग मन खिंडिक दुख सुख ने बोले ये बे परेशान आसोत ची बदलाव धीरे धीरे उन होए दे कसन बोले उन लगे नील आसोत ऐसे ऐसे जासोत दुख सुख बाटे कसन बोलो ने हम चो देवी देवता के देवी देवता बोले अच्छा है लेकिन हुनके बोले भुलकसोत हुन मन हमन बोलूं से कि आगे देवी देवता देखो हूं जो बाद में दवाई दारू को सरकार बांट ले जो मुहाय करा सुनके बल देखो तेबे हुन हमन मन चो खिंडिक डेवलप हम चो आगे जातोर अच्छा होए दे।
3: हाँ
5: कसन बोलो ने नहीं ये भी सरकार बोले कोशिश करे से हमन मन चुका जे हर स्तर ने कहीं ना कहीं बोले गाँव गाँव ने सुविधा दे से ये चीज के मन में कान में सुनन बाती गांव पारा ने बल बोस्तोर सियान मन ये ना ये कसन है हुन कसन है आपस में विचार कर तो रहा है ना ये कसन बीती है ने कसन कर लेने अच्छा होए दे।
3: हाँ।
5: है जब तक कि हम ही एता ने सांगू से लेकिन ये चीज बोले गांव पारा ने बल बस उन बाती विचार कर तो होए से।
3: हाँ।
5: ये बहुत जरूरी है कसन बल लो ने नहीं हम जो लोग मन पढ़े लिखे कमास हो शिक्षा बाटे कमास हो कसन बोले ने शिक्षा ये भी तक के सबले पाठ कुती होला आस होते अभी शिक्षा नीचे आस हो खूबे पाठ ने बाकी खान पीन पींदा वड़ा बार तो सबले आ गए होली से लेकिन शिक्षा बाटे कम आसे कसन बोलो ने नहीं हम चीज जानते रहे हम बोल बोले खिंडी खिंडी पढ़ लू हम कई बोलो ए ना ये पढ़ लो मैं डीसी बनुआ है बिना बोलो है कि नहीं अब हम ही हूँ डीसी ची मतलब कुछ नहीं जानते रहो और ये भी पीला मन के पढ़ो बोले जा सो और गांव च सियान मने पढ़ लो ने कहीं बोले नौकरी मिले दे आजकल पढ़ लेने बोले नौकरी नहीं मिले से नौकरी का तो नहीं पढ़ तो रहा है ज्ञान का आज बोले पढ़ तो रहा है हर चीज के आज उन्नति कर तो का पढ़ा लिखा तो आज जमाने में बहुत ही ज्यादा जरूरी है नहीं पढ़ लो ने आदमी आज ही एक कदम बोले नहीं है बैंक नहीं जाओ नहीं सके ना कहीं नहीं जाए कहीं है असन ये बे जसन की ऑनलाइन सिस्टम होली से पढ़ लो सोत लेखा मन बोल बारहवीं बड़ बड़ पढ़ ला सोत नहीं जान सोत हूं मन का एप्लीकेशन निकली से कहा देते रहा असनी पढ़ ला सोत ना ऑनलाइन की जानत नहीं कहीं नहीं हूं चु बोले कारण आए हूं मन चले मोबाइल नहीं आए कहीं नहीं आए और पेपर तो नहीं आए अब टीवी ताने देश होत बोले जानो कतन जाए नहीं मालूम है लेकिन ये मैं सांगे से पीला झीला मन के बोले पढ़ लो लिख लो लेखा मन के बोले कम से कम जाओ जोन लगे नगे ब्लॉक आए कहाँ है पता लगाते रहो कहीं नौकरी पे ऐसा निकले से कहीं ऊंच मंच कहीं कागजात आसे कहीं यहाँ से दखुन बाती दखाओ पोड़ बाती घरे रहो ने कहीं बोले नहीं मिरे
3: नहीं मिरे हाँ
5: नहीं
3: हाँ उन तो आज तो बलदेव मोरे दादा गोड बात तो करूँ आज मंथर मंधर राम ना गासो ते मन बल का है कि शिक्षा चु क्षेत्र ने जुड़ू लला से तो मंधर राम नाग मैं पूछूँ अभी जसन की आजादी चो बाद ने बोले शिक्षा बल्ले पढ़े लिखे जो स्तर कितलो बाढ़ ली से और उनचो जो फायदा है बल्ले ने कहा कि लोग मन के कितलो मेरे से और पढ़ोन लिखुन बोले अगर फायदा नहीं मेरे से तो उनचो बोल का कारण
4: है हाँ ये सही बात है कि ये वे आजादी चो 75 साल गिरा तो आमी अमृत महोत्सव के रूप ने आमी मनाते हैं उसे तो 75 साल पहले तो मचो उम्र 64 साल होली उनचो पाठ कुते 9 साल और जो बोले जो घटना स्वतंत्र होली तो उदल दाले मैं दखे से कि मचो जन्म दर्शन जान तो बेरा ले कि स्कूल तो जुगे नहीं रहे और ना ही बराबर रहे तो स्कूल नालो का जे गांव चु गोली चो लेकी लेका पीला जिला पढ़ाई लिखाई ने आगे नहीं रला आगे बढ़ते नहीं रहो क्योंकि स्कूल नाम च कोई चीजें नहीं रहे तो जसनी जसनी आमी आमच माए बाप जसन नाम पढ़ा ला लिखा ला आगे बढ़ते गेला तो आमी बल पढ़ते गेलू और अकल ज्ञान सीखते गेलू अकल ज्ञान सीखते सीखते जो है आमी फेरा मास्टर बनलू मास्टर बनून माती कई जन पिला पढ़ालू उन पिला फेरा आमचो पढ़ाल पिला में नौकरी बल लगला और नौकरी लगुन बाती उन आप लोग पिला जिला बल पढ़ाला तो उन समय जो है ज्ञान ना लोकाजे आम चो आना जाना चो बाट बल नहीं रहे एक गांव ले दूसर गांव जातो काज बाट नहीं रहे पैदल जातो काज बाट नहीं रहे मोटरसाइकिल नहीं रहे फटपटी नहीं रहे साइकिल बल नहीं रहे तो आमी जसन की आजाद होलू शिक्षित होलू ते धीरे धीरे ये जातो काजे सड़क बल बना लू स्कूल बल बना लू जगह जगह स्कूल खोल लू गांव गांव ने खोल लू और पीला जिला के शिक्षित शिक्षा ग्रहण कर तो काजे आमी माए बाप के बोले जो अनपढ़ आमचो गांव जो दादा दीदी मन बोले पीला मंग पठात काजे एक मास्टर के रूप में आमी समझाते गेलू और ये बे असन आगे बढ़लू कि आमचो समाज चो आमचो गांव गोली चो जो पीला जिला मना ऊंच पद में बल गेला ऊंच पद में जाऊन बाती अच्छा अच्छा नौकरी कर सोत और आप लोग जीवन स्तर के बढ़िया सुधार सोत और आगे जो पीढ़ी आए उनके बोले ये मन जो है पढ़ाई लिखाई कर तो काजे अकल ज्ञान काजे उन मन बस मन सिखाते जाए सोत और आगे बढ़ तो काजे उन मन एक रास्ता बोले सहयोग बल कर सोत इतलो आमचो विकास तो है से संगे विकास होली खान पान ने बोले विकास होली रहन सहन ने बोले विकास होली और जो आमचो रीति रिवाज के बल आम नहीं भूल को आम उनके बल बनाते रहा जो आम तो संस्कार आए उनके बलामी ये संगे अमृत महोत्सव संगे जो है उनके बलामी सुरक्षित संगाओं से असन काम आम के करतराए और ये उत्सव के आगे बढ़ाते
3: तो दख मंदर रामना गारू बलदेव मोरे दा तुम इतलो अच्छा तो सांगलास गोट के मानतर जैसन कि शिक्षा ने बोले बाढ़ती होली लोग मन पढ़ला और कई लोग नौकरी पेशा बोले करसोत मानतर ये गोटोक मानसिक धारणा ये आसे कि गांव चो जन हम चो भाई बहन मन आज पढ़सोत लिखसोत सोजे बोले ने कहा कि नौकरी चो हिसाब ने पढ़सोत मन चो मन ने ये आए कि आम के नौकरी मिलो और कई के कॉलेज बल करला से ग्रेजुएट बल करला से पोस्ट ग्रेजुएट करला से मानतर नौकरी चो भरोसा न रोन बाती अब तक कहीं नहीं करो जोन बोले खेती बाड़ी आसे भले का है कि एक एकड़ आसे दू एकड़ आसे ज्यादा बल आसे नहीं तो नहीं आए बोले का है कि सरकार बाटले बोले अभी कितने सुविधा मन आसे और जैसे कि पशुपालन क्षेत्र ने उन चुका चु जमीन जायदाद जुगे नहीं लागे घर ने बोल कर रुक ला सके नहीं तो एक एकड़ बोल जमीन आसे तो आजकल सरकार बाटली इतलो स्कीम आसे कि उनके लाखों रुपए चु जन अनुदान पैसा सहायता में रुक ला सके मंत्र का है कि उन मन के आम चो जन पारंपरिक जो धंधा है उनके कहने का आजकल जन वहाँ हिसाब ने आम के अपना उकलाए पड़े दे उन्नत हिसाब ने जैसे ड्रिप सिस्टम लगाए मल्चिंग सिस्टम लगाए सोत और कई का आजकल पॉली हाउस बनाए सोत आधा एकड़ ने पॉली हाउस लगा मनाए सोत लाकन होता करोड़ों रुपया आमदनी जैसे कि बाहरी लोग एवं बाती बोले कर सोत आम दखू से बोले तो ये सब चीज़ के बोले आम चो जो पढ़ा लिखा उनचो फायदा उठाता रहा है कि नहीं तो बलदेव मोरे दादा जैसन कि तुम बल्लास पढ़ला लिखला मंतर ए ची संग संग का है कि आम चो जन पुरका पार्टी चो जन चलत बेरा चो जन रीति नीति रुसुमाय परंपरा है एगोटो काम चो जीवना का जे बलन का है कि खूबे उदुम है असन जोन परंपरा रीति रिवाज के आमी का है कि करोड़ रुपया खर्च कर ले बल उनके आमी अनुकलाए नहीं सकू मंत्र का है कि ये बोले मतलब आजकल धीरे धीरे मतलब भूते जाए से असन मक लागे से तो तुम चो बाटले बोले एक चो बचरत कर तो काजे बोले ने काय बरुक चाहे सास
5: मैं इतले बोले से मैं ये नहीं बोले से कि पाटकुती जाते रहा पाटकुती जी ध्यान दे रहा ना ही उनके सुरता कर तो रहा से हम ही भूतकाल के याद करुन बाती आगे बढ़ लो नहीं आगे बढ़ुक हो दे उनके छाणुन दिलो ने आगे बढ़ुक नहीं हो हाओ यही है कि जैसन की पढ़ाई लिखाई चो बाद में मैं बोले से आज ही हम चो गांव गांव ने बोले असन असन सियान मनास हो मानतर उनके पूछ तो रासे उन मन बोले पढ़ लो लिख लो लोग असन अच्छा गोट के सांग दे कसन कर तो रहे काय कर तो रहे सांगवात उन मन ये बे जैसन की ये बे हम चो महोदय बोला कि कसन है ये बे सरकार बांट ले नहीं बहुत सारे चीजें कुटीर उद्योग और गांव गांव ने कोई अगर पढ़े लिखे लेखा मना सो जुगे जुगे हुन बाती हुन गांव ने कहीं गिटी खदान बले आसे नाला और कहीं रेती च बले आसे आप ले गांव ची हिसाब ने सरपंच माध्यम ने हुनता ने के इकट्ठा होत एसोसिएशन टाइप च बनाओ हुन मन के हुनता ने दखोत और हुनमन की हुनमन बिक्री भांजी करोत असन सरकार चो आडरा से असन बल करुक सकत पढ़ला लिखला नौकरी नहीं बल हुन बले नौकरी ले खिंडिक बल तो मिले दे ये असन बले सहूलियत सरकार बाटले होली से ए सुनाला सोत एबे हम चो समाज बाटले सर्व समाज बाटले सर्व आदिवासी समाज बाटले गोटो के एसोसिएशन बल बनाला सोत लेखा मन हुन चीज के काम कर सोत मैं चाहे से कि हुन मन चो सक्सेस हो रजिस्टर नगर करला जोन के बल यहाँ से जुड़ तो रासे अल पढ़े लिखे लेखा मन हुन चलक जाऊन बाती जुड़त नु हाओ और कलेक्टर साहब महोदय बोले मचे लगिया बोलून बले से तुम जीत लो मिलून बाती जहाँ से हुन मन के मांगा काम मांगा हुन काम दाई दे हाओ
3: तो ये तो अच्छा गोटा है मंत्र देखा कि जैसन कि गांव ने तो बलन कई समाज चो लोग रह सो जैसन कि आदिवासी समाज के हटुन बाती दूसर बल समाज चो लोग रह सोत मंत्र का है कि हुन समाज चो लोग बल पढ़े लिखे बल आसोत मंत्र का है कि हुन मन बल का है कि असन हुनर के नहीं जानतो कारण ने नाल फिर सरकार चो जो योजना मनाए हुन नहीं जानतो कारण ने का है कि आर्थिक रूप ने जोन बोले पैसा कौड़ी धन दौलत चो रूप में एवे बल हुन मन आगे नहीं बाढ़ला से तो तुम जसन बल्ला कि एबे आजादी होली तो आजादी हो तो ले आम के समझते रहा कि आमी कहाँ बोले कोनेज बोले धंधा पानी करुक लाए सकूँ आर एचू काजे मदद काजे का है कि सरकार पूरी आसे हम चु तकलीस काजे पैसा पोड़ी पूंजीपति आए जमीन जायदाद आए ट्रेनिंग आए प्रशिक्षण आए बोले का है कि कहीं जो माल आए बिक्री भांजरी सब चो का है कि सरकार बाटी व्यवस्था से मंत्र का है कि ये भी आम चो जोन पढ़े लिखे नौजवान लेखा लेखी चाहे आदिवासी हो चाहे दूसर लोग हो उन सब के पूरे उन बाती आपन खुद के करुक लाए पढ़े दे ते भी आम ही का है कि आगे बाड़ुक लाए सकुआ। और जसन की मंधर राम नाग भाई फिर तुम चुल में पूछे से कि आमी फिर असनी सामाजिक जो हिसाब ने आए बोलूबे आमचो कई मेरा मंडई पर्व त्योहार मन आसे और ये मन जो काम आए आम के बोलन का है कि बिना बोलोर बिना काकी मतलब जबरदस्ती बोलोर आपनी संपन्न होए से और लोग मन आपनी इते जाए सोत। मैं आगे बोल ले कि असन जो काम है कि हम करोड़ रुपया खर्चा कर ले बोल का है कि असन कहीं मंडी बनात रहा है बोल लेने कोई पैसा कोड़ी देवन हाक दे बोल नहीं आवत मंत्र असन पारंपरिक काम है बोले का है आपनी रूंडा हो सोत उनमन की सुरता रहे से। तो ये चीज की बोल का है कि हम के बचात रहा है तो ये छो का जे बोल लेने तुम जो बांट ले
4: तो ये जो है गांव गौली ने एक तिहार संगे संगे बाजार हो से मंडी हो से तो ये एक संस्कार ले जुड़ ली से। तो ये संस्कार ने जुड़न बाती उता जानू जसन की गांव गौली ने मंडी आए फलना ताने हो से है ये गांव ने हो से एक साल छाड़न बाती दूसरा साल हो से तो ये बोलू भी ये संस्कार ले जुड़न बाती तो हम जो गांव गौली के लोग जो है आगे ले जसन की आजादी जो पहले और बाद में बोले तो ये संस्कार चले से ये के सुनन बाती जानन बाती लोग जानू आगे जाए सोत और उन काम के जो है उता जाऊन बाती देवी धाम पूजा पाठ कर सोत। तो मैं संग संगे आर्थिक क्षेत्र चो गोट के मैं सांगे से जसन के आगे आजादी पहले ये सुविधा नहीं रही जसन की आम के मछली पालन आए या कृषि क्षेत्र आए या सुअर पालन आए ये कई प्रकार की जो योजना वाले नहीं रही तो ये भी सरकार बाटले आम चो कई प्रकार के योजना हुए सी को आगे नहीं जान रोलू आम चो गांव निबल नहीं चलते रही जैसे मंत्री पालन आए तो गांव में आम चो खेती बाड़ी तो आसे लेकिन तालाब बला से उनता मछली पाल लेने आम के काय फायदा हुए से और काय आमदनी मेरे से उनके जान लेने तो हम ही उन सरकार चो योजना के बल आम धरू खोए दे और नहीं जान ले आम के काय नहीं मेरे उसने सुकर पालन आए जैसे वराह पालन आए उतावले आम की खूब फायदा मिले से उन संगे संगे पढ़ेली के भाई मन जे के हुनर आसे जे चो लगे अकल ज्ञान आसे उन मन काय कर सो आजकल सिर में टिटावल बना है गांव चो गांव में पानी मिले से गांव में गिटी आसे सिर में टाम के धरुक पड़े से उन ईटावल बनान बाती आम का अच्छा कीमत गोटो किटाने आम के उतावले आम की मिले से गांव चो पानी आए गांव चो लेबर आत गांव चो ये सब मिल सो तो हम गांव गौली ने फायदा हो से ये केवल हमको हुनर रख तो रहा है और ये चीज के बोले बनाते रहा है उसने उसने कई प्रकार के कोसा पालन लाख पालन है कई प्रकार के गांव नहीं लो रोजगार आ से हम तो रोजगार के हम ही अभी ये खुशी बनाते बनाते रोजगार के बल हम के बनाते रहा है रोजगार मिले नाम का और बल खुशी है ये अमृत महोत्सव अंतर्गत रोजगार मिले तो पूरा परिवार खुशी और उन संगे संगे आम खेती किसानी का ट्रैक्टर बल गेन सको कई प्रकार के कृषि यंत्र वाला आम चल गया दे तो ये चीज की आम की गांव गोली ने पढ़े लिखे होन बाती ये के मसागत ने मुसामास बलुआत ये सब चीज आम के मिलते जाए।
3: हाँ तो मंत्र राम ना हुए दर्शन की तुम इतलो अच्छा जोन बेरल आम के आजादी मिलने से आम स्वतंत्र होलू से बोले ने कितलो आमे कहीं बोले आम चो जीवना के चला तो काजे बोलू बे बोले कहीं बोले काम करुक लाए सकू अपने मन ने सोच सकू जैसन की बल्ले मोरे दादा तुम पूछू है भी कि तुम बल अपन लो मन ने सोच साच होती कि आम इतलो आजाद होलू स्वतंत्र होलू तेबले बल का है कि लोग पाग बोले ये चीज की नहीं कर सोत उन चीज की नहीं कर सोत अपन आगे नहीं बढ़ सोत शिक्षा ने ना आर्थिक रूप ने असन मन ने तुम जो विचार बल ऐसे होती तो ये तुम चो मन चो गोट के में जानुक चाहे से तो असन तुम चो मन नहीं लेने बोले ने काय कर लेने होए दे कसन लो के पूरे उन कसन बाढ़ दका लेने होए दे
5: ये बे हुन चीज के बात पूरी हुन बात करा का चाहिए अभी तो सरकार बाट ले महिला समूह बनाला सोत सरपंच बल बनाला सोत सरपंच मन के बले असने के सरपंच बोलो और हम चुका हुतली बोलो नहीं ये चीज के सरपंच और महिला समूह बाटले बले नहीं हुन मन के जाऊन समझोग पड़े दे घर घर ने कि पढ़ लो ने ये फायदा है पढ़ लो ने ये अच्छा होए दे ये सारे चीज के उन्हीं चीज माध्यम ने होए दे और कसन बोलो ने आजकल नहीं कोनिच बीती के बोले आगे बढ़ा तो रहा ले गोटक बात के दस बार बोल लो नाल और गांव चो लोग बोले नहीं समझते सत्य आए ना ये पहले से बोलून बाती फिर हुन चीज आपने आगे बढ़ सो। तो ये सारी जो चीज है नहीं सबले आज जसन सरकार बोले से सरकार से बोले हुनी मतलब आए हुनी हिसाब ने बना ली सके जुगे से जुगे लोग मन के समझोत है कि नहीं समझोत उनके और पीला मन के पढ़तो का चे पठाओ है नहीं पीला मन पढ़ दे अरे भाई ठीक है नौकरी नहीं मिल लिया ले कम से कम आप लोग ज्ञान वर्जन एक पढ़ाई लिखाई रहे मर तो बेरा मनुक बोले साथ नहीं दे बेटा बोले साथ नहीं दे पढ़ लो लिख रो बोले कहीं कागज पत्री के बल पढ़ुक बोले सके दे एक चीज है पढ़ लो ने ये फायदा है मर तो दम तक के साथ रुआ ये हाँ पढ़ लो लिख लो ने तो ये जो है नहीं ये मैं तो माध्यम हुनी देखे से कि महिला मन जो समूह बना ला सोत और सरपंच के उन मन की उन बात ही कसन बोलो ने सरपंच बोलो ने आज शासन बांट ले राशन मीरे से है कि नहीं कहीं बीती कसन कहीं गाँव चो लोग मन कसन डरा लो नाल और तो निकल सोत का है तू ऐसा कर नाल तू राशन के बंद करूं देंगे है कि नहीं असनी मेलाए मेलाए बोले समझ काज बोलते रहे उनके डरा तो काज नहीं बोलते रहे उनके नहीं मेरे बाती असन बोलू डरान बाती नहीं पीला मन के पड़ा पठा दे हुन बोलो ने हुन फट से मान दे गोटो बोल पीला के नी छंडा पढ़ा दे ये सारी चीजें असन बाद में उनचो बाद में नहीं पढ़ा ला बोले आज भी दू कर सु कर दुनिया भर जो आसे है कि नहीं जुगे हुन सिरा गुनिया लग बोले दख्तरा है उनके बल मना नहीं करूँ हमी सिरा गुनिया बोल दख्तरा यार अस्पताल आसे गाँव ने नर्स भाई आसे उनचे लोग फटाक नहीं जाते रहे कि असन असन हो से उनके बल दखात रहे तेबे हुन मन खान पीन पढ़ाई लिखाई ये सारे चीज होलो ने हम जो लोग मन शिक्षा बातें खिंडी आगे बढ़ दे असनी की कर लो नहीं हम चो लोग मन नहीं मैं मचो हिसाब ने अब तक के जसन हम ये बात हूँ बात भूलू से सामाजिक बात ले बल्ले शिक्षा ही बाटले कमी नजर आए से और बाकी कोनी बाटले खिंडी खिंडी की इम्प्रूवमेंट तो आसे ची ये चीज ये हमन बोले दकू से हम बोले जाऊंगा हम समाज बाटले उठिए बाट बाट बोसुआ तो हमन सांगुआ की पीला मन के पढ़ा थो रहा है ये भाई जाऊक दिया ठीक नो है समाज कसन सुधरे दे ये सब हमन बल समझाऊ कि शासन ही चीज नो है नाले ग्राम से ये सरपंच ही काम है महिला मन जो नहीं हमन बल समाज लग बोलूआ सन असन न है कि हम समाज में ऐसा नहीं चिरुआ हम हमन बल बोलूआ कि काय भी थी खा तो राय हम तो ये सब मंद मंद मंद के भले जुगिनी पिया ये सब चीज के बल हम समझाई दे हाँ
3: तो बलदेव मोरे दादा तुम इतलो अच्छा सांगलास जसन की आमचो आजादी होरलो बेराले जसन की महिला मंचो गुट तुम निकराला से मन के बले काय की हर क्षेत्र ने बल्ले ने प्रतिनिधित्व आगे बढ़तो काजे मेरे से आरु ये मंचो काजे अलग ले आरक्षण बल्ले होली से चाहे वो पंच हो सरपंच

0: जो जनपद हो जिला हो मंत्र का है कि ये बोले आम के दखुकला मेरे से कि आरक्षण कारण ने कहा कि महिला जोन प्रतिनिधि मनात सरपंच बल बंसोत जनपद ने बल जायसोत जिला ने बोले बंसोत मंत्र का है कि तेबले बोले बल्ले का है कि कहीं चीज कहीं सभा हो ऐसे कहीं अच्छा फंक्शन हो ऐसे जोनता ने महिला मन के बोलतो रहा है एतान बोले का है कि महिला मन जाए कि जुगे पूरे नहीं होत बोले आम सांगा सुना मिल सोनू से जोशन की कोनी महिला सरपंच आए तो उनचो मनोक बीता के पूरे करे से नाले भाई बीता पूरे करे से नाले
1: सही
0: कोनी
1: है
0: के साथ
1: सही है,
0: तो ये बोले हो ऐसे
1: बराबर
0: बोले का है कि जब स्वतंत्रता होली और महिला मन के बोले इतलो अधिकार मिलली उनमन बस स्वतंत्र आसोत उनमन बोल का है कि असंता ने आप लोग जोन दुख सुख आए जोन बनात रहा तो एक तो उन आपन सांगुक ला सके है कि नहीं काय बोले महिला मन के काय
1: नहीं।
0: तकलीफ
1: एक बात में
0: आसे
1: सांगे से एकदम सही बात है। हमन जे दिन ले हम समझू से अरे बेबल समझू से हम जो समाज ने बायले लेकी सबले आगर बूता करे सर ये बेबल करे से मनुक ले आगर करे से कसन पर लो ने नहीं ये दखलो रा से जान लो रा से हुनी जो एक ऑटोमेटिकली दबाव कारण में ये खुलून बाती सरपंच गिरी बने नहीं करुक सके से तो कम हुन जो मनुक मन के उनके हुन जो काम के बल घर के हुन मनुक लोग मन हुन जो पुरुष जाति हुन बल करत हुन
0: करो
1: के
0: ना हाँ
1: तेबे हुन खुल के ये दे
0: हाँ
1: कसन पर लो ने देखा ये भी तो खिंडी की एक बात होली की ढेकी उकी खिंडी खम होली
0: काम बोले
1: आगे 4 बजे धुरुन भाती ढेकी कांडुक मुरियाओ ढेकी कांडा द्वार बड़ा पानी आंदो थांडी कांदरी के धोत पीला झीला के उठावत गोरस खुआवत फिर कौन तो उन रांदा खानी जो सरा बड़ा करुन
0: कम
1: बाती बनाओत हूं जो बात कह कौन कमाऊ के लाए गेलो मन खुनता ने रांधुन बाती नी खाउन बाती पेज ने उन देवत हूं बाटे पेज ने उन बात हूं तान बलबूता करुक लागत फिर हूं बात ले फिर उन बाती असनी करुण बाती रातली 10 बजे तक के काम करो है नी
0: हाय
1: अब हुनी एक के चल नीली से एक के मनुक लोग मन बोल समझू पड़े दे हो
0: हाँ हाँ
1: है कि नहीं
0: हाय
1: जबकि सरकार बाटले कानून ने सबके बराबर जो दर्जा दिली से
0: हाँ
1: कि भाई हुनमन जो खिंडी बूता के हल्का करूक पड़े दे तेबे
0: हाँ
1: सरपंच बोले हुन खुल बाती जसन के अभी तुम्हन बलासास की नहीं हुन चो भाई असन करे सनाल हुन चो मनुक
0: मनुष्य
1: सरपंच बस सही बात है हुनके हुन बाटले हुनके रियायत नहीं मिले से हुन चो आदमी बाटले हुन चो बाटले मिर तो रासे और एक मैं इतलो बोले से असन सरपंच इन बाई मन बोले बनला साथ आले दोनों डोकरा डोकरी गोटिया गोटी हुआ
0: हुआ
1: कोई भाई मके इतलो काम के करुक देख तू इतलो काम की तू कर बाटा
0: हाँ
1: बटवारा हुन बाती कर लो ने तू समाज चो बल काम कर से
0: हाँ
1: हुन बल घर चो काम से फिर तू पे तो घर चो बल तो काम कर से ची
0: हाँ
1: तो असन जब तक के तालमेल कर लो नहा लो नहीं
0: हाँ
1: हुन मन खुलुक नहीं सक दे
0: नहीं सकते
1: ये मचो मैं पर्सनली बोले मैं बोले से कि जोन जोन बोले हम चो समाज चो लोग मन असन आसोत नहीं उनमन के मकबले में उनमन के भाई गुआर करे से देखा हो उनमन के खिंडिक तुमन काम धाम ने बोले खिंडिक सहूलियत दिया है नहीं असन नहीं बोलू कि भाई तू असन काम करता रहे तुझे ही काम है बोला बोले नहीं हुन चो काम को बोले हम ही करूँ हम चो काम को बोले हुन करे से असन तालमेल बना लो ने दोनों घर बोले अच्छा चले दे समाज बोले अच्छा चले दे सब कुछ अच्छा चले दे
2: तो असनी बलवीर भाई बलदेव दादा
0: हाँ
2: तो ये मन जो लाज मेटात काजी ये मन श्रम मेटात काजी आजी आजकल जो है स्व सहायता समूह महिला मन जो एक अच्छा रास्ता है तो ये मन जो श्रम बल मिटे दे और लाज बल मिटे दे और समाज में आगे बढ़तो का जी एक रास्ता बल खुले से तो महिला मन के आगे आन तो का जी कई प्रकार तो समूह सोचता तो समूह बन ली थी तो ये समूह में रोन माती नहीं बाई बाई मन शिक्षा क्षेत्र में और हुनर के क्षेत्र में आगे बढ़ला से जसन की खत बना तो काम खत बना तो काम महिला मन का कर सो ये जो यूरिया जो सुपर फास्फेट जो रासायनिक खाद है उनले बाज तो काजी किसान मन की काजी ये केचुआ खाद तैयार तो केचुआ खाद बनाता और उन मंचो जो बल विधि विधाना से उनके समाज तो सामने रख सो गांव गौली ने और ये मन उन खत के दिले ने काय हानि नुकसान आते उनके पूरा सांग सो समूह के लोग और उसने मछली पालन क्षेत्र अंदर समूह बने उन मछली बल बिकुन बाती नहीं आर्थिक स्थिति महिला मन मजबूत बोला थे और ये संग संगे एक जागरूक बल बोल ली उनचे पीला जिला आगे हुनर जो स्तर के प्राप्त करला और उन मंचो खान पान पहनावा है और सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सारी चीज में जो है ना आजकल ये अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैंने ये त्योहार में उनमें आ गया सो 75 साल के बाद और आगे बढ़ते जाए सो धीरे धीरे ये मन सीख दे एकदम तो है आगे बढ़ तो नहीं सको धीरे धीरे बढ़ दे ये सब चीज गांव गोल इन तो कुलाई मीरे से मैं आसन समझे से कि ये चीज जारी रहो और कई वैज्ञानिक क्षेत्र में बोले है समाज में बोले ये वे तुम सरपंच पंचायत बात ली जो पढ़े लिखे होला जाले उनमन गांव च नेतृत्व बोले मजबूत लेकर और जो अनपढ़ होला से है और महिला सीट होली उत पीछे ची आसो उनच मनुख काम करे से ना ले उनच कोई सगे समझे रिश्तेदार उनच काम करे से तो ये चो ने कहा कि आम चो समाज आम चो पंचायत खिनिक आगे बढ़ुक नहीं सक किनिक पिछड़े तो आम के शिक्षा में जात रहा है शिक्षा के क्षेत्र में रत रहा है और पढ़े लिखे की प्रतिनिधित्व देत रहा है तेबे आम चो महिला समूह आप आगे बढ़े दे यही मचो एक सुझाव
0: तो देखा बोले अमृत उत्सव हिसाब ने आम इतना अच्छा गुड बात कर लू जितना आजादी आम के मिरली तेबले बोले तेबे काय के आमी बोले ने धन दौलत चुनती बाढ़ती फिंदा वोड़ा बोले ने कहा बोले आमी जाओ के उकला सकूँ ये सब गुड बात आर आम चुनती बाढ़ती बोले ने कितलो कसन होए से कसन नहीं होली से तो ये सब गुड बात आमी कर लू रेडियो बाटले आमचो गाँवकारी भाई बहन मन बल सुनसोत होती सुनन बाती हुन मन चो मन ने कहीं ना कहीं असन तो विचार ये दे और उन मन बोले ने कहा कि आगे बाढ़ तो काजे नहाले काय कमी आसे उन मन चो सोच ये दे और होनी हिसाब ने कहा कि उन मन बोले ने भविष्य ने बोले ने जोन बोल करते रहे उन काम के कर दे और आगे बढ़ दे और घर परिवार संगे संग कहा कि आमचो समाज आरु देश ने बोलू कहा कि खुशहाली है दे हरी कह दे उदिम है दे तो बलराम मोरे दादा मंधर राम नाग दादा इतलो अच्छा आजी आमी गुड बात कर लू कितलो नंगत रली आर आमचो रेडियो सुन तो लोग मन बोले सुनला जानला जरूर कहीं ना कहीं उन मन के उन मन चो मन ने विचार ये दे अरे तुम दोनों को खूब खूब जुहार
1: जुहार
3: सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास अभी आप इस विषय पर परिचर्चा सुन रहे थे हल्बी बोली में इस परिचर्चा में भाग लिया था श्री मंधर रामनाग और श्री बलदेव मौर्य ने संपादक थे बलबीर सिंह कच्छ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से रात्रि के 10:30 हुए हैं पेश है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनी

भीगी पलकें। कार्यक्रम का पहला गीत इस फिल्म से सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। एमजी हशमत के गीत को संगीतबद्ध किया है जुगल किशोर और तिलक राज ने।

आप तो ऐसे न थे कार्यक्रम का अगला गीत इस फिल्म से सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शब्द निदा फाजली के, संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

आकाशवाणी जगदलपुर से आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को सुरबद्ध किया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

किशोर कुमार की आवाज में लीजिए सुनिए प्रियतमा फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

रजनीकंधा। आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। अब लीजिए सुनिए शैलेंद्र की आवाज में तिलक राज थापर का लिखा ये गीत। फिल्म तराना के लिए इस गीत को संगीतबद्ध किया है राम लक्ष्मण ने।

न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म तुम्हारी कसम का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में इसे गाया है मुकेश और आशा भोसले ने।

0: रजनीगंधा। अभी आप आनंद ले रहे थे पुराने फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। लीजिए सुनिए समाचार। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्स, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:51 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद।